सुप्रभात, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आज रविवार है, शक संबत 1948 के आषाढ़ मास की सातवीं तिथि, तदनुसार 28 जून सन 2026। सुबह के 7 बजे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। इस सभा में हम अपने सभी श्रोताओं का बहुत स्वागत करते हैं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आज़ाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आज शिव प्रसाद गुप्ता की जयंती है, साथ ही मन कुमार बासु ठाकुर की जयंती। रेडियो आज़ाद हिंद इन्हें शत शत नमन करता है। और आइए अब आपको जानकारी दे दें आज के मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे जीवन सौरभ, साथ ही सुनेगा अक्षय निधि और आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत का। सुबह 8 बजे कार्यक्रम होगा वतन का राग, जो केंद्रित है शिव प्रसाद गुप्ता पर। 8:30 बजे बाल सभा, विषय होगा बरसात में कैसे बने इको दोस्त। सुबह 9 बजे कार्यक्रम होगा टैग गुरु, विषय होगा दृष्टिहीन जनों के लिए कंप्यूटर तकनीकी के फायदे। इस विषय पर आपको जानकारी देंगे डॉक्टर रोहित त्रिवेदी, इनसे बातचीत की है फराज फयाज ने। 9:30 बजे कार्यक्रम होगा हमारी सेना हमारा गर्व, आज का विषय कारगिल युद्ध भाग एक। इस विषय पर आपको जानकारी देंगे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा। सुबह 10 बजे कार्यक्रम होगा देश के संस्थान, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL पर। साढ़े 10 बजे कार्यक्रम होगा आज़ाद हिंद, जो केंद्रित है मन कुमार वसु ठाकुर पर। 11 बजे सुनिएगा मन की बात। 11:30 बजे काव्य गुंजन, इसके अंतर्गत आज सुनिएगा रश्मि रथी का 5वां भाग। तो ये थी जानकारी आज की प्रातःकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों की। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद का प्रसारण।

0: और आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम जीवन सौरभ।
1: जीवन सौरभ। ईश्वर को वही व्यक्ति जान सकता है जिसने कभी ना कभी किसी न किसी मनुष्य से सच्चा प्रेम किया हो। प्रेम के रास्ते पर ही प्रार्थना सीखी जाती है। प्रेम जिस मार्ग से होकर गुजरता है, उसी मार्ग से परमात्मा भी गुजरता है। प्रेम की राह और परमात्मा की राह दो अलग राहें नहीं हैं। ज्ञानी जन कहते हैं कि अभी परमात्मा का तो हमें पता नहीं, लेकिन हाँ, प्रेम का थोड़ा थोड़ा पता है। तो चलो प्रेम से ही शुरू करें। शुरू करें इसी प्रेम से अपनी यात्रा। जितनी पूंजी अपने पास है, उसी संपदा से तो काम शुरू करेंगे। कुछ पूंजी पास हो तो करोड़ों रुपयों को वो खींचकर पास ला सकती है। ठीक इसी तरह प्रेम है। अगर सच्चा प्रेम है हृदय में तो पर्याप्त है, वो परमात्मा के द्वार तक पहुंचा ही देगा। बस इतनी सी पूंजी से ही काम चल जाता है। प्रेम हो तो न झुकने वाला भी झुकना सीख जाता है। प्रेम हो तो विचार तिरोहित हो जाते हैं, विचारों की ऊर्जा भावनाओं में रूपांतरित हो जाती है। यही प्रेम परम आनंद में परिवर्तित होकर ईश्वर में समाहित हो जाता है। तो बस ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है प्रेम का मार्ग।
2: जीवन सौरभ।
3: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
4: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
5: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 157 से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य, देवता हैं अश्विनी कुमार, छंद है जगति और त्रिष्टुप।
6: अबोध्यग्निर्जम उदेति सूर्यो, व्युषाश्चंद्रा महद्वो अर्चिषा, आयुक्षातामश्विना यातवे रथम, प्रासावीद्देवः सविता जगत पृथक। भूमि पर अग्निदेव चैतन्य हुए, सूर्यदेव उदित हो गए हैं, महान उषा देवी अपने तेज से लोगों को हर्षित करती हुई आ गई हैं। अश्विनी कुमारों ने यात्रा के लिए अपने अश्वों को रथ में जोड़ लिया है। सूर्यदेव ने सब प्राणियों को अपने पृथक पृथक कर्मों में प्रवृत्त कर दिया है। यद्युञ्जाथे वृषणमश्विना रथम घृतेन नो मधुना क्षत्र मुक्षतम, अस्माकं ब्रह्म प्रतनासु जिन्वतम वयम धना शूरसाता भजे महि। हे अश्विनी कुमारो, आप अपने श्रेष्ठ रथ को जोड़कर हमारे पौरुष को घृत से पुष्ट करें, हमारी प्रजाओं में ज्ञान की वृद्धि करें। हम युद्ध में शत्रुओं को पराजित करके धन प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। अरवांग त्रिचक्रो मधुवाहनो रथो जीराश्वो अश्विनोर यातु सुष्टुतः त्रिवंधुरो मघवा विश्व सौभगः शम्न आ वक्षद द्विपदे चतुष्पदे। हे अश्विनी कुमारो, आप रथ पर विराजित होकर यहाँ पधारें। तीन पहियों वाला और मधुर अमृत तुल्य पोषक तत्वों को धारण करने वाला शीघ्रगामी अश्वों से जुता हुआ प्रशंसनीय बैठने के तीन स्थानों वाला समस्त ऐश्वर्य और सौभाग्य से भरा हुआ आपका रथ मनुष्यों और पशुओं के लिए सुखदायी हो। आ न ऊर्जम वहतम अश्विना युवम मधुमत्या नह कषया मिमिक्षतम प्रायुस्तारिष्टम नीरपांसी मृक्षतम सेधतम द्वेषो भवतम सचा भुवा। हे अश्विनी कुमारो, आप दोनों प्रचुर अन्न प्रदान करें, हमें मधु से परिपूर्ण पात्र प्रदान करें, हमें दीर्घायुष्य प्रदान करें, हमारे सभी विकारों को दूर करके तथा द्वेष भावना को मिटाकर सदैव हमारे सहायक बने। युवम ह गर्भम जगतीषु धत्थो युवम विश्वेषु भुवनेष्वन्तः युवमग्निम च वृषणा वपश्च वनस्पतीन रश्विना वैरये थाम। हे शक्तिशाली अश्विनी कुमारो, आप दोनों गौओं में अर्थात संपूर्ण विश्व में उत्पादक क्षमता स्थापित करने में सक्षम हैं। अग्नि जल और वनस्पतियों को प्राणी मात्र के कल्याण के लिए आप ही प्रेरित करते हैं। युवम हस्थो भिषजा भेषजे भिरथो हस्थो रथ्या राथ्ये भी अथो ह क्षत्रमधि धत्थ उग्रायो वाम हविष्मान मनसा ददाश। हे अश्विनी कुमारो, आप दोनों श्रेष्ठ औषधियों से युक्त उत्तम वैद्य हैं, उत्तम रथ से युक्त श्रेष्ठ रथी हैं। हे पराक्रमी अश्विनी कुमारो, जो आपके प्रति श्रद्धा भावना से हविष्यान्न अर्पित करते हैं, उन्हें आप दोनों क्षात्र धर्म के निर्वाह के लिए उपयुक्त शौर्य प्रदान करते हैं।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 157 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
3: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण दीप्ति के साथ। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भक्ति संगीत।

भक्ति संगीत सुनने वाले सभी साथियों को हमारा बहुत बहुत नमस्कार। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस भक्ति रचना के साथ।

बुद्धिमान मनुष्य वो होता है जो कभी ऐसा काम न करे जिसका बाद में उसे पछतावा हो। वो सदा ऐसे कार्य करता है जो उसके और उसके आसपास के लोगों के मन को प्रफुल्लित करे। आइए सुनिए ये भक्ति रचना।

हर मनुष्य के जीवन में नकारात्मक विचारों का आना निश्चित है, परंतु ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उन विचारों को

परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही सब प्राणियों का जन्म होता है और उसी आज्ञा के अनुसार ही प्रभु के गृह में शोभा प्राप्त होती है, मगर उस आज्ञा का निरूपण नहीं किया जा सकता। आइए सुनते हैं ये भक्ति रचना।

श्रोताओं, ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है और यही एक अटल सत्य भी है।

सजग होकर प्रभु का ध्यान करो। वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें गहन निंद्रा में सो ही जाना है। जब तक जाग सकते हो, जागते क्यों नहीं? प्रभु का नाम स्मरण क्यों नहीं करते?

इसी भक्ति रचना के साथ आज का भक्ति संगीत यहीं संपन्न हुआ। अनुमति दें अपनी रेडियो दोस्त दीप्ति को, बने रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ।

0: अगला कार्यक्रम एक छोटे से अंतराल के बाद। बने रहें 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद के साथ।
1: नमस्कार, मैं हूं भावना सोमाया और आप सुन रहे हो रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: दावा है हर आन हमारा, सारा हिंदुस्तान।

0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज हम वतन का राग कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं समर्पित देशभक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पत्रकार और महान दृष्टा शिव प्रसाद गुप्त जी की।

0: आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।
1: ये वतन कारा
2: चंद्र सूर्य चिरकाल रहे तेरे पावन आंगन में, अंधकार हटे ज्ञान मिले, मिलजुल कर हम गाएं तेरे यश की गाथा। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। अपनी मातृभूमि भारत माता के लिए इस तरह की मंगल कामनाएं रखते हुए आजीवन उसकी सेवा करने वाले समर्पित देशभक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पत्रकार और महान दृष्टा थे शिव प्रसाद गुप्त। उन्होंने काशी विद्यापीठ की स्थापना की, साथ ही उन्होंने आज नाम से एक राष्ट्रवादी दैनिक पत्र निकाला और बनारस में भारत माता मंदिर का निर्माण करवाया। शिव प्रसाद गुप्त का जन्म 28 जून सन 1883 को बनारस के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी का अध्ययन घर पर ही किया और स्नातक की परीक्षा इलाहाबाद से उत्तीर्ण की। इलाहाबाद में उन्हें आचार्य नरेंद्र देव और पंडित गोविंद वल्लभ पंत आदि का साथ मिला, जिससे उनके भीतर निर्भीकता, दृढ़ता और राष्ट्र चेतना जैसे गुण गहरे होते गए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की प्रेरणा से वो स्वाधीनता संग्राम में शामिल हुए। जब महात्मा गांधी से उनकी भेंट हुई तो वो गांधी जी से अत्यंत प्रभावित हुए और बहुत जल्द ही गांधी जी के बहुत निकटवर्ती लोगों में शामिल हो गए। उनकी राष्ट्र निष्ठा से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र रत्न कहना शुरू कर दिया और आगे चलकर ये संबोधन उनके साथ उपाधि की तरह जुड़ गया। लेकिन शिव प्रसाद गुप्त ने स्वयं को सदा ही भारत माता का आराधक ही कहा। बापू से उनकी पहली भेंट लंदन में हुई थी। उन दिनों बाबू शिव प्रसाद गुप्त ये जानने के लिए विदेश भ्रमण पर थे कि दुनिया के स्वतंत्र देश अपनी प्रभु सत्ता की रक्षा कैसे करते हैं। उनकी शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ किस प्रकार की हैं और पराधीन भारत उनसे कौन कौन सी बात सीख सकता है। उसी क्रम में यूरोप के साथ साथ वो अमेरिका और जापान भी गए और वहाँ सक्रिय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और क्रांतिकारियों से भेंट की। भारत लौटने के बाद उन्होंने अपने अनुभव को आधार बनाकर भारत के लोगों को एकजुट करने, उनकी दुर्बलताओं को दूर कर उनमें आत्मविश्वास पैदा करने का भरपूर प्रयास किया। सर्वहारा और विधवाओं की स्थिति में सुधार कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। छुआछूत की भावना को समाप्त करने के लिए उन्होंने सघन प्रयास किया। उसके साथ ही अंतर जाति विवाह के अभियानों को तन मन धन से प्रोत्साहित किया। दरअसल वो उन मूल कारणों पर काम करते रहे जो भारत की स्वतंत्रता के मार्ग में बाधक थे। दिन रात उनकी आंखों में भारत माता के उत्कर्ष का, भारत की विजय का स्वप्न तैरता था।

बाबू शिव प्रसाद गुप्त, पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव और डॉक्टर भगवान दास आदि से बहुत प्रभावित थे। गंगा के पश्चिमी तट पर उन्होंने 75,000 वर्ग फुट में निर्मित एक भव्य अट्टालिका खरीदी और गांधी जी ने उसका नाम सेवा उपवन रखा। सेवा उपवन में लगातार स्वाधीनता संग्राम हेतु विविध आयोजन हुआ करते थे। शिव प्रसाद गुप्त क्रांतिकारियों का सहयोग भी करते थे। अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण उन्होंने अनेक जेल यात्राएं भी की। देश के पहले गांधी आश्रम की स्थापना के समय भी उन्होंने भरपूर सहयोग दिया। महामना मदन मोहन मालवीय जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पर विचार कर रहे थे, उस समय भी इस विश्वविद्यालय की कल्पना को साकार करने में कदम कदम पर मालवीय जी को शिव प्रसाद गुप्त ने सहयोग किया। आगे चलकर बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने काशी विद्यापीठ की स्थापना की। गांधी जी ने इसकी आधारशिला रखी। 10 फरवरी सन 1921 को असहयोग आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागृत करना, छात्रों को स्वावलंबी बनाना, हिंदी भाषा का विकास करना और सहयोग तथा सेवा की भावना विकसित करना आदि। बहुत जल्द काशी विद्यापीठ राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बन गई। विद्यापीठ के अनेक युवकों ने शिक्षा के साथ साथ स्वाधीनता संघर्ष में भी सघन रूप से भाग लिया। शिव प्रसाद गुप्त ने इस विद्यापीठ में पठन पाठन का प्रमुख आधार हिंदी को बनाया और उसे माध्यम के रूप में सक्षम बनाने के लिए उच्च कोटि की पाठ्य पुस्तकों को भी छपवाया। आगे चलकर सन 1995 में इस विद्यापीठ के साथ महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया और वर्तमान में ये शिक्षा केंद्र महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कहलाता है। भारत माता की जय के नारे के साथ स्वाधीनता संग्राम लगातार जारी था, लेकिन भारत माता का एक मंदिर भी हो, ये भावना लगातार शिव प्रसाद गुप्त के मन में बलवती हो रही थी। ये एक अद्वितीय परिकल्पना थी कि वाराणसी की पवित्र भूमि में जहाँ देवी देवताओं के अनेक मंदिर है, इन मंदिरों के बीच एक ऐसा मंदिर हो जिसमें किसी देवी देवता की प्रतिमा की जगह राष्ट्र का भौगोलिक लघु प्रतिरूप विराजित हो और ये संपूर्ण देश की आस्था का केंद्र हो। काशी विद्यापीठ के परिसर में ही चित्रकला विभाग के पास भारत माता मंदिर के नाम से राष्ट्र देवता का ये मंदिर स्थापित हुआ, जिसका उद्घाटन स्वयं गांधी जी ने किया।

भारतीयों के मन में राष्ट्र चेतना जागृत हो, ये प्रयास बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने हमेशा ही किया। इसी उद्देश्य से उन्होंने सन 1920 में दैनिक समाचार पत्र आज का प्रकाशन आरंभ किया। हिंदी समाचार पत्रों के इतिहास में आज का प्रकाशन एक उल्लेखनीय घटना थी। बाबू शिव प्रसाद गुप्त एक ऐसे दैनिक पत्र का प्रकाशन चाहते थे जो लंदन टाइम्स जैसा प्रभावशाली हो। उन्होंने ज्ञान मंडल प्रकाशन की स्थापना की और 5 दिसंबर सन 1920 को आज का पहला अंक प्रकाशित हुआ। इस पत्र ने हिंदी पत्रकारिता कला को एक नया स्वरूप, नई गति और नई दिशा प्रदान की। दैनिक समाचार पत्र आज ने हिंदी पत्रकारिता के नए मानदंड स्थापित किए। उस पत्र ने हिंदी को अनेक नए शब्द प्रदान किए। तिलक जी की प्रेरणा से जन्मा दैनिक समाचार पत्र आज महात्मा गांधी के आंदोलन का अग्रदूत बना। अपने समय में सत्याग्रहियों की नामावली छापने का साहस आज ने ही किया। इस कारण इस पत्र को ब्रिटिश शासन का कोप भाजन भी बनना पड़ा। जब सरकार के कोप और दमन के कारण आज का प्रकाशन रुका, तो इसके प्रधान संपादक बाबूराम विष्णु पड़ारकर ने रणभेरी का प्रकाशन कर राष्ट्रीय जागरण की गति को मंद नहीं होने दिया। आज की टिप्पणी और लेख अत्यंत प्रभावशाली होते थे। आज के प्रमुख लेखों में सर्वश्री संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव, श्री प्रकाश, पंडित कमलापति त्रिपाठी, बेड़प बनारसी, बेचैन शर्मा उग्र आदि शामिल हैं। दैनिक समाचार पत्र आज ने अपनी उच्च गुणवत्ता से असंख्य पाठकों को भाषा और व्याकरण की दृष्टि से संस्कारित भी किया। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर भगवान दास जैसे मनीषी भी इस पत्र के लिए लिखा करते थे। आज के संपादकों में सर्वश्री प्रकाश, बाबूराव विष्णु पड़ारकर, कमलापति त्रिपाठी, विद्या भास्कर, श्रीकांत ठाकुर, रामकृष्ण, रघुनाथ बिडलकर शामिल रहे हैं। और अपने प्रकाशन की 100 वर्षों की यात्रा पूरी करता हुआ दैनिक समाचार पत्र आज भी वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, पटना, इलाहाबाद और रांची से प्रकाशित हो रहा है। ज्ञान मंडल प्रकाशन शिव प्रसाद गुप्त के समय में भी विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखित इतिहास, राजनीति और दर्शन आदि के हिंदी ग्रंथों के प्रकाशन का बड़ा केंद्र बन गया था। बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने स्वयं भी पृथ्वी पदशिला नामक पुस्तक लिखी। बाबू शिव प्रसाद गुप्त जीवन भर देश की आजादी और चरित्र निर्माण के लिए समर्पित रहे। भारत माता की सेवा और आराधना करते हुए 24 अप्रैल सन 1944 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन राष्ट्र रत्न बाबू शिव प्रसाद गुप्त को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए। अगला कार्यक्रम एक छोटी से अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
2: 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल सभा।
3: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
2: बच्चों नमस्ते, मैं हूं आपकी मनीषा दीदी, लेकर आई हूं आपके लिए बाल सभा कार्यक्रम। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं बरसात के मौसम में कैसे बने इको दोस्त। तो सबसे पहले तो आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे और मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आज बच्चों हम जो बात करने वाले हैं ना, वो विषय सुनकर आप और अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि ये विषय हम सभी से जुड़ा है, आपसे, मुझसे, आपके घर से, मेरे घर से, आपके स्कूल से, हमारे शहर से, हमारे गांव से, पशु पक्षी, पेड़, नदियां, बादल, सब इससे जुड़े हैं, है ना? क्योंकि बरसात का मौसम है तो ये जानना ज़रूरी है कि आज हम कैसे अपनी बात को आपके सामने रखें। बच्चों आज का विषय मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि बरसात आने वाली है तो कैसे बने इको दोस्त। अब जब कुछ ही दिनों में, या हम ये भी कह सकते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले से ही हमारे घर के दरवाजे पर बारिश की बूंदों ने दस्तक दे दी है। गर्मी की तपती दोपहर के बाद अब छम छम छम बारिश की आवाज़ आने लग गई है, और जब ये धरती पर बूंदें गिरती हैं तो कितनी अच्छी सौंधी सौंधी सी मिट्टी की खुशबू आती है ना। हम सब लोग बाहर निकलते हैं, कई बच्चे छाता लेकर जाते तो हैं स्कूल लेकिन फेंक देते हैं या छुपा देते हैं, गीले होकर आ जाते हैं और फिर जहाँ भी पानी भरा मिलता है वहाँ छप छप ज़रूर करते हैं, है ना, पैरों से। जूते भले ही गीले हो जाएं, भले ही मम्मी ने इस बार नए शूज़ लिए हो, लेकिन क्या हुआ, बरसात का मौसम है तो एक बार तो पानी जहाँ भरा हुआ है जिस गड्ढे में वहाँ पे छपाक करना ही है, है ना। क्योंकि ये सब हमको अच्छा लगता है। सच बात तो ये है कि मौसम जब जब बदलता है तब तब कभी हमें अच्छा लगता है और कभी हमें पुराना मौसम इतना अच्छा लगता था कि नया वाला जो चेंज आ रहा है ना वो अच्छा नहीं लगता। गर्मी सबको बहुत पसंद होती क्योंकि उसमें छुट्टियां होती हैं, उसमें बहुत सारे आइसक्रीम खाने को मिलती है, हमने बोला था ना बर्फ़ का गोला कई बच्चे खाते हैं। लेकिन जब गर्मी बहुत बढ़ जाती है ना तब एक थकान हम सबको घेर लेती, क्योंकि ना कहीं खेलने निकल पाते हैं, लू चल रही है, जहाँ निकल रहे हैं गर्मी के गर्म गर्म हवाओं के ऐसा लगते हैं गाल पे थपेड़े से पड़ रहे हैं, है ना। अभी थोड़े ही दिन पहले हम शाम को निकल रहे थे तो लग रहा था नहीं नहीं मत निकलो, रात में भी ऐसा लग रहा था जैसे दिन है, क्योंकि बच्चों गर्मी का बहुत असर इस बीच हमको देखने के लिए मिला। और जब इतनी गर्मी के बाद बारिश की बूंदें गिरी ना तो ऐसा लगा जैसे एक बारिश में सारी गर्मी उड़नचू हो गई, भाग गई, डर गई बूंदों से, है ना। इसीलिए तो मुझे बारिश बहुत पसंद है। कहीं भी देखिए आप, दूर दूर तक नज़र डालिए, धरती पर आपको हर जगह ऐसा लगेगा जैसे पेड़ों का रंग कुछ और सुंदर हो गया है, पौधे जैसे पहले से अधिक खिलखिला रहे हैं, जैसे मिट्टी खुद भी नाचने के लिए इधर से उधर कूदा फादी कर रही है, है ना। पानी के साथ छपाक जैसे होता है तो थोड़ी सी मिट्टी कहीं किसी के कपड़े पे गुड़ जाती है, कहीं हमारे पीछे जब कोई गाड़ी आ रही होती है तो छींटे पड़ जाते हैं। तो कई बार इसको थोड़ा सा अलग दृष्टि से देखें तो ऐसा लगता है जैसे मिट्टी खुद ब खुद नाचना चाह रही है और खुद ब खुद वो पेड़ पौधे सब हिल के हमारा स्वागत करने को तैयार हैं। लेकिन हम क्या करें, प्रकृति ने तो अपना सुंदर रूप दिखा दिया है, लेकिन हम अपने सुंदर नागरिक होने का परिचय कैसे दें? तो बच्चों, बात बहुत सीधी और बहुत सरल है कि हम इको दोस्त बने और प्रकृति को, धरती को अच्छा व्यक्ति, अच्छा नागरिक, अच्छा दोस्त होने का परिचय दें। अब आप सोच रहे होंगे कि इको दोस्त होता कौन है? तो बच्चों, जैसे हमारा कोई अच्छा दोस्त होता है जो हमारी मदद करता है, हमारा ध्यान रखता है, वैसे ही जो व्यक्ति प्रकृति का ध्यान रखता है, पेड़ लगाता है, पानी बचाता है, जानवरों की रक्षा करता है, पक्षियों से प्रेम करता है, वो इको दोस्त कहलाता है। और इको दोस्त बनने के लिए बहुत बड़े बड़े काम करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटे छोटे काम करके भी हम इको दोस्त बन सकते हैं। अब बताऊं आपको वो छोटे छोटे से काम कौन से हैं। जैसे बच्चों, पानी को कभी व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए, प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए, पक्षियों के लिए पानी रखना चाहिए, अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। बस इन छोटे छोटे कामों को करके ना हम धरती से दोस्ती कर सकते हैं, हम प्रकृति से दोस्ती कर सकते हैं। अब आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों ये बातें होने लगती हैं जब बारिश आने वाली होती है कि पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए? क्योंकि एक तो बच्चों, जब बारिश होती है तो पौधे, ज़्यादातर ऐसा होता है कि बारिश के मौसम में अच्छे फलते फूलते हैं, उनकी जगह बदलती है, उनका घर बदलता है, तब भी वो बच जाते हैं, उनके बचने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि इस मौसम में हमें ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अब क्योंकि इन दोनों का आपस में संबंध है, तो क्या संबंध है? पेड़ धरती के सबसे अच्छे मित्र होते हैं, है ना? सबसे ज़्यादा आपके एटमॉस्फेयर को ठंडा रखने में ये मदद करते हैं। और तो और, ये हरियाली जो है ना, वो बादलों को भी आकर्षित करती है, और जब बादलों को आकर्षण मिलता है तो आपको तो पता ही है, बस बारिश के आसार बढ़ते हैं, पेड़ मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं, मतलब मिट्टी को बहने से भी बचाते हैं। दूसरी बात, आपने देखा होगा जहाँ पेड़ पौधे बहुत होते हैं, आप कहीं से भी गुजरिए, जैसे जब हम भोपाल में ही कोलार की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि स्वर्ण जयंती पार्क जैसे ही आने को होता है तो बच्चों वहाँ का टेम्परेचर कुछ हमें कम लगने लगता है, या वहाँ पे गर्मी हमें कम लगने लगती है। और जब उस पार्क के हम अंदर चले जाते हैं तो हमें गर्मी थोड़ी और कम लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं बच्चों। कभी आप जाइए और देखिए, वहाँ गर्मी के मौसम में भी आप अंदर जाकर बैठोगे तो इतने बड़े बड़े पेड़ हैं कि आपको बहुत गर्मी नहीं लगेगी। पेड़ सीधे सूरज से आपको मिलने से रोकते हैं, मतलब क्या है, दरवाजे होते हैं ये, है ना, अच्छे दरवाजे होते हैं, धूप को सीधे आपके पास नहीं आने देते हैं। और तो और, ऑक्सीजन आपको जो मिलती है, जो आपकी प्राण वायु है, उसको भी ये साफ करते हैं। एक और चीज़ बहुत अच्छी बताऊँ, जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ चिड़िया की चूँचू ज़्यादा क्यों सुनाई आती है, कभी सोचा है? क्योंकि चिड़िया का घर होता है पेड़। और आप मान लीजिए कि उस पे फल लगे हुए हैं तो क्या ही कहने, जैसे इस वक्त खूब आम के पेड़ आपने देखे होंगे ना, जहाँ जहाँ आम के पेड़ लगे होंगे वहाँ आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि कोई आम टपकेगा तब आप खाओगे, या फिर आप खुद तोड़ोगे। खुद तोड़ा ठीक है, कोई बात नहीं, आपको साझा आम मिल जाएगा, लेकिन अगर वो आम पेड़ पर लगे लगे पक गया तो पहले आप नहीं खाएंगे, बल्कि पहले कोई गिलहरी खाएगी, फिर कोई चिड़िया खाएगी, और वो फल सबके पास से होता हुआ एक दिन अंदर से खाली होता हुआ नीचे टपक जाएगा, तब आपको मिलेगा। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ पक्षियों के लिए खाना पीना होता है, पक्षियों के लिए छांव होती है, और पक्षियों के लिए उस स्थान पे थोड़ी नमी भी होती है, तो वह अच्छे से वहाँ रह सकते हैं, है ना? इसलिए पेड़ों का धरती से बड़ा गहरा संबंध है। अब बच्चों, अगर पेड़ कम हुए तो गर्मी बढ़ेगी, जल संकट बढ़ेगा, मिट्टी बंजर हो जाएगी, और पक्षियों की संख्या भी कम होगी। इसलिए बरसात का मौसम पेड़ लगाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अब हमारे बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि आज मनीषा दीदी इतनी सारी बातें कर रही हैं, लेकिन ये तो बता ही नहीं रही है कि हम लोग करें क्या। तो बच्चों, आप क्या क्या कर सकते हैं वो अब बताती हूँ। आपका पहला कदम ये हो कि आप कभी भी कोई भी अच्छे दिन पर एक छोटा सा पौधा लगाइए, जैसे आपकी बर्थडे है, जैसे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, जैसे आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, आपने क्लास में टॉप किया, या आपको कोई उम्मीद है, आप सोच रहे हैं कि इस बार कम नंबर आए हैं, अगले साल मैं इतने नंबर लाऊंगा, तो आप फिर ऐसा करिए कि एक पौधा लगाइए, है ना, और सोचिए कि जब पौधा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ही मेरी हाइट भी बढ़ेगी, वैसे ही मैं भी बढ़ूंगा, मैं भी अच्छी पढ़ाई करूंगा, तो आपको मज़ा आने लगेगा। और सच में बच्चों, मैंने आपको एक बार एक छोटी सी कहानी भी सुनाई थी कि हमारे कॉलोनी के पार्क में एक बच्चे ने आम खाया और गुठली वहाँ पर साफ़ करके, बिल्कुल साफ़ करके उसने मिट्टी में गाड़ दी। थोड़े दिन बाद ना उसमें से जब अंकुर फूटे, फिर छोटे छोटे से वो बढ़ना शुरू हुआ। और मैं सच बताऊं आपको, अब तो ऐसा हो गया है कि वो पेड़ उस बच्चे के घुटने तक आ गया है। तो वो जब उस पेड़ के पास आती है ना, तब उसको इतना प्यार करती है और हर बार हर किसी को ये बताती है, आंटी ये मैंने लगाया था। कभी अपने भाई के साथ आएगी ना तो हमेशा कहेगी, देख रहे हो वो पेड़ मैंने लगाया था। मतलब उसको इतना इस चीज़ की खुशी है, इस चीज़ का इतना गर्व है कि ये पौधा जो बढ़ रहा है वो दरअसल उसके कारण है। उसने मिट्टी में एक गुठली को सिर्फ मिट्टी से दबा दिया था। आप सोचिए, कुछ नहीं किया था, उसने आम खाया था, गुठली को साफ किया था और कॉलोनी के पार्क में मिट्टी जहां उसको ज्यादा दिखी उसने थोड़ी सी मिट्टी को खोदा, उसके नीचे उस गुठली को दबा दिया। अब वो पौधा किस्मत से अंकुरित हो गया, अब वो जो गुठली थी वो अंकुरित हो गई। कितनी अच्छी बात है ना। ये आपके आत्मविश्वास में भी बहुत सहायक होती है बच्चों। अब आप आज संकल्प ले सकते हैं कि आप एक पौधा इस बारिश में ज़रूर लगाएंगे। मैं तो कहती हूँ एक क्यों, बहुत सारे पौधे लगाइएगा। अब आप पूछेंगे कौन सा पौधा लगाएं दीदी, तो मैं बता देती हूँ, कोई भी लगा लीजिए, नीम, आम, अमरूद, जामुन, गुलमोहर, तुलसी, गुड़हल, मोगरा, कितने अनगिनत पौधे हैं बच्चों, अनगिनत। कुछ फूल वाले, कुछ फल वाले, कुछ हरियाली देने वाले ऐसे ही घने घने वृक्ष जो आपकी प्राणवायु को बहुत शुद्ध करते हैं। तो देखना ये है कि आप इस बार कौन सा पौधा लगाते हैं, कौन सा पौधा चुनते हैं। और जैसे ही आप पौधे को लगा दें, बस उसे अपना दोस्त बना लीजिए, रोज पानी दीजिए, रोज बातें कीजिए, रोज आप चाहें तो उसकी ऊंचाई भी नाप सकते हैं। और हाँ, कभी कभी मम्मा को ले जाकर, क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन होगा, तो उसकी फोटो खींचिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, बताइए किस पौधे को आपने लगाया था, है ना। और अपने नानी नाना को, दादी दादा को उसकी फोटो भेज सकते हैं, अगर वो पास में है तो वैसे ही दिखा सकते हैं। और उस पर एक अच्छा सा पत्र लिख सकते हैं, एक पत्र पौधे के नाम, है ना। कैसे, अब आप सोचो, तो आप लिखोगे प्यारे नीम, या प्यारे आम, या प्यारे अमरूद, मैंने तुम्हें लगाया था, मैंने इस जगह पे लगाया था, मैंने तुम्हें इस तारीख को लगाया था, अब तुम इतने बड़े हो गए हो, या तुम्हें छोटी छोटी सी पत्तियां आने लगी हैं। आप धीरे धीरे देखेंगे कि एक पौधे के बहाने आपकी राइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी हो जाएंगी और आपको लगेगा कि आपने एक अच्छा और सच्चा दोस्त बनाया है। और अनजाने में आप किसके दोस्त बन गए हैं, धरती के, है ना। तो आप ये छोटे छोटे से काम किया करिए। बहुत से बच्चे इस वक्त सोच रहे होंगे कि दीदी इतनी सारी चीजें बता रही हैं, लेकिन हम तो फ्लैट में रहते हैं, हमारे घर में तो जगह ही नहीं है, तो क्या करें, हम कहाँ लगाएं। तो कोई बात नहीं है बच्चों, पुराने सामान तो होंगे, उनका इस्तेमाल कीजिए। पुरानी कोई बाल्टी होगी, कोई मटका आपके आसपास होगा, कोई प्लास्टिक की बॉटल होगी, कोई डिब्बा होगा, पुराना टायर होगा, ऐसे बहुत टूटा हुआ गमला होगा, इन सब को आप सुंदर रंगों से सजाकर गमले की तरह उपयोग कर सकते हैं। और इसे ही कहते हैं कि कचरे से आप कोई उपयोगी वस्तु बना सकते हैं, और वो भी ऐसी जिससे पर्यावरण भी बचेगा और घर भी सुंदर लगेगा। बच्चे छोटे छोटे काम करके ना आप अपना घर का मिनी गार्डन भी बना सकते हैं। आप जैसे कि मैंने कहा, कुछ बच्चे कहेंगे कि हमारे पास तो जगह नहीं है, तो आप अपनी घर में, बालकनी में, छत पे, खिड़की के पास थोड़ी सी भी जगह है तो वहाँ छोटा सा बगीचा ज़रूर बनाइए। अगर और जगह कम है तो मुझे एक और चीज़ बहुत अच्छी लगती है बच्चों, वो होते हैं लताओं वाले पौधे, है ना, जिसमें बहुत मोटा तना नहीं होता, बहुत जगह नहीं घेरते, लेकिन उसकी लताएं दूर दूर तक फैल जाती हैं, बेल जिसे कहते हैं ना, जैसे चूही की बेल बहुत सुंदर होती है बच्चों, और मधुमालती की बेल बहुत सुंदर होती है, एक टिकोमा की बेल बहुत खूबसूरत होती है। टिकोमा में सर्दियों में बहुत अच्छे नारंगी फूल आते हैं, वो ऐसा लगता है जैसे झूमर हो। ऐसे ही बच्चों मधुमालती में ना बहुत सारे इकट्ठे दोस्त जैसे इकट्ठे रहते हैं वैसे ही फूल आते हैं। तो ये सब वो पौधे मैं आपको बता रही हूँ जहाँ बहुत सारी जगह ना हो, लेकिन आपको अगर उस जगह हरियाली करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो। एक आइडिया और बच्चों, आप अपनी कॉलोनी का या मोहल्ले का ग्रीन क्लब भी बना सकते हो, है ना, क्योंकि आपको अकेले काम करना तो अच्छा लगता नहीं है, और ये बात मुझे पता है कि बच्चों को जो काम करना है वो मिलके करना है, और जब आप मिलके काम करते हो ना तो आपकी बात सुनी जाती है। तो आप अपने कॉलोनी या मोहल्ले में एक छोटा सा ग्रुप बनाइए, है ना, उसका नाम आप ग्रीन क्लब रखिए या कुछ भी, हरित क्लब या जो आपका मन आए, या धरती मित्र मंडली, कुछ भी अच्छा सा नाम रखिए, और इस क्लब में ना 5-7 बच्चों को ज़रूर जोड़िए, और फिर आप 5-7 बच्चे मिलकर महीने में कोई एक पौधा लगाइए, या सप्ताह में एक दिन उस जगह की सफाई पर निकलिए, पक्षियों के लिए दाना पानी रखिए, पौधों की देखभाल करिए, तब आपको समझ में आएगा बच्चों कि सच में कुछ ऐसे काम हैं जो करके आपको बहुत बहुत बहुत संतुष्टि मिलेगी, है ना। कई बार आपने देखा होगा कि कॉलोनी में खाली जगह पड़ी है, और जब वो जगह खाली होती है तो धीरे धीरे जो लोगों की प्रैक्टिस है ना बच्चों, वो क्या है कि जैसे ही जगह खाली दिखती है, या तो उस जगह पर कोई कबाड़े का सामान रख देते हैं लोग बाग, या क्या करते हैं कि उस जगह पर हो सकता है कोई कचरा ही फेंक जाए, फिर वो खाली जगह कचरे वाली जगह पर बदल जाती है, या उस जगह पर कोई गाड़ी पार्क करने लगता है। तो हमें क्या करना है, हमें उस जगह को सुंदर बनाना है। वो जो कॉलोनी का हम या मोहल्ले का हम ग्रीन क्लब बता रहे हैं ना आपको बच्चों, उस जगह पे हमने क्या करना है, हमने उस जगह को सुंदर सा पेंट करना है सारे बच्चे मिलके, क्योंकि ग्रीन क्लब में तो कई बच्चे होंगे, तो आपको पहले पेंट करना है, फिर आपके घर में जितना पुराना सामान है जैसे बाल्टी, मटका, प्लास्टिक का जो आपकी चीज़ें हैं उन सबको ले आइए, और फिर आप देखिए कि उसको कैसे रीयूज़ कर सकते हो आप लोग, है ना, कैसे आप रिसाइकिल कर सकते हो चीज़ों को। आप कॉलोनी के मम्मी पापा और जो आपके दोस्तों के होंगे और जो आंटी अंकल होंगे उनसे थोड़ी हेल्प लीजिए। एक कॉलोनी मुझे याद है, एक बार मैं दिल्ली गई थी बच्चों, आपको वो बात बताते हुए मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि वो कॉलोनी धीरे धीरे ज़ीरो वेस्ट बन गई है, मतलब उस कॉलोनी से कचरा बाहर जाता ही नहीं है। यहीं तक नहीं रुके हैं वो लोग, उस कॉलोनी में जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, छोटे छोटे बच्चों ने शुरुआत की थी ऐसे ही छोटे छोटे कामों से, कि वो संडे को मिलते थे और फिर एक जगह बैठते थे, कुछ नहीं करते थे, वो बस एक ही बात कहते थे, गीला कचरा एक जगह डालिए, सूखा कचरा एक जगह डालिए। ये एक मैसेज कॉलोनी के हर घर में देते देते देते देते आज वो कॉलोनी इतनी आगे निकल गई कि जब पर्यावरण दिवस था तब उन लोगों को इनाम मिला, और उसमें जो राशि मिली वो उन लोगों ने पता है किसे दी, उस कॉलोनी में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को। कितनी अच्छी बात है ना कि एक छोटी सी शुरुआत, छोटी सी, बहुत छोटी सी, कहाँ तक पहुँच गई। अब ये स्थिति हो गई है कि अभी तक तो गीला कचरा सूखे कचरे की बात थी, अभी वो ई वेस्ट को बिल्कुल अलग करते हैं, और बच्चों वो लोग कॉलोनी में जहाँ जगह दिखती है, जहाँ खाली जगह है वहाँ पौधा लगा देते हैं। उन्होंने लगभग अपनी कॉलोनी को इतना हरा कर दिया है कि उनको गाड़ियों के लिए किसी शेड की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जिससे धूप आने से बच सके, क्योंकि उन्होंने वैसे ही अपनी कॉलोनी को बहुत हरा भरा बना दिया है। जहाँ बहुत हरियाली होती है ना बच्चों, वहाँ धूप बहुत तेज़ नहीं लगती है, क्योंकि सूरज को भी ना आपको देखने में, आपको घूरने में ना एक पर्दा जैसा, मैंने बोला था ना दरवाजे होते हैं पेड़, वो दरवाजे जैसा फील होता है, वो एकदम डायरेक्ट आपको नहीं घूर सकता है सूरज। तो आपको क्या है, हरियाली की चादर ज़रूर बनानी है, या आपको ऐसा ज़रूर करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। अब बच्चे एक बार ये भी कह रहे थे कि दीदी हम कॉलोनी में जब इतने सारे बच्चे होते तो एक दिन किसी की बर्थडे, एक दिन किसी की बर्थडे। शुरुआत में क्या होता है कि सबको आप एक एक बार तो बहुत अच्छा गिफ्ट दे देते हो, थोड़े दिन बाद आप रियलाइज़ करते हो कि अगर कॉलोनी में मान लीजिए 30 बच्चे हैं, हर बच्चे की बर्थडे, मतलब एक महीने में अगर 2-3 मतलब 12 महीने ही होते हैं ना बच्चों, 12 महीने में दो बच्चों की तो कम से कम पड़ेगी और किसी महीने में तीन भी पड़ जाएगी। तो तीन बच्चों के लिए अगर आप बहुत महंगे महंगे गिफ्ट लोगे तो पापा मम्मी की पॉकेट पे भी तो असर आएगा ना। तो देखिए, अगर आपने अपनी कॉलोनी या मोहल्ले में एक छोटी सी नर्सरी जैसी बनाई हुई है तो कितना अच्छा होगा कि आप उन्हीं में से कुछ पौधे निकालोगे छोटे छोटे से। अगर आपके किसी के घर से डिस्पोजेबल ग्लास निकलते हैं या कुछ भी ऐसा निकलता है तो उसमें आप उनको लगाओगे और गिफ्ट कर दोगे। तो पहली बात तो आपको महंगा उपहार खरीदने की जरूरत नहीं होगी। दूसरी बात, आप हर बार एक मैसेज दोगे, जब जब किसी को पौधा दोगे तब तब उसके साथ में अनजाने में एक मैसेज भी पहुंचेगा कि ये बच्चे कितने होशियार हैं और कितने समझदार हैं। देखो, ये सबको हरियाली का उपहार देते हैं, है ना, और ये देख के बड़े बड़े लोग भी आपसे सीख लेंगे। और आपको पता है, कई बार बहुत सारे लोग स्मृति में भी पौधा लगाते हैं, है ना, जैसे किसी का कोई प्रियजन गुजर जाता है तो भी वो पौधा लगाते हैं उसके नाम से। और ये कितनी अच्छी बात है कि जब जब आप उस पौधे को देखते हैं, उस पौधे को बड़ा होता हुआ देखते हैं, वृक्ष बनता हुआ देखते हैं, उसकी छांव में जाकर बैठते हैं, तो आपको याद आता है कि ये बिल्कुल उसी बुजुर्ग की तरह है जो आपको इस दुनिया में अकेला छोड़ गए, है ना। तो उस वृक्ष का साथ भी आपको आपके बुजुर्गों की याद दिलाता है। लेकिन बात यह है कि क्या पौधा लगाना ही पर्याप्त है? तो मैं कहूंगी नहीं। सिर्फ पौधा लगाना तो पर्याप्त नहीं है बच्चों, क्योंकि उसको बचाना बहुत जरूरी है। एक पौधा लगाना शायद फिर भी आसान हो, लेकिन उस पौधे को पेड़ बनाना ना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बच्चों, क्योंकि उसे आपको नियमित पानी देना पड़ता है, आपको उसे जानवरों से भी बचाना पड़ता है, ये भी देखना होता है कि आसपास जंगली घास ना आ जाए, ये भी देखना होता है कि कहीं वो पौधा सूख तो नहीं रहा। तो क्या करेंगे इसके लिए बताइए? वही ग्रीन क्लब, किसी की जिम्मेदारी पानी देने की, किसी की जिम्मेदारी छोटी छोटी लकड़ियों से फेंसिंग बनाने की, किसी की जिम्मेदारी उसको सूखने ना देने की, और किसी की जिम्मेदारी उसकी रख रखाव की। तो बस इसीलिए कहते हैं ना कि अकेले कोई काम नहीं सधता, हमको दो तीन लोगों को तो साथ में लेके चलना होता है। अब हम बात कर रहे हैं ना कि बरसात आने वाली है तो इको दोस्त बने, तो बरसात का क्या क्या खास मूल्य है हमारे पौधों के लिए? तो बच्चों, ये बारिश का पानी बहुत कीमती होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसमें नहाते हैं, धोते हैं, छप छप करते हैं, उचकते हैं, कूदते हैं, डांस करते हैं और फिर इसे बह जाने देते हैं। नहीं, बाल सभा सुनने वाले बच्चे तो समझदार होते हैं ना, तो फिर ऐसा कैसे कर सकते हैं हम बच्चों? हमें इसे बचाना है। जो घर की छत से पानी बह बह कर चला जा रहा है, पहले तो हम मम्मी पापा से बात करें कि हम वाटर हार्वेस्टिंग की कहीं कोई योजना बना सकते हैं क्या। कॉलोनी में जो आपकी समितियां हैं, जो मोहल्ले की समितियां, उसमें बात करिए। जो आपका ग्रीन क्लब है उसमें जो आप बच्चे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जाएं, बात करें, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि वर्षा के जल को बचाने की कोशिश कर सकते हैं? आपको ज़रूर कुछ ना कुछ गंभीर जवाब मिलेगा, ज़रूर आपके लोग बात मानेंगे। फिर अगर नहीं हो पा रहा है तो छोटे छोटे तरीकों से टंकी में पानी को इकट्ठा कीजिए, अपने माता पिता से बात कीजिए, और ये ख्याल ज़रूर रखिए कि कैसे भी पानी को व्यर्थ नहीं बहने देना है, है ना। आपको ये भी ध्यान रखना है कि कॉलोनी और मोहल्लों में जो पार्क वाली जगह है उसको बहुत ज़्यादा सीमेंटेड ना बनाया जाए, है ना। कहीं कहीं कच्ची मिट्टी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो पानी को धरती के भीतर जाने में मदद करती है बच्चों। उसके बाद ये भी है कि गर्मी और बरसात दोनों मौसमों में पक्षियों को हमारी सहायता की आवश्यकता होती है ना। तो अपने घर की छत पर, बालकनी में, आंगन में, आप गर्मियों में जैसे पानी रख रहे थे ना, थोड़ा दाना रख रहे थे, अब चूंकि बरसात हो जाएगी पक्षियों को दाना पानी बहुत पानी की तो ज़रूरत नहीं होगी, पर हाँ दाने की तो होगी, तो थोड़ा शेड में आप ध्यान रखें कि दाना गीला ना हो, आकर पक्षी खा सकें, आप उनको देखकर आनंद ले सकें, बस यही है। इसके बाद हमें यह भी देखना है कि पर्यावरण के शत्रु कौन कौन से हैं, है ना। तो उसमें एक सबसे बड़ा नाम किसका आता है? प्लास्टिक का। आप अपनी कॉलोनी या मोहल्ले में ये भी कर सकते हैं कि जो भी आपको दिख रहा है दुकानों से प्लास्टिक के थैले लेता हुआ आ रहा है, उसको कुछ ज़्यादा नहीं बोलना है, सिर्फ ये बोलना है, आंटी या अंकल, अगली बार घर से कपड़े का थैला लेकर जाइएगा। या फिर वही ग्रीन क्लब अगर आपने बना लिया या बनाने वाले हो तो आप पुराने कपड़े कलेक्ट कर सकते हो, और इस चीज़ के लिए आप सबसे थोड़ी सी हेल्प लेकर या किसी बड़े को ये जिम्मेदारी देकर पुराने कपड़ों से थैले बनवा सकते हो, कॉलोनी और मोहल्ले में बंटवा सकते हो। प्लास्टिक की बोतल का भी कम उपयोग करो। इससे अच्छा होता है कि अगर हम स्टील के बर्तन यूज़ करें, है ना, स्टील का ग्लास यूज़ करें। और तो और आजकल स्कूल के लिए बड़े अच्छे अच्छे टिफ़िन बॉक्स, लंच बॉक्स आपके स्टील में भी आ रहे हैं, बॉटल्स भी आ रही हैं, उनका उपयोग करिए। ये जो एकल उपयोग वाली प्लास्टिक होती है ना बच्चों, उनसे बचने की

0: स्कूटर से वो डिस्पोजेबल ग्लास को फेंक रहे थे, अगर गाड़ी में बैठे थे तो वो गाड़ी से फेंक रहे थे। तो अगले चौराहे तक सड़क के किनारे किनारे बहुत सारे डिस्पोजेबल ग्लासेस मैंने उड़ते हुए देखे, क्योंकि उनमें कोई वजन नहीं होता तो वो जरा सी भी आंधी जैसी चले तो वो उड़ते हैं। फिर कितनी गलत बात है ना बच्चों, हम सब चीज़ें बच्चों को ही सिखाने की कोशिश क्यों करते हैं? हम खुद बड़े होकर ये क्यों नहीं सीखते हैं कि हमको भी इस धरती को, इस प्रकृति को, अपनी सड़कों को बचाना है, साफ रखना है, स्वच्छ रखना है, है ना? तो आप भी बच्चों अगर किसी को ऐसा करते देखें तो ज़रूर टोकिएगा, मगर प्यार से, बहुत अच्छे शब्दों में, बहुत अच्छी भाषा के साथ। तो आज की बाल सभा में बच्चों हमने आपको खेल खेल में इको दोस्त बनना तो सिखा दिया है। अब जल्दी से हमारी बारी है संकल्प की। हम थोड़े से संकल्प ले लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। अगली बाल सभा में भी हम जब आपसे मिलेंगे तो ये बात जरूर करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारे संकल्प इतने ही हैं। कि मैं जहां तक संभव होगा धरती की या धरती का अच्छा दोस्त बनूंगा या बनूंगी। मैं इस बरसात के मौसम में कोई पौधा अवश्य लगाऊंगी। मैं उस पौधे को वृक्ष बनने तक उसका ख्याल रखूंगा या रखूंगी। मैं प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करूंगी। मैं किसी भी ऐसे जीव को परेशान नहीं करूंगी जो मेरे आसपास है, जैसे चींटियां भी हो सकती हैं, चींटा भी हो सकता है, और बरसात में बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकलती हैं जिनसे हमें बचकर तो रहना है लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। और हाँ, अपने आसपास मैं स्वच्छ वातावरण निर्मित करूंगा या निर्मित करूंगी। अगली बार कुछ ऐसी ही बातें फिर करेंगे, लेकिन अभी के लिए अपनी मनीषा दीदी को अनुमति दीजिए बाल सभा कार्यक्रम समाप्त करने की। तो बच्चों नमस्ते। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम। मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: बाल सभा।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। एक अंतराल के बाद सुनेगा हमारा अगला कार्यक्रम।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो।

0: आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नब्बे.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। आइए सुनते हैं कार्यक्रम टैग गुरु।
2: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर यह रेडियो आजाद हिंद है। अब वक्त है कार्यक्रम टैग गुरु का। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर रोहित त्रिवेदी जी से,
3: जो इंग्लिश के प्रोफेसर हैं भोपाल स्थित सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में। टेक गुरु कार्यक्रम के तहत हमने उनसे बात की, तो आइए सुनते हैं डॉक्टर रोहित त्रिवेदी से ये बातचीत।
2: सर, सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के ऊपर, तो लेकिन कुछ हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए। सर,
4: मैं यहाँ वर्तमान में प्रोफेसर हूँ सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज भोपाल में। और यदि बात करें तो बचपन से ही मैं दृष्टिहीन हूँ, और बाय बर्थ इनफैक्ट। और शुरू में मेरी पढ़ाई जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्कूल्स होते हैं, स्कूल फॉर द ब्लाइंड, उसमें हुई। और फिर प्रयास किए कि कैसे, मैंने रेगुलर स्कूल्स में एडमिशन मिलने में बड़ी दिक्कत होती थी, पर फिर पढ़ाई हुई और उस टाइम पे किताबें वगैरह मिलती नहीं थी। तो बाद में तो शुरू में तो लोग सुनाते थे पढ़ के, बाद में फिर कैसेट रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड कर करके अपने लेसन्स तैयारी वगैरह करी। 1989 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ गवर्नमेंट PSC के थ्रू, और मैंने सिलेक्शन हुआ उसके बाद में, और मैं प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर बना कॉलेज में। तो 1993 में हम लोगों को पता पड़ा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एक इनोवेशन हुआ है, और उन्होंने कोई स्पीच सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसको कंप्यूटर पे लगा के, एक बॉक्स को जो कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पे है उसको हम स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं कंप्यूटर पे जो कुछ भी है। तो ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे एक वर्कशॉप कराई ब्लाइंड लोगों के लिए, और इस तरह से कंप्यूटर पे फिर मैंने अपना खुद का कंप्यूटर लिया और कंप्यूटर सीखना शुरू किया। और फिर हम लोगों ने एक संस्था है यहाँ पे आरुषि करके, तो उसमें हम लोगों ने कंप्यूटर सेंटर शुरू किया जहाँ हमने ब्लाइंड बच्चों को कंप्यूटर सिखाना शुरू किया। तो कंप्यूटर सीखने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि अभी तक बच्चे जो थे वो अपनी पढ़ाई के लिए ऑडियो पे डिपेंडेंट थे या ब्रेल पे डिपेंडेंट थे, ब्रेल में किताबें होती नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि अगर उनको अपने लिख कर कोई चीज़ कम्युनिकेट करना है तो उनके पास कोई साधन नहीं था। तो ये इट वॉज़ अ बिग रेवोल्यूशन इन दोज डेज कि अब चाहो तो आप अपनी बात कंप्यूटर पर लिख सकते हो और प्रिंट करके अपने बात भेज सकते हो या मेल के माध्यम से भेज सकते हो। तो ऐसे हम लोगों ने शुरुआत करी टेक्नोलॉजी की।
2: तो सर, इस तरह से टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई, आपने पढ़ाई की और इतना आपने सारा अपनी जर्नी हमसे शेयर की, तो वो बीच में सर और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी से आपका जुड़ाव होता रहा?
4: देखिए, अगर जहाँ तक हम दृष्टिबाधित लोगों के लिए कहें तो हम टेक्नोलॉजी को 3-4 तरह से समझ सकते हैं। एक तो हमारे पास में कंप्यूटर पे टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर होता है। इसका मतलब यह है कि जो जो कुछ कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखता है स्क्रीन टेक्स्ट, उस वो पूरा स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर का काम यह होता है कि जो कुछ कंप्यूटर के स्क्रीन पे अवेलेबल है वो टेक्स्ट में, इन स्पीच में कन्वर्ट कर दे। साथ ही साथ, क्योंकि मान लीजिए उसमें ये भी फैसिलिटी होती है कि जो आपको छोटी छोटी जो बारीकियां होती हैं वो भी आपको कमांड देके आप उससे इंफॉर्मेशन ले सकते हो सॉफ्टवेयर के माध्यम से। फर्ज कीजिए हम एक डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, और उस डॉक्यूमेंट में मान लीजिए कुछ हमको चीज़ें बोल्ड में करना है, इटैलिक्स में करना है, उसका कलर चेंज करना है, तो सॉफ्टवेयर में अगर हम एक कमांड देंगे कि उसमें ये फॉन्ट कौन सा है, उसका टाइप क्या है, उसका कलर कौन सा है, कित लाइन स्पेसिंग क्या है आपकी, सिंगल स्पेसिंग है कि डबल स्पेसिंग है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सॉफ्टवेयर में कमांड के माध्यम से स्पीच में मिल जाएगी। तो इससे क्या है कि जो ब्लाइंड व्यक्ति है वो इंडिपेंडेंटली अपना पूरा काम कंप्यूटर पे कर सकता है। तो एक तो ये टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर हो गया जी। इसके अलावा जो लोग थोड़ा देख सकते हैं तो उनके लिए मैग्निफिकेशन की फैसिलिटीज़ है, या मैग्नीफाइंग सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे है उसको बड़ा करके देख सकते हैं, लार्ज फॉन्ट में आ जाता है। और ऐसे ही अगर आपको कंप्यूटर के आने के बाद में लार्ज प्रिंट की बुक्स निकालना भी बड़ा सरल हो गया है कि अगर आप चाहें तो जो बच्चे कम देख पाते हैं और वो बड़े अक्षर पढ़ सकते हैं तो हम किताबों को लार्ज फॉन्ट में तैयार कर सकते हैं। फिर किताबों को में जो अक्षर लिखे हैं उसको मैग्नीफाई करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लासेस मैग्नीफायर्स आ गए हैं काफ़ी सारे, तो वो मैग्नीफाई कर देते हैं। लो विजन वाले लोगों के लिए एक एडवांटेजेस चीज़ हो जाती है। दूसरा एक चीज़ और है, उसको बोलते हैं रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले। तो रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले में क्या होता है, इसको हम अपने कंप्यूटर से लगाते हैं, तो कंप्यूटर में अगर लगा दिया तो जो कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पे वो ब्रेल में सीधे आ जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रेल डिस्प्ले कहलाता है। और उसमें ब्रेल डिस्प्ले के का अगर हम बताएं तो ब्रेल में 6 डॉट्स होते हैं, तो वो पूरी एक लाइन जो है वो टेक्स्ट जो है वो ब्रेल में कन्वर्ट हो जाएगा अलग अलग। तो ये एक चीज़ हो गई। और तीसरा ये है कि हम एक और टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई इमेज फाइल है, तो इमेज फाइल को हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करके टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर या फ़ोन के माध्यम से हम उसको सुन सकते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई चीज़ की फ़ोटो खींची, किताब को पूरा स्कैन कर लिया, स्कैन करके उसको इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया और टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर लिया। अब ये सारे सॉफ्टवेयर जो पहले कंप्यूटर में थे वो कंप्यूटर से मोबाइल पे भी आ गए। तो अगर आपके पास में एंड्रॉयड फ़ोन है तो हर एंड्रॉयड फ़ोन में एक सेटिंग के अंदर एक फीचर होता है एक्सेसिबिलिटी करके। एक्सेसिबिलिटी में अलग अलग डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए क्या क्या अकोमोडेशन हो सकते हैं, तो खास तौर पे एक सॉफ्टवेयर होता है टॉकबैक। तो टॉकबैक को अगर आप चालू करेंगे तो कोई भी मोबाइल फ़ोन बोल पाएगा, स्पीच में कन्वर्ट हो जाए। तो मोबाइल का सारा काम जो है वो इंडिपेंडेंटली ब्लाइंड व्यक्ति कर सकता है। किताबों को सुनना है पढ़ना है तो वो मोबाइल फ़ोन से ही अपनी किताबों को सुन सकता है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है अभी। अब इस पूरे इको सिस्टम का यूज़ करते हुए अब क्या किया है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने, जैसे हमारे यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है डेजी फोरम ऑफ इंडिया। तो डेजी फोरम ऑफ इंडिया इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि 100 से अधिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ब्लाइंड बच्चों के लिए किताबों को एक्सेसिबल फॉर्मेट में तैयार करते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, अपनी सारी किताबों को एक वेबसाइट बनाई और उस पर अपलोड कर दिया। उसका नाम है सुगम्य पुस्तकालय। तो सुगम्य पुस्तकालय के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि किताबों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम उसको अपलोड कर दिया ई टेक्स्ट फॉर्मेट में, या फिर इवन ऑडियो बुक्स को भी हम उसमें अपलोड कर सकते हैं किताबों को रिकॉर्ड करके। तो और फिर जो बच्चे हैं अपने मोबाइल पे उनके ऐप होगा और वो ऐप के माध्यम से या उसको हम लोग मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक इन किताबों को सुनने के लिए प्लेयर्स बने हैं जिनको बोलते हैं डेजी प्लेयर। डेजी मतलब होता है डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम DAISY। तो इसके माध्यम से हम डेजी प्लेयर के माध्यम से किताबों को सुन सकते हैं। और ये जो है स्पेसिफाइड फॉर्मेट में किताबें तैयार होती हैं, जैसे कि आम बच्चा जो है साइटेड बच्चा है किताब को पेज वाइज हेडिंग वाइज सब अंदर के सब हेडिंग्स वो आराम से सुन देख सकता है पढ़ने पलट के। तो हम किताब में भी ये फैसिलिटी है ऑडियो बुक में भी या ई टेक्स्ट में भी कि उसको हम इस तरह से फॉर्मेट डिज़ाइन करते हैं कि वो किताब मान लीजिए मुझे 115 पेज पे जाना है तो मैंने बस टाइप किया 115 तो किताब का 115वां पेज से आप पढ़ना शुरू करोगे। तो इससे जो एक कैसेट रिकॉर्डर जब हम रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करते थे उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता था कि मान लीजिए अगर एक बार कैसेट रिकॉर्ड किए तो वो या लीनियर रिकॉर्डिंग होती थी तो कि आपको पता नहीं होता था कि कौन सी आपका मान ली किताब जो है 12 घंटे की किताब है तो आपका जो चैप्टर वो दूसरे नंबर के कैसेट में है कि 5वें नंबर के कैसेट में है कि 8वें नंबर के कैसेट में है। और फिर हमको उस चैप्टर के भी पर्टिकुलर सब सेक्शन में जाना है या हमको सिर्फ उसकी क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने क्वेश्चंस देखने, तो वो हमको पता नहीं होता था। पर यहाँ पर ये फैसिलिटी है कि हम स्किप कर सकते हैं या नेविगेट कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए।
2: सर, आपने इतनी डिटेल में हमें बताया और सवाल और मेरे मन में उठा कि आपने इतनी कंप्यूटर और मोबाइल में सब तमाम तरह की टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, आज लोग जो यूज़ करते हैं इस टेक्नोलॉजी को, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उनको मिल रहा होगा।
4: जी, उनका जो
2: हर क्षेत्र में,
4: हाँ, लोगों पे डिपेंडेंस ख़त्म हो गया है। बच्चे जो है वो अपने आप अपना पढ़ाई कर लेते हैं, अपने आप लिख लेते हैं। अब तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी CBSE ने अलाउ कर दिया है लोगों को कि ब्लाइंड बच्चे कंप्यूटर पे अपना एग्ज़ाम खुद इंडिपेंडेंटली दे सकते हैं। अभी तक उनको लिखना अपने राइटर पे डिपेंड करना होता था कि राइटर जो लिखेगा वो उनको डिपेंडेंट होना पड़ता था उनको राइटर पे। अब उनको राइटर पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, वो चाहें तो अपना अगर उनमें प्रैक्टिस कर ली है तो वो इंडिपेंडेंटली अपना एग्ज़ाम कंप्यूटर पे खुद दे सकते हैं। तो एक वो कॉन्फिडेंस, कई लोगों के तो 90% से ऊपर 98% तक मार्क्स आए कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देने के बाद में, तो वो एक फ्रीडम मिल गई है। फिर ऐसे फील्ड्स जहाँ पे वो अभी तक काम नहीं कर पाते थे, पढ़ाई नहीं करते थे, उन फील्ड्स में उनकी पढ़ना शुरू कर दिया। लोगों ने लोग IT के फील्ड में जा रहे हैं, विजुअली इम्पेयर्ड पीपल दे आर गोइंग। IT का जो फील्ड है, कंप्यूटर साइंस है, मैनेजमेंट है, MBA कर कर के लोग आगे निकल रहे हैं और कॉरपोरेट सेक्टर्स में उनको एम्प्लॉयमेंट्स मिल रहे हैं, फाइनेंस में, HR में, मार्केटिंग में। वो सब लोग जो हैं, अगर आप अपने आप को इक्विप रखेंगे, अपने आप को अप टू डेट रखेंगे, पढ़ाई अच्छी करेंगे और सबसे बड़ी बात है इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे, तो आप बहुत सारे फील्ड्स में अब उनके लिए ओपनिंग्स शुरू खुल गई हैं, नौकरियाँ मिलने लगी हैं लोगों को और लोग इंडिपेंडेंटली काम करने लगे। पिछले 2 साल में इतना ज़बरदस्त फिर से क्रांति आई है IT फील्ड में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग करके बहुत सारे काम हो सकते हैं। मान लीजिए किसी के सामने कोई इमेज है, तो इमेज को वो जो मोबाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पूरे के माध्यम से पूरा डिस्क्राइब कराया जा सकता है कि किस चीज़ की इमेज है, फ़ोटो में क्या हुआ है, अगर किसी व्यक्ति की फ़ोटो है तो उसने कौन सी ड्रेस पहनी हुई है, उसका वो का उसके आसपास का बैकग्राउंड क्या है, या मान लीजिए मैं इस रूम में आपको बैठ बात कर रहा हूँ तो मैंने इस रूम की फ़ोटो खींची, तो इस रूम में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो सारा कुछ जो है वो मोबाइल के माध्यम से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम तक पहुँच सकता है। तो हम अपने मोबाइल के माध्यम से पूरी दुनिया को बिना किसी और की मदद से जान सकते हैं।

0: सर, हम अक्सर असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में सुनते हैं काफ़ी, हमें क्या आप उस पर कुछ रोशनी डालेंगे?
1: देखिए, असिस्टिव टेक्नोलॉजी और कुछ नहीं है, जो टेक्नोलॉजी जो है वो अगर किस तरह से एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को, एक किसी एक दिव्यांग व्यक्ति को कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे मदद मिल सकती है, ऐसी टेक्नोलॉजी को हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं। वो आपको ऑडियो में फीडबैक दे सकती है, वो आपको हैप्टिक फीडबैक मतलब वाइब्रेशन के माध्यम से फीडबैक दे सकती है, वो आपको वॉइस क्लूज के माध्यम से फीडबैक दे सकती है, वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद करके आप उसकी मदद ले सकते हैं, आप उसका यूज़ अपने मूवमेंट के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्हील चेयर यूज़ कर रहा है, मोटराइज व्हील चेयर, तो वो उसका यूज़ ऐसे कर सकता है। वो हियरिंग एड हो सकती है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो सुन नहीं पाता है, जैसे मैंने आपको बताया कोई टेक्टाइल क्लू, जैसे मैंने आपको बताया ब्रेल डिस्प्ले आता है। तो ऐसी सारी टेक्नोलॉजी जो किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी को असिस्ट करती है अपने काम को इंडिपेंडेंटली करने में और अच्छे से करने के लिए करने में, और उसकी जो डिसेबिलिटी को ओवरकम करने में उसकी मदद करती है, ऐसी टेक्नोलॉजी को हम लोग बोल सकते हैं कि वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी।
0: सर, एक बात और, ये टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं, लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग इससे अवेयर नहीं होते, मालूम नहीं होता। सर, उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है?
1: इसके लिए आप जैसे लोग जो हैं, जो अपने हम लोगों की बातों को और जगह तक पहुंचाएंगे, जहां तक बहुत सारे लोग सुनेंगे इस बात को, तो उन तक तो रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इसके माध्यम से बात पहुंच सकती है। और हम लोग कोशिश भी करते हैं कि सोसाइटी में भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग करें, टीचर्स के साथ में, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ में, डिसेबल्ड लोगों के साथ में, उनको बताएं जा जाके कि भाई देखो ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उनकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ट्रेनिंग दें उनको कि कैसे उसका यूज़ करना है और कैसे उसको मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन करना है इस टेक्नोलॉजी का, और कहाँ कहाँ वो अपने आप को, अपने डिसेबिलिटी को कैसे ओवरकम कर सकते हैं ये यूज़ करके। तो वो काम है लोगों का जो कर सकते हैं, तो ट्रेनिंग और अवेयरनेस इससे मदद मिल पाएगी।
0: अक्टूबर के 2nd Thursday जो होता है उसमें विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है, तो इस पर और कौन कौन से सर कुछ कार्यक्रम वगैरह होते हैं स्पेशल? क्योंकि पहले और अब में तो काफ़ी डिफरेंस आया ही है, आप जो बता रहे हैं टेक्नोलॉजी आ गई, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं।
1: देखिए, ऐसे जो ओकेजन्स होते हैं इनका पर्पज़ यही है कि अधिक से अधिक लोगों तक इस बात की अवेयरनेस पहुँच पाए कि नंबर एक की दृष्टि साइट को प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नंबर दूसरी बात कि अगर साइट लॉस हो रहा है और वो क्योरेबल है तो उसको पहले क्योर करना, तीसरी बात यह कि जो लोग साइट लूज़ कर चुके हैं उनको सही गाइडेंस मिले, और वो अपने अगर लेट साइट लूज़ होती है, या एक कहना चाहिए कि एक उम्र के बाद अगर साइट लूज़ होती है तो एक ट्रॉमा सा आ जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, उसका फाइनल ईयर, और धीरे धीरे करके उसकी साइट जा रही है, तो वो एक ट्रॉमा के स्टेट में पहुंच जाता है और वो डिप्रेशन की स्टेट में, तो उसको निकालना उस स्टेज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसको ये कॉन्फिडेंस देना कि नहीं, तुम बिना आँख के भी सब कुछ कर सकते हो, चल सकते हो, काम कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, इंडिपेंडेंट लाइफ लीड कर सकते हो, तो वो कॉन्फिडेंस दिलवाना बच्चों लोगों को, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ों में इस तरह के फेस्टिवल्स ओकेजन्स मदद करते हैं।
0: तो सोसाइटी इसमें किस तरह से हेल्प कर सकती
1: है? सोसाइटी इस तरह से हेल्प कर सकती है कि अगर हम इस बात पे विश्वास करें या इस बात को हम कम्युनिकेट करें या इस बात को समझें कि हर आदमी हर काम को कर सकता है, उसको काम करने का तरीका अलग हो सकता है, पर कैसे करेगा वो हमको फिर फिगर आउट करना होगा। तो हम लोग, सबसे बड़ी बात यह कि हम लोगों को नौकरियां नहीं देते कि अरे ये ब्लाइंड है, अरे ये काम कैसे करेगा, अरे ये यहाँ पे वहाँ पे जाएगा कैसे लोगों से मिलने के लिए, अरे पहले नौकरी तो दो आप उसको, तो और फिर उसको उस प्रकार की ट्रेनिंग दो। तो वो अगर हम आपको इस बात में अगर हम लोगों को समझा पाएँ कि हर व्यक्ति, और कई बार क्या है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ने कैसे लोगों की लाइफ को चेंज किया है, डिसेबल्ड लोगों की, ये लोगों को पता नहीं है, और इसीलिए उनको लोगों को काम देने में डरते हैं, लोगों पर उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता है और उनको दया की दृष्टि से देखते हैं, उनको मदद करना चाहिए वो मदद नहीं मिल पाती जो एक्चुअल उनको एम्पावर करने में करा जाए लोगों को और उनको सपोर्ट करें तो वो इंडिपेंडेंट लाइफ लीड कर सकते हैं। तो सोसाइटी का यही काम है कि उसमें आपकी हेल्प करें।
0: सर आपने बहुत अच्छी बात की कि लोग ट्रस्ट नहीं करते, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सर आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों से जो टेक्नोलॉजी पे हमने बात की कि किस तरह से आखिर में फिर से आप उनसे ये कहेंगे कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और अपनी जो पढ़ाई को ना रुकने दें और अपने भविष्य को बनाएं?
1: सबसे बड़ी बात है कि हमको जो इनक्विजिटिवनेस है या हमारी जिज्ञासा है अगर लोगों में बनी रहेगी और वो एक उनमें डिटर्मिनेशन रहेगा कि हमको अपने आगे बढ़ना है तो लोग उनकी डिसेबल्ड लोगों की मदद करेंगे। तो पहले तो स्टेप दिव्यांग को खुद को लेना है, विकलांग व्यक्ति को, कि वो आगे बढ़े और फिर समाज भी उसको उनको मदद करे। दोनों एक बड़ा पारस्परिक सा है ये संबंध, तो एक दूसरे की मदद से लोग आगे बढ़ सकते हैं और एक इंक्लूसिव सोसाइटी को हम लोग आगे की परिकल्पना कर सकते हैं कि एक अच्छी सोसाइटी बन जाएगी। और आई थिंक ये एक बात है।
0: इतना टाइम हो गया पहले और अब में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया होगा
1: जी,
0: मतलब एक पॉजिटिव ये चेंज है। आप जो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी आ गई है, सब लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब हर तरह से लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं और लोग भी हेल्प कर रहे हैं
1: जी। हाँ, लोग हेल्प कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, पर एक जो एक जुनून होना चाहिए कि हम लोग मिल के एक ऐसा माहौल क्रिएट करें या एक ऐसा वातावरण क्रिएट करें कि अधिक से अधिक लोगों को एक एम्पावरमेंट हो पाए, उनको एजुकेशन मिल पाए। तो वो सारी चीज़ें जब तक टेक्नोलॉजी है, मगर टेक्नोलॉजी को हार्नेस करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करके उसका एडवांटेज लोगों तक पहुंचाना उनके भले के लिए, उनके अध्ययन अध्यापन के लिए, उनके रोज़गार में उनको बढ़ावा देने के लिए, उस पर काम होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा एक चीज़ ये है कि एक आस्पेक्ट बहुत है कि अब सारा जो दुनिया है वो इंटरनेट पे डिपेंडेंट है और इंटरनेट पे कुछ गाइडलाइंस हैं कि वेबसाइट्स कैसी हों कि जो ब्लाइंड बच्चा जो है, व्यक्ति है, वो स्क्रीन रीडर के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर पाए
0: जी।
1: है ना, पर वो उनको बोलते हैं वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस, WCAG गाइडलाइंस कहलाती हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शन है। एक एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन शुरू हुई थी जिसमें कि ना केवल फिजिकल एक्सेसिबिलिटी की बात कही थी कि भाई रैंप, रेलिंग, पाथवे टाइल्स, एक्सेसिबल टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, पर इसके अलावा जितनी सर्विसेज हैं वो भी एक्सेसिबल होनी चाहिए। मान लीजिए आपने एक रेलवे स्टेशन पे टच स्क्रीन लगा रखा है तो वो ब्लाइंड व्यक्ति तो नहीं कर पाएगा उससे काम। अगर वो टॉकिंग होता, स्पीच होता उसके अंदर, तो ब्लाइंड व्यक्ति भी टच स्क्रीन का यूज़ करके टाइम टेबल पता कर लेता। या मान लीजिए आप POS मशीन है तो वहाँ पर वो ब्लाइंड व्यक्ति जो है क्योंकि टच स्क्रीन पर टाइप करके नंबर टाइप करके पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो वेबसाइट्स, ऐप्स और डिवाइसेस, इनको एक्सेसिबल बनाना, या माइक्रोवेव ओवन है उसमें टच स्क्रीन है या वॉशिंग मशीन में टच स्क्रीन है तो वो ब्लाइंड व्यक्ति काम उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। तो उसको सोसाइटी का काम ये है कि हम ऐसा माहौल क्रिएट करें जहाँ पर हर व्यक्ति उसका टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाए।
0: इंस्टीट्यूट्स भी होंगे जो ट्रेनिंग देते होंगे?
1: हाँ, इंस्टीट्यूट्स ट्रेनिंग दे रहे हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करने में। जैसे भोपाल में मैं जानता हूँ कि एक संस्था है जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है कंप्यूटर सिखाने में, मोबाइल का यूज़ करने में ब्लाइंड बच्चों को, तो वो लोग करते हैं। कई और संस्थाएं भी हैं जो कि इसमें काम लोग लगी हुई हैं। बहुत सारे डिवाइस आने लगे हैं आजकल, जैसे मान लीजिए ब्लड प्रेशर मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी आजकल वॉइस आने लगी है, तो आपको सुन के पता पड़ेगा कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, पल्स रेट कितना है। हम लोगों को बहुत दिक्कत हुई कोविड के टाइम पे, जब मान लीजिए क्योंकि अगर उस टाइम पे टॉकिंग थर्मामीटर होता या टॉकिंग ऑक्सीमीटर होता तो लोगों को डर नहीं होता कि अगर किसी ब्लाइंड को कोविड हुआ है तो वो क्या करेगा, वो सामने सोशल डिस्टेंसिंग के कारण कोई बुखार लेने को तैयार नहीं था कि कितना बुखार है भाई इनको। तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं, सोसाइटी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई भाई ये इस बात का ध्यान रखें कि कोई चीज़ बन रही है तो उसको ऐसा बनाएं कि डिसेबल्ड लोग भी उसका यूज़ कर पाएं।
0: सर आखिर में कोई आप संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से?
1: संदेश ये है कि बस कुल मिला के अगर सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट करें तो बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं।
0: सर आपने रेडियो आज़ाद हिंद से बात की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद सर।
1: जी जी थैंक यू।
0: कार्यक्रम टेक गुरु में आप सुन रहे थे डॉक्टर रोहित त्रिवेदी से बातचीत जिसमें उन्होंने अपने अनुभव हमसे साझा किए। इस कार्यक्रम की परिकल्पना सुश्री अदिति गौड़ की थी। ये थी रेडियो आजाद हिंद की प्रस्तुति। हमें उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी प्यार।

नमस्कार, मैं नितिन मुकेश। आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। जय हिंद।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

0: पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।
1: सुनकर सुन

0: यह है रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज और आप ध्रुव संगारी बिलाल चिश्ती को इस पे सुन रहे हैं। रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज, देश का चैनल देश के लिए।
1: मैं हूं रंजीत सावरकर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हमारी सीना हमारा गर्व। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।
3: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामाजी से चर्चा।
4: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण और ये कार्यक्रम है हमारी सेना हमारा गर्व। वाकई में श्रोताओं, जब जब भी हम अपने सेना का जिक्र करते हैं तो हमारा मानस एक आत्मसम्मान से भर जाता है, गर्व से भर जाता है और देश के प्रति एक अभिमान का भाव स्वतः ही जागृत हो जाता है। निसंदेह इसका श्रेय जाता है हमारी भारतीय सेना के उन वीर सिपाहियों को जो सरहद पर आकाश, समुद्र, जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों में हमारे लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने को तत्पर रहते हैं। देश के प्रति उनके बलिदान, उनके पराक्रम से, उनकी वीरता और उनके साहस की शौर्य गाथाओं से ही भारतीय सेना का इतिहास लिखा गया है। श्रोताओ, आज इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हमारी सेना हमारा गर्व, हम एक नई श्रृंखला का आगाज कर रहे हैं। कालचक्र के अब हम उस खंड में प्रवेश कर रहे हैं जो इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो ज्यादा दूर की बात नहीं है। जी हाँ, आज से महज 26-27 साल पुरानी ही बात है। आइए इस श्रृंखला को शुरू करते हैं सुदूर उत्तर के लद्दाख के पहाड़ों से, जहां ताशी नामग्याल नाम का एक चरवाहा अपने गुमशुदा याक को खोज रहा था। ये बात है मई सन 1999 की, जब ताशी नामग्याल अपने याक को खोजने के लिए लद्दाख के बटालिक क्षेत्र में काफी ऊपर के पहाड़ों पर पहुंच गए और वहां उन्होंने जो देखा वो उन्हें काफी अटपटासा लगा। उन्होंने देखा कि कुछ हथियारबंद लोग पहाड़ की चोटी पर हैं, जो कि अपने देश के नहीं दिख रहे। ताशी बिना हड़बड़ाए नीचे उतरे और इसकी सूचना उन्होंने समीप की भारतीय सेना की चौकी को दी। श्रोताओ, बस इतनी सी छोटी सी घटना ने एक बड़े और बेहद ही चुनौतीपूर्ण युद्ध को जन्म दिया, जिसे आज हम कारगिल की लड़ाई के नाम से जानते हैं। ज्यादा देर न करते हुए कारगिल के विजय गाथा को जानने और उसे समझने के लिए आइए एक बार फिर हम रुख करते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा सर की तरफ, जिन्होंने लगभग 20 वर्षों तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं और अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए जीवन के अनमोल वर्षों को अर्पित किया है। सर, कार्यक्रम की इस नई श्रृंखला में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
5: जय हिंद पूर्वा जी, जय हिंद श्रोताओं। आपने जो अभी कहा
4: जी,
5: जिस तरह से आपने डिस्क्राइब किया, इसको और थोड़ा अच्छे से समझने के लिए मैं थोड़ा और पीछे जाता हूँ।
4: जी बिल्कुल।
5: अगर हम इसका जेनेसिस देखें, जो कारगिल हुआ था, इट इज द सेम प्रॉब्लम जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर का लीगली इंडिया में शामिल होना
4: जी,
5: पाकिस्तान को कभी भी भाया नहीं था और उसकी हमेशा ये कोशिश रही है और है कि वो किसी तरह से इसको कब्जे में करें। तो ये हमने पहले भी अपने एपिसोड्स में देखा है कि हर बार जो है वो यही कोशिश में रहता है और इसी तरह से वो कोशिश करता रहा है। तो कारगिल का भी जो युद्ध था ये भी एक तरह से पाकिस्तान का अटेम्प्ट था कश्मीर मुद्दे वाला जो है
4: जी।
5: और स्पेशली जैसे हमने पहले सियाचिन ग्लेशियर का एपिसोड किया तो उसमें आपने देखा होगा कि पाकिस्तान साल्टर रिज पे जमाने में और एस्टैब्लिश करने में पोस्ट एस्टैब्लिश करने में फेल रहा था और खासकर उसने अपनी कैद पोस्ट जो है लूज करी थी तो उसके कारण भी जो है ये कारगिल का युद्ध जो है उसने छेड़ा था।
4: तो भूल नहीं पाए
5: वो भूल नहीं पाए और ना भूलते हैं वाली बात है। तो ये जो है एक तरह से उनका वेल प्लान्ड ऑपरेशन था इंफिल्ट्रेशन का। अब उसी समय आप देखिए कि मई 1998 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर्स बन गए थे जिससे के कारण के सिक्योरिटी कंसर्न जो है बढ़ गए थे दोनों देशों में टेंशन को कम करने के लिए और पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए। अगर आपको याद हो लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ था
4: जी बिल्कुल लाहौर घोषणा पत्र
5: हाँ फरवरी 1999 में जो कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री जो थे उस समय उन्होंने किया था। और उस समय अगर आपको याद होगा हमारे जो प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी उन्होंने हिस्टोरिक बस यात्रा करी थी लाहौर गए थे। लाहौर डिक्लेरेशन जो साइन हुआ था
4: जी
5: उसका जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो ये था कि दोनों जो देश हैं वो पीसफुल रिजोल्यूशन निकालेंगे जो लॉन्ग आउटस्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं स्पेशली वो जम्मू एंड कश्मीर का जो है इसके ऊपर। और इसके साथ साथ दोनों देशों ने मतलब एक तरह से एक दूसरे को भरोसा भी दिया कि अनऑथराइज यूज ऑफ जो है और एक्सीडेंटल यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होगा और दोनों देशों के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है वो डिस्कस किए जाएंगे बढ़ाए जाएंगे और ये सब पूरा करा था। तो एक तरह से माहौल ऐसा था कि बहुत ही पीसफुल माहौल था बहुत अच्छा शांतिपूर्ण माहौल चल रहा था लेकिन हमें नहीं पता था कि इसी वक्त जो है पाकिस्तान आर्मी कारगिल के अंदर जो है इंट्रूजन कर रही थी जो है इसी दौरान जो पाकिस्तान आर्मी है उसने कारगिल सेक्टर में जो है एलओसी को ब्रीच किया और ब्रीच करके जो वहां की डोमिनेटिंग हाइट्स थी स्पेशली तो उसमें जो है उनको ऑक्यूपाई किया।
4: यही दौरान था सर जिस समय हम लोगों ने समझौता किया था भारत पाकिस्तान
5: बिल्कुल ये उसी समय की बात है मतलब उसके आप देखिए फरवरी में लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ और मई में हम लोग को मालूम चला कि मतलब ये इंट्रूजन हो गया। तो ये तो वो वक्त था जब हम समझ रहे थे कि पाकिस्तान के साथ हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई है और शांतिपूर्ण माहौल है भरोसा किया जा सकता है किसी तरह का मतलब जो है इट वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड इवेंट ठीक है। तो उन्होंने इसको ऑपरेशन बदर का नाम दिया था मतलब पाकिस्तान ने और एम उनका वही था कि कश्मीर और लद्दाख को कट कर सकें और जो ट्रुप्स हैं इंडियन आर्मी के ट्रुप्स हैं उनको सियाचिन ग्लेशियर से भी जो है मतलब आइसोलेट कर सकें और भारत को मतलब वो फोर्स करें कश्मीर के मुद्दे के ऊपर जो है डिस्प्यूट के ऊपर बात करके और मतलब एक तरह से मतलब वो कश्मीर को अपने कब्जे में करना चाहते थे है ना। तो ये जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ था ये तकरीबन जो है 160 किलोमीटर की जो रिज लाइन है एलओसी है उसमें हुआ था और जो जहाँ पे हुआ था इन्फिल्ट्रेशन हुआ था ये जो रोड है हमारी NH1 अल्फा इसको पूरी तरह से मतलब
4: नेशनल
5: हाईवे इसको डोमिनेट करता था
4: लेह तक जाता है
5: जो ले जाता है श्रीनगर से जो ले जाता है उसको डोमिनेट कर रहा था है ना। तो ये जो जैसे अब ये 160 किलोमीटर के स्ट्रेच पे मतलब जो इम्पोर्टेंट हाइट्स थी जहाँ पे वो डोमिनेट कर सकते थे वो उन्होंने
4: कर
5: सकते थे वो उन्होंने जो है ऑक्यूपाई करी हुई थी। अब इस इलाके में आपको मालूम है कि जो पोस्ट है मिलिट्री पोस्ट है जो हाइट्स हैं वो सारी की सारी 16,000 फीट से जो है ऊपर की हाइट पे 16,000-18,000 के ऊपर जाती हैं। तो मई में जैसे आपने अभी बताया कि कल से हमें खबर लगी कि जो है आइडेंटिफाइड आदमी जो है कारगिल में दिख रहे हैं उसके बाद फिर तो काफी ज्यादा एक्सटेंसिव पेट्रोलिंग करी गई एरियल रेकीस हुई कंडक्ट किया जिससे फिर हमें समझ में आया कि ये मामला बड़ा है और इंट्रूजन हुआ है और पाकिस्तान इस बात से पूरी तरह से नकार रहा था कि ये उनकी आर्मी यहाँ नहीं है। उनका कहना था अगर वहां पे है तो हो सकता है मुजाहिदीन हो मिलिटेंट्स हो सकते हैं लेकिन हमारी आर्मी नहीं है।
4: अच्छा
5: इन स्पाइट ऑफ मतलब डूइंग इट दे वर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट इट।
4: तो सर पहले भी उन्होंने हमेशा से इसी तरह से किया जैसे रजाकार्स को वो आगे कर देते थे
5: बिल्कुल बिल्कुल
4: उसी तरह से ये भी था
5: बिल्कुल उसी तरह से ये भी था और एम भी अगर आप देखें तो वही सेम वही
4: उद्देश्य भी उनका वही है जम्मू कश्मीर को हथियाना
5: बिल्कुल बिल्कुल जो है तो अब यहाँ पे जो है उन्होंने रिजलाइन तो ली है
4: जी।
5: लेकिन एक तो वो हमारा एरिया है, दूसरा वो डोमिनेटिंग एरिया है, तो उससे तो उनको हमको निकालना हमारे लिए तो जरूरी था, हर हालत में जरूरी था। एंड दूसरी बात ये देखिए, अगर आप देखें इस एल्टीट्यूड के ऊपर जो है
4: जी।
5: जब आप अटैक करने जाते हैं बहुत ही मतलब एक मुश्किल काम है,
4: दुष्कर है सर, बहुत ज्यादा,
5: क्योंकि एक तो पहाड़ियां हैं,
4: ऊंचाई है,
5: ऊंचाई है, ऊंचाई में है। दूसरा ये है कि हाइट होने के कारण रेरिफाइड ऑक्सीजन है वहाँ पे, ठंड बहुत ज्यादा है, माइनस का टेम्परेचर है, तो उसके लिए आपको स्पेशल एक्रोमेटाइजेशन करना पड़ता है, स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए होता है, और उतना ज्यादा कंबसम होता है, मतलब चलना बहुत मुश्किल है। एंड देन आप अटैक कर रहे हैं
4: और सर हथियार और रसद भी आपके साथ है,
5: साथ है जी। और डिफेंडर जो है ऊपर बैठा हुआ है
4: ऊंचाई पे
5: बैठा है, तो उसके लिए बहुत आसान है, उसको पूरे एडवांटेज है
4: जी।
5: लेकिन इसी कारण से क्योंकि वो डोमिनेट कर रहा है, NH1 अल्फा में इंटरफेरेंस कर रहा है, अगर इंटरफेरेंस कर रहा है तो लद्दाख सेक्टर कट होता है
4: जी।
5: तो इसलिए इट वॉज वेरी मच रिक्वायर्ड दैट वी शुड थ्रो देम आउट, वी शुड डिस्ट्रॉय देम। दूसरी बात ये थी कि ये कारगिल सेक्टर में हुआ था, इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड कि जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको हम कारगिल तक ही रिस्ट्रिक्ट करके रखेंगे टू अवॉइड ए फुल स्केल वॉर विद पाकिस्तान। मतलब दिस डिसीजन
4: वाज टेकन, हाँ
5: जी, तो मतलब किया है कि बाकी जगह ना, तो इसके कारण जो है एक और मतलब उन्होंने डायरेक्शन इशू किया कि भाई LOC विल नॉट बी क्रॉस्ड, आपको इनको निकालना है, आप निकालेंगे लेकिन जो है
4: लाइन ऑफ कंट्रोल को
5: आप क्रॉस नहीं करेंगे। तो बहुत से ज्यादा ये मुश्किल चैलेंजिंग टास्क बन जाता है FOs के लिए जो
4: जी, बिल्कुल,
5: जिनको ऑपरेट करते समय ये काफी दिक्कतें आती हैं। एनीवे बट दिस वाज अबाइडेड बाय, है ना, इसको बिल्कुल फॉलो किया गया
4: जी।
5: ये फिर से जो है अगर हम देखें तो तीनों जो फोर्सेस है, आर्मी नेवी FOs तीनों का ऑपरेशन था। IAF को, इंडियन FOs को स्ट्राइक करने का टास्क दिया गया था, जो एनिमी पोस्ट है उनके बेसिस हैं, जिसको भी कर सकते हैं ठीक है, बिना क्रॉस किए हुए। एंड उन्होंने अपना पहला जो है ऑपरेशन शुरू किया था 26 मई को जो है, जिसको ऑपरेशन सफेद सागर बोलते हैं
4: जी।
5: और नेवी वाज अलर्टेड एट द सेम टाइम कि अगर पाकिस्तान कोई और किसी तरह से कुछ अटैक करता है या नेवी से कुछ होता है तो नेवी वाज अलर्टेड, स्पेशली द कोस्टल एरियाज में जो हो, तो अगर मतलब उनसे मतलब उम्मीद करी जा सकती है कि वो किस तरह का रेड कर सकते, कुछ और कर सकते हैं। एंड वहां पे फिर इसको रिस्ट्रिक्ट किया तो एडिशनल फोर्सेस हमें कारगिल में मतलब जो है आर्मी की जो इन्फेंट्री बटालियंस हैं, आर्टिलरी है ठीक है, स्पेशल फोर्सेस हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉजिस्टिक यूनिट्स हैं, मतलब सबको इंडक्ट करना शुरू किया टू डील विद द सिचुएशन। अब सिर्फ कारगिल में भी अगर आपको लड़ना है तो डिफेंस सिर्फ पोस्चर तो पूरी कंट्री में पूरे के पूरे बॉर्डर के ऊपर आपको करना है, तो मतलब
4: तो पूरे सीमाओं की चाहिए
5: बिल्कुल, तो पूरी की पूरी जो हमारी फोर्सेस हैं
4: जी
5: सारी की सारी जो है मोबिलाइज हुई थी और डिप्लॉय हुई थी
4: जी,
5: ताकि कहीं और किसी सेक्टर में अगर किसी तरह से पाकिस्तान की तरफ से अगर कुछ होता है, कोई एस्केलेशन होता है, वो कोई और नया फ्रंट खोलना चाहते हैं तो उसको हम कंट्रोल कर सकें। एंड स्पेसिफिकली इवन वी हैड टू टेक केयर ऑफ द चाइना बॉर्डर आल्सो कि अगर ऐसे टाइम पे अगर पाकिस्तान के कहने से चाइना
4: उसका साथ
5: देता है तो इट बिकम्स ए डबल फ्रंट फाइट। इसके अलावा जो है जम्मू एंड कश्मीर में स्पेसिफिक इनिशिएटिव लेने पड़ रहे थे क्योंकि वहां पे टेररिस्ट एक्शंस को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि ऐसे टाइम पे इट वाज एक्सपेक्टेड कि पाकिस्तान उनको भी जो है भड़का के,
4: यानी अंदरूनी हालातों पर भी नियंत्रण की उतनी ही आवश्यकता है,
5: उतनी ही आवश्यकता है जितना आपको जो है आपके बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना है। कारगिल के बारे में तो हम पहले भी अपने एपिसोड्स में डिस्कस कर चुके हैं कि ये काफी हाई माउंटेन रेंजेस हैं, 18,000 फीट उससे ऊपर की रेंजेस हैं, स्नो क्लैड रहती है, बर्फ रहती है पूरी, और क्या है कि ये पहाड़ हैं इसके जो उसमें कोई पेड़ नहीं है तो किसी तरह का छुपाव नहीं है, बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं वहां पे जो है, एंड माइनस में टेम्परेचर जाता है, एल्टीट्यूड एरिया है तो -30 डिग्री उससे भी कम हो जाता है, तो जो चढ़ने के लिए है, अगेन आई विल रिपीट माय सेल्फ, इट्स अ वेरी स्टीप क्लाइम, आपको ऊपर जाना है उसको ऑक्यूपाई करा हुआ है और ओपन में जा रहे हैं हम, एनिमी आपकी सारी मूवमेंट देख रहा है, किसी तरह से मतलब आपका कंसीलमेंट है ही नहीं किसी भी तरह से, तो ये सब जो थी मतलब काफी
4: कठिन परिस्थितियां थी युद्ध के हिसाब से, बेहद कठिन,
5: बेहद कठिन परिस्थितियां थी। एंड आपको ये रेरिफाइड ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में आपका पर्सन का और इक्विपमेंट का जो है एफिशिएंसी काफी कम हो जाती है। फिर सारे के सारे जो मूव्स करने हैं आपको ऑन फुट ही करने हैं, क्योंकि ना तो आप गाड़ी जा सकती है, ना आप हेलीकॉप्टर्स का यूज कर सकते हैं। इन नेचुरल जो इम्पीडिमेंट्स थे, इसके अलावा एक और ये रिस्ट्रिक्शन थे कि एलओसी क्रॉस नहीं करना है। तो इन सब को देखते हुए जो है तैयारी की गई, बट ये जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं इससे सोल्जर जो है
4: आपके काम में बाधा है ना सर, ये
5: हम बाधा तो है लेकिन इसको हम बाधा मानते नहीं है।
4: सही बात है।
5: जो टास्क दिया गया है जो ऑब्जेक्टिव है वो तो पूरा करना ही
4: करना
5: है,
4: है। किसी भी हालत में,
5: किसी भी हालत में। और वही हमारे जो जवानों की ये एक मतलब बहादुरी है, मतलब जो है कि वो कभी भी इन सब चीजों से डिटर नहीं होते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है।
4: हाँ, तो सर
5: उनको मालूम है ये मेरा ऑब्जेक्टिव है,
4: ये
5: मैंने करना ही करना है।
4: तो सर इंडियन आर्मी में एक पॉपुलर सेइंग भी है कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग।
5: यस एग्जैक्टली, एंड देयर आर नो ऑब्स्टिकल्स फॉर इन्फेंट्री। तो इन्फेंट्री के लिए कोई ऑब्स्टिकल नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो कहीं भी जा सकती है, कहीं भी पहुंच सकती है। तो ऑफ विजय जो था, जो कारगिल में हमने इसको लिया, इसको हम ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं। इसमें वंस अगेन मतलब वी शोकेस द ब्रेवरी ऑफ इंडियन फोर्सेस, देयर ग्रिट, डिटरमिनेशन एंड फाइटिंग स्पिरिट। Once again we proved that for a soldier, country is the first and foremost ever. हमेशा जो है, and soldiers fought this battle after battle without caring for their lives. एक के बाद जो है अब देखेंगे, हम जिक्र भी करेंगे, लड़ते रहे जब तक कि आखिरी इंट्रूडर को हमने मार नहीं दिया
4: या भगा नहीं दिया
5: और हमने अपना तिरंगा वहां पे लहराया नहीं
4: जी।
5: तब तक ये सोल्जर्स लड़े हैं
4: जी।
5: इट वाज ए वेरी हैवी कैजुअल्टीज।
4: हाँ सर, ये सर अब तक जो हम करते चले आ रहे हैं युद्ध की बातें, उसमें कारगिल का युद्ध जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं या समझते हैं, तो उसमें ये बहुत जो कैजुअल्टीज हैं उसके ऊपर बहुत दुख होता है और ऐसा लगता है कि ये दुश्मन से ज्यादा मौसम की मार जो थी और चोटियों पर जो उनका कब्जा करने की जो एक उनमें एक अदम्य सोच थी, उसी के कारण हम वहां तक पहुंचे।
5: हाँ बिल्कुल सही बात है
4: जी।
5: बिल्कुल, हम जिक्र करेंगे इसका तो आपको एहसास होगा कि कितना मतलब मुश्किल टास्क था,
4: दुष्कर था,
5: बहुत ही दुष्कर टास्क था जो कि इन्होंने पूरा किया
4: जी।
5: और विजय को अगर हम डिस्कस करें
4: जी बिल्कुल,
5: तो उसमें इट विल बी बेटर अगर हम सेक्टर वाइज जैसे डिस्कस करते हैं।
4: हाँ जी।
5: तो सबसे पहले अगर हम द्रास सेक्टर की बात करेंगे तो द्रास जो है तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है कारगिल से। जब आप श्रीनगर से जाते हैं तो जुजिला क्रॉस करने के बाद पहले द्रास आता है, फिर उसके बाद जो है कारगिल आता है। द्रास को सेकेंड कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड भी बोला जाता है। वहाँ पे जो है -50 तक का जो है टेम्परेचर जाता है। और ये जो इलाका था इसमें जो है तोलोलिंग रिज है
4: जी,
5: मेरे ख्याल से काफी फेमस हो चुकी
4: हाँ
5: है, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। ये तकरीबन द्रास से 5 किलोमीटर नॉर्थ में है
4: जी।
5: और ये जो है श्रीनगर ले हाईवे जो है NH1 अल्फा, उस समय NH1 अल्फा बोलते थे, उसको प्रॉपरली डोमिनेट करती है। और यही जो था सबसे डीप पेनिट्रेशन था इंट्रूडर्स का, सबसे ज्यादा जो है इंट्रूजन जो हुआ था वो इस जगह पे हुआ था। तो तोलोलिंग रिज लाइन थी, उसके पास आगे फिर 0.5140 हाइट आती है
4: जी।
5: ये जो कॉम्प्लेक्स था इसमें जो इंट्रूडर्स बैठे हुए थे, मतलब वो क्या कर रहे थे कि जितना वेकुलर मूवमेंट था उसके ऊपर जो है उनका जो है मतलब इंटरफेरेंस था, आर्टिलरी शेलिंग करवा रहे थे वो, तो बिल्कुल उनका मतलब जो है रोकने के लिए की पुरजोर कोशिश रही थी
4: जी।
5: तो इसको जो कैप्चर करने का टास्क था, उस समय वहां पे 8 माउंटेन डिव होती थी
4: जी,
5: 56 माउंटेन ब्रिगेड थी, उसको दिया गया था। इसमें जब अटैक कर रहे होते हैं, देखिए क्या होता है कि आपको अटैक से पहले काफी चीजें समझनी होती हैं, प्लानिंग के दौरान जो है कि दुश्मन कहाँ है, कितना है
4: जी,
5: किस तादाद कितनी
4: है, उसके,
5: कितने किस तरह के उसके हथियार हैं, उसके बाद लेआउट क्या है डिफेंसेस का, उसके पास डिफेंस किस तरह के हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं नहीं है, फायर पावर सपोर्ट अवेलेबल है या नहीं है, और क्या उसको कहीं और से सपोर्ट रीइन्फोर्समेंट मिल सकता है नहीं मिल सकता है, तो ऐसा मतलब जो है सब कुछ मतलब मालूम होना चाहिए। हाउएवर ये जो वाइटल इन्फॉर्मेशन है वो इतनी डिटेल में अवेलेबल नहीं थी। इनिशियली तो मतलब ये बोला गया था कि 8 से 10 इंट्रूडर्स हैं वहाँ पे, जो कि मुजाहिदीन हो सकते हैं, मिलिटेंट्स हो सकते हैं, जिन्होंने कि ये जो है फीचर्स ऑक्यूपाई करे हुए हैं पाक आर्मी के सपोर्ट से, पाकिस्तान की आर्मी के सपोर्ट से।
4: हमें तब तक मालूम नहीं था कि पाकिस्तानी सेना है या आतंकवादी है।
5: बिल्कुल, हमें ये क्लियर नहीं था और यही माना जा रहा था कि ये लोग जो है मुजाहिदीन या मिलिटेंट्स है ना। तो अगर मिलिटेंट्स होते हैं तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि ओके उनके पास जो है स्मॉल आर्म्स होंगे, राइफल्स होंगी, ज्यादा ज्यादा LMGs हो सकती हैं। तो वही उसी तरह से जो है फर्स्ट अटैक 18 ग्रेनेडियर्स यूनिट है,
4: इसी सोच के साथ पहला आक्रमण किया गया।
5: हाँ, पहला आक्रमण किया गया था कि मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब आक्रमण तो आक्रमण है, तैयारी तो पूरी करी ही है, सब कुछ करना है, लेकिन एक जब आपका ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है और एक बार जब कम इन्फॉर्मेशन होती है उसका फर्क होता है
4: सूचना के आधार पर।
5: एग्जैक्टली, तो जो फर्स्ट अटैक किया गया था 22nd-23rd May को, मतलब उसमें भी अटैक में पूरा सपोर्ट था आर्टिलरी का, मोटर्स का, MGs का। तो जब ये ट्रूप्स पहुंचे हैं उस इलाके में जहां दुश्मन थे, एनिमी लोकेशन पहुंचे, तो सडनली इनके ऊपर बहुत हैवी फायर आना शुरू हुआ।
4: अच्छा।
5: और उस फायर में मतलब ये रियलाइज किया गया कि मीडियम मशीन गन्स भी थी, हैवी मशीन गन्स भी थी, इवन एयर डिफेंस वेपन्स भी थे, आर्टिलरी का भी फायर आ रहा था। तो ये रियलाइज हुआ कि ये लोग जो है मुजाहिदीन नहीं है, इस तरह के हथियार मुजाहिदीन नहीं रखते हैं, ये पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर आर्मी के ट्रुप्स हैं जो कि वहां पे आए हुए हैं।
4: अच्छा।
5: जैसे हमने पहले जिक्र किया कि डिफेंस पे ऊपर बैठे हुए हैं, अब आप ऊपर अटैक वाले जा रहे हैं, सडनली फायरिंग आ रही है, छुपने की जगह नहीं है, तो आप उनकी हालत सोचिए जो है, दे वर पिन डाउन बाय हैवी फायर बट दे केप्ट ऑन होल्डिंग देयर पोजीशन, जगह नहीं छोड़ी
4: जी,
5: उसके बावजूद कि उनके ऊपर फायरिंग आती रही बट उन्होंने जो है अपनी जगह नहीं छोड़ी ना। अब तक जो है सिचुएशन जैसे क्लियर हो रही थी, तो इंडियन फोर्सेस में आर्मी ने जो है एडिशनल आर्टिलरी इंक्लूडिंग बोफोर्स वगैरह जो है इंक्लूड किया, और उसका जो है कांस्टेंट फायर जो है दुश्मन की पोजीशंस पे करते रहे जो है। तो इसके बाद जब और आर्टिलरी का जब सपोर्ट मिला, फायर सपोर्ट मिला, तो 18 ग्रेनेडियर्स ने फिर से अपना जो है जो अटैक था, उनके जो 2IC साहब होते थे, 2IC मतलब सेकंड इन कमांड जो होते हैं बटालियन में, कर्नल विश्वनाथन साहब थे, वो अटैक लीड कर रहे थे, और उनके जो एफर्ट्स थे और सोल्जर्स की जो ब्रेवरी थी, एफर्ट्स थे, उससे जो है ये लोग जो है एक फुटहोल्ड एस्टैब्लिश करने में वहां पे सफल कामयाब रहे।
4: जी, जी।
5: और जो कर्नल विश्वनाथन साहब थे वो ही वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड उसमें उनको काफी बुलेट इंजरीज हुई एंड इन दिस अटैक एक्चुअली ही लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द कंट्री, वो शहीद हुए। इसी तरह से एक दूसरे ऑफिसर थे मेजर RS अधिकारी, वो भी जो है लीड कर रहे थे, जो लीड करते करते उनको भी ही ऑल्सो लेट डाउन हिज लाइफ फॉर द कंट्री। तो ये जो ब्रेव ऑफिसर्स हैं जिन्होंने लीड किया और ब्रेव सोल्जर्स हैं, उनके कारण जो है ये फुटहोल्ड पहले एस्टैब्लिश हुआ है।
4: पहली कामयाबी
5: जो थी एक तरह से वो हासिल हुई हमें। आप समझ सकते हैं जो पहली बार जब जो कोई जाता है और उसके लिए कितना मतलब मुश्किल होता है, उसके लिए हर एक चीज एक सरप्राइज थी, दुश्मन के बारे में इतना जानकारी नहीं थी और अचानक फायर आना सरप्राइज था, फिर उस टेम्परेचर में जो है कोल्ड में जो है आप बैठे हुए हैं एंड बट स्टिल जो बहादुर सिपाही थे, बहादुर पल्टन है, उन्होंने जो है अपना फुटहोल्ड एस्टैब्लिश किया। तो आगे के अटैक के लिए देन फिर जो है 2 राजरिफ बटालियन को इसमें टास्क दिया गया।
4: अच्छा।
5: तो उन्होंने जो है अपना अटैक 12 जून को कमेंस किया था।
4: अच्छा।
5: अब उस समय जो है उनकी प्रोग्रेस आप देखिए, क्योंकि हालात ऐसे थे कि ऊपर से आपको फायरिंग भी आ रही है, इंटेंस रेजिस्टेंस मिल रहा है दुश्मन का, स्टीप क्लाइम है, पूरा एक्सपोज टेरेन है, उसमें क्या होता है कि आपके जो नेचुरली जो आपका प्रोग्रेस होता है स्लो होता है।
4: जी, जहां तक मुझे जानकारी है जब इस तरह की लड़ाई होती है तो क्या रात में ही आगे बढ़ा जाता है?
5: रात में प्रेफर किया जाता है क्योंकि रात में ही जो है आपको आपके लिए सपोर्ट है
4: जी, दुश्मन से आप तभी छुप सकते हैं,
5: तभी आप छुप सकते हैं, तो रात को ही करा जाता है। और क्योंकि ओपन दिन में तो अगर मतलब वही होता है, दिन में जब अटैक स्टॉल हो जाता है तो आप तो बिल्कुल 100% एक्सपोज रहे बैठे हुए हैं
4: जी,
5: और आपको ऊपर से देख रहा है, तो 100% रात को ही अटैक किया जाता है ताकि हमें इसका फायदा मिले। तो ये जो एक तरह से मैं जैसे जिक्र कर रहा था, स्टीप लाइन था, सब कुछ था, उसके बावजूद जो है बहादुर सिपाही हैं जो इंच बाय इंच आगे बढ़ते रहे है ना। और जब एनिमी की मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो उनका जो है फायरिंग भी जो है उनकी ज्यादा होने लगे,
4: ज्यादा
5: होती जा रही थी, तो कैजुअलिटीज भी बढ़ती जा रही थी। पर इन सबसे जो है फिर भी डिटरेंस एंड द सोल्जर्स एंड द बटालियन के जो ऑफिसर लीड कर रहे थे, दे केप्ट ऑन मूविंग
4: अहेड,
5: आगे बढ़ते रहे एंड फाइनली दे सक्सीडेड इन रीचिंग द एनिमी लोकेशंस। ठीक है, फिर उसके बाद जब वो पहुंच गए हैं ऊपर तो सबने मिलके जो है अटैक किया, है ना, संघर्ष जो थे क्योंकि वहां उन्होंने ना पत्थर से संघर्ष बना रखे थे
4: जिसमें
5: हाँ बंकर टाइप, बंकर तो सॉलिड होते हैं, संगड़ होते हैं जो मतलब एक पत्थर उत्तर लूज होते हैं, हाँ वो बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये अटैक हुआ तो इवन मतलब अब इतना पास दुश्मन है कि देन इट बिकम ए हैंड टू हैंड फाइट। हैंड टू हैंड फाइट जो है मतलब इस जमाने में लड़ना भी बहुत बड़ी बात बनी है। तो इसमें मेजोरिटी ऑफ इंट्रूडर्स जो थे वो तो मारे गए। ठीक है, और जो थोड़े बहुत बचे थे उन्होंने पोस्ट छोड़ दी। तो तोलोलिंग वॉज द फर्स्ट मेजर सक्सेस आफ्टर हैवी फाइटिंग एंड सेक्रीफाइस। ठीक है, और ये 17 जून को जो है तीन मतलब ऑलमोस्ट 3 हफ्ते के बाद जो है हमें सफलता मिली। अगर आप देखें 22
4: बहुत लंबा समय है, युद्ध

0: डॉक्यूमेंट से, उससे मतलब ये प्रूव हुआ कि ये जो है कोई मुजाहिदीन नहीं है, ये मिलिटेंट्स नहीं है, और ये जो है रेगुलर पाकिस्तान
1: पाकिस्तानी सेना है।
0: जी
1: जी,
0: तो इसके बावजूद जो है पाकिस्तान आर्मी मानने को तैयार नहीं हो रही जो
1: है। सर हमेशा से उनका यही रहा है। तो श्रोताओं, युद्ध भूमि पर हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे सैनिकों का वो जज्बा है, वो जुनून है, जो सियाचिन और कारगिल की चोटियों से भी कई गुना ऊंचा है, जो दुश्मन को पीछे हटने को मजबूर कर देता है, बरबस कर देता है। कारगिल के इस जंग की विजय गाथा को हम आगे भी जारी रखेंगे कार्यक्रम के अगले एपिसोड्स में भी, और जानेंगे कि तोलोलंग को फतह करने के बाद हमारी अगली चुनौतियां क्या थी। तो सर, आज इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू पूर्वा जी। जय हिंद।
1: जय हिंद सर। तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना की अदिति गौड़ ने, ध्वनि संपादन था अमित कुंदानी का, और समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का। मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। तो दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम से, नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। अगला कार्यक्रम एक अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।
3: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
4: नमस्कार, आदाब, मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों को फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: गली में मार फेरे, पास आने को मेरे।
2: मैं हूं सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम देश के संस्थान।
2: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है रेडियो नाटक देश के संस्थान।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान। श्रोताओं, पिछले एपिसोड में हमने जाना था हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल की प्रेरक कहानी। दादू से रुचि ने जाना कि कैसे हाल लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और अन्य वायुयान बनाकर भारत की आकाशीय शक्ति को नई ऊंचाइयां प्रदान करता है। लेकिन क्या केवल विमान बना लेना ही पर्याप्त है? क्या एक लड़ाकू विमान बिना रडार, बिना संचार प्रणाली और बिना आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है? यही प्रश्न आज रुचि के मन में भी है। आइए चलते हैं दादू और रुचि के घर पर।
1: दादू, पिछली बार हमने हाल के बारे में चर्चा की थी। तेजस लड़ाकू विमान और ध्रुव हेलीकॉप्टर के बारे में जानकारी पाकर अब मेरे मन में और भी सवाल आने लगे हैं दादू। आज आपको उन सभी सवालों के जवाब देने होंगे। बताइए ना, आप मेरे सवालों के जवाब देंगे ना दादाजी?
0: अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है बिटिया, बिल्कुल दूंगा। चलो, आज मैं तुम्हें एक नई कहानी सुनाता हूँ।
1: अरे वाह, मैं रेडी हूँ दादाजी। वैसे आज आप किस बारे में बताने वाले हैं?
0: सोचो सोचो, दिमाग लड़ाओ बिटिया।
1: पिछली बार आपने बताया था कि हाल विमान बनाती है, लेकिन विमान को रास्ता कौन दिखाता है? दुश्मन के विमान की पहचान कौन करता है? सैनिकों तक संदेश कौन पहुंचाता है? आज मुझे इसी बारे में जानने को मिलेगा। सही कहा ना मैंने?
0: अरे बिल्कुल सही कहा बिटिया, शाबाश। क्या बात है, लगता है तुम अब इन देश के संस्थानों की विशेषज्ञ बनने वाली हो।
1: क्या दादू, आप भी ना, अब बताइए भी।
0: हाँ हाँ बताता हूँ। सुनो बेटा, जिस प्रकार शरीर में आंखें, कान और मस्तिष्क महत्वपूर्ण होते हैं, उसी तरह किसी भी आधुनिक सेना के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियां महत्वपूर्ण होती हैं। और भारत में ऐसी प्रणालियों के निर्माण का सबसे बड़ा नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL।
1: तो आज हम BEL की कहानी सुनने वाले हैं।
0: हाँ बिटिया, आज हम उस संस्था की कहानी जानेंगे जो दिखाई कम देती है लेकिन देश की सुरक्षा में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है।
1: दादू, BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की शुरुआत हुई कब थी?
0: किसी भी संस्था की कहानी जानने के लिए उसके जन्म का कारण जानना बहुत जरूरी होता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना 1954 में बेंगलुरु में की गई थी।
1: अच्छा।
0: हाँ, उस समय भारत को रक्षा क्षेत्र में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बहुत जरूरत थी।
1: भला ऐसा क्यों दादाजी?
0: बेटा, आजादी के बाद भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थी। देश को अपनी सीमाओं की सुरक्षा करनी थी, सेना को आधुनिक बनाना था और रक्षा क्षेत्र में विदेशी देशों पर निर्भरता भी कम करनी थी। और फिर सरकार चाहती थी कि देश अपनी जरूरतों के लिए किसी विदेशी कंपनियों पर निर्भर ना रहे। बस यही कारण था BEL की स्थापना का।
1: दादाजी, मतलब आत्मनिर्भर भारत का सपना तब से देखा जा रहा था?
0: बिल्कुल, आज जैसे हम आत्मनिर्भर भारत कहते हैं ना बेटा, उसकी नींव ऐसे ही संस्थानों ने दशकों पहले रखनी शुरू कर दी थी।
1: मतलब उस समय भारत में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं बनते थे?
0: बहुत कम बनते थे बेटा। सेना को रडार, संचार उपकरण और अन्य महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। युद्ध या संकट के समय ये निर्भरता बहुत बड़ी समस्या बन सकती थी।
1: तभी सरकार ने इसका समाधान खोजा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना करके। अच्छा दादाजी, तो आज BEL कितनी बड़ी संस्था है?
0: आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारत सरकार का एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ये केवल एक कारखाना नहीं है बल्कि देश भर में फैली अनेक उत्पादन इकाइयों, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों का विशाल नेटवर्क है बेटा। इसके 9 प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं, जहां हजारों वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ कार्य करते हैं। और तुम्हें पता है,
2: इसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त है।
1: नवरत्न का क्या मतलब हुआ दादाजी?
2: देखो बेटा, भारत सरकार कुछ उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उनके शानदार प्रदर्शन, लाभप्रदता, तकनीकी क्षमता और राष्ट्रीय योगदान के आधार पर विशेष दर्जा देती है। इसे नवरत्न का दर्जा कहा जाता है।
1: वाव। तो क्या ये रक्षा मंत्रालय के अधीन बनाया गया संस्थान है?
2: बिल्कुल, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों की विशेष और चुनौतीपूर्ण जरूरतों को पूरा करना था, इसलिए इसे रक्षा मंत्रालय के अधीन रखा गया।
1: तो दादाजी, इसका पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया?
2: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बेटा।
1: बेंगलुरु में?
2: उस समय बेंगलुरु धीरे धीरे विज्ञान, तकनीक और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा था, इसलिए BEL की पहली उत्पादन इकाई वहीं स्थापित की गई।
1: दादू, आपने बताया था कि इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, तो क्या इसके बाकी सारे कारखाने भी वहीं पर हैं?
2: नहीं बिटिया, जैसे किसी विशाल वृक्ष की शाखाएं दूर दूर तक फैलती हैं, वैसे ही BEL की उत्पादन इकाइयां पूरे देश भर में फैली हुई हैं।
1: सच में दादू? तो फिर बताइए ना, कहाँ कहाँ फैली है?
2: बेंगलुरु के अलावा गाजियाबाद, पंचकुला, कोटद्वार, हैदराबाद, मछलीपट्टनम, नवी मुंबई, पुणे और चेन्नई में इनकी प्रमुख इकाइयां हैं बेटा।
1: इतना विस्तार दादाजी, कितना रोमांचक रहा होगा ना?
2: बिल्कुल, जैसे जैसे भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की आवश्यकता बढ़ती गई, BEL भी नई तकनीकों और नए उत्पादों के साथ आगे बढ़ती गई। छोटे से कारखाने ने धीरे धीरे एक विशाल संगठन का रूप लेना शुरू कर दिया बेटा।
1: पर दादू, इसकी इतनी सारी इकाइयाँ क्यों है?
2: क्योंकि BEL अनेक प्रकार के उत्पाद बनाती है। अलग अलग इकाइयाँ अलग अलग तकनीकों और प्रणालियों के निर्माण में विशेषज्ञता रखती है बेटा।
1: मतलब किसी एक बड़ी मशीन के पुर्जे अलग अलग जगह बनाकर फिर वो एक जगह पहुँचाए जाते हैं?
2: बिल्कुल, इसके अलावा देश भर में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं बेटा, और न्यूयॉर्क और सिंगापुर में भी इसके कार्यालय स्थापित हैं।
1: वाह, यानी BEL की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करती है।
2: बिल्कुल बेटा।
1: दादू, आखिर BEL ऐसा क्या बनाती है जो सेना के लिए इतना महत्वपूर्ण है?
2: यदि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को हम सेना की उड़ान कहें, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड उसकी आँख, कान और मस्तिष्क है बेटा।
1: पर ये भला कैसे?
2: बिटिया रानी, अभी तो बताया मैंने तुम्हें, BEL रडार प्रणालियां बनाती है, और रडार दूर स्थित वस्तुओं को पता लगाने में मदद करता है। तुम है ना बेटा, बादाम खाना शुरू करो रुचि।
1: दादू, आप भी ना, जब देखो तब मेरा मजाक बनाते रहते हैं, मैं भूल जाती हूँ कभी कभी, पर मेरे प्यारे दादू है ना मुझे सब कुछ बताने के लिए, तो फिर से बता दीजिए।
2: अच्छा है बेटा, दादू को पेड़ पर चढ़ाते जाओ तुम।
1: क्या दादू, आप भी ना, आप मुझे ये बताइए कि क्या इन रडार प्रणालियों से दुश्मन का विमान सीमा से दूर हो तब भी उसका पता लगाया जा सकता है?
2: बिल्कुल लगाया जा सकता है बेटा। इसके अलावा BEL सैन्य संचार उपकरण बनाती है, जिससे सैनिक सुरक्षित रूप से संदेश भेज और प्राप्त कर सकते हैं।
1: अच्छा दादाजी, ये इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली क्या है?
2: देखो बेटा, आज युद्ध केवल हथियारों से नहीं, तकनीक से लड़े जाते हैं, है ना? तो ये इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली दुश्मन की संचार व्यवस्था और रडार को बाधित करने में सहायता करती है।
1: यानी अब तकनीक को भी हथियार बना लिया गया है।
2: BEL नौसेना प्रणालियां, टैंक, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर ऊर्जा प्रणालियां और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर भी विकसित करती है।
1: दादू, ये रडार किस तरह की तकनीक है?
2: रडार को समझने के लिए एक आसान उदाहरण लेते हैं बेटा। मान लो तुम किसी पहाड़ी के सामने खड़ी होकर जोर से आवाज लगाओ, कुछ समय बाद वही आवाज लौट कर तुम्हारे पास आती है, जिससे प्रतिध्वनि या इको कहते हैं।
1: हाँ, मैंने पहाड़ों में ऐसा होते देखा है।
2: हाँ, रडार भी ऐसा ही कुछ करता है बेटा।
1: अच्छा,
2: वो रेडियो तरंगे भेजता है, ये तरंगे किसी विमान, जहाज या मिसाइल से टकराकर वापस लौटती है, लौटने में लगे समय से उसकी दूरी, दिशा और गति का पता लगाया जाता है।
1: वाह दादाजी, यानी रडार हवा में देखने वाली आँख की तरह काम करता है।
2: बिल्कुल बेटा।
1: दादू, फिल्मों में तो युद्ध बंदूक और टैंकों से होता है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्या होता है?
2: बेटा, आज के आधुनिक युद्ध में ना जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। बिटिया रानी, यदि दुश्मन की संचार व्यवस्था बंद कर दी जाए, उसके रडार को भ्रमित कर दिया जाए या उसके संकेतों को पकड़ लिया जाए, तो बिना गोली चलाए भी बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है।
1: फिर वही बात कि आज तकनीक भी युद्ध का हिस्सा बन चुकी है।
2: तभी तो BEL जैसी संस्थाएं देश की सुरक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
1: दादू, ये एम्बेडेड सॉफ्टवेयर क्या होता है? मैंने इसके बारे में कहीं तो पढ़ा है।
2: देखो बेटा, जब किसी मशीन के अंदर विशेष कार्य करने वाला सॉफ्टवेयर लगाया जाता है तो उसे एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कहते हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ, जैसे वॉशिंग मशीन, कार, मोबाइल या मिसाइल के अंदर लगे विशेष प्रोग्राम।
1: तो इसका मतलब कि BEL केवल हार्डवेयर नहीं बनाती, सॉफ्टवेयर भी बनाती है।
2: हाँ बिल्कुल, आधुनिक रक्षा प्रणाली में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है।
1: दादू, अगर कोई BEL ज्वाइन करना चाहे तो उसे क्या तैयारी करनी होगी? कितने पद होते हैं, उसमें भर्ती कैसे होती है, जरा ये सब भी तो बताइए।
2: हाँ हाँ बेटा, बताता हूँ। ये सवाल केवल तुम्हारे मन में नहीं बल्कि देश के लाखों विद्यार्थियों के मन में आता है। BEL केवल कंपनी नहीं बल्कि ऐसा संस्थान है जहाँ विज्ञान, तकनीक, अनुसंधान और प्रबंधन से जुड़े अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं।
1: मतलब वहाँ केवल इंजीनियर ही काम नहीं करते?
2: नहीं नहीं, अक्सर लोग सोचते हैं कि BEL में केवल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ही काम करते होंगे, लेकिन वास्तव में यहाँ अनेक प्रकार के विशेषज्ञ कार्य करते हैं बेटा।
1: जैसे
2: यहाँ वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, डेटा विश्लेषक, तकनीशियन, प्रोजेक्ट मैनेजर, वित्त अधिकारी, मानव संसाधन अधिकारी और कई अन्य विशेषज्ञ कार्य करते हैं बेटा।
1: इतने सारे लोग, यानी अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के लिए बहुत सारे अवसर हैं दादाजी।
2: बिल्कुल, किसी भी बड़े संगठन की सफलता के पीछे अनेक प्रकार की प्रतिभाएं मिलकर काम करती हैं बेटा।
1: दादू, वैसे यहाँ कौन कौन से पद होते हैं?
2: कुछ ही पद मुख्य रूप से होते हैं बेटा, जैसे कि ट्रेनी इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोबेशनरी इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान विशेषज्ञ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, तकनीशियन, डिप्लोमा इंजीनियर, वित्त अधिकारी, मानव संसाधन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, परियोजना प्रबंधक, ये सब होते हैं बेटा।
1: मतलब पढ़ाई के अनुसार अलग अलग अवसर मिल सकते हैं।
2: बिल्कुल मिल सकते हैं।
1: दादू, फिर यदि कोई छात्र अभी स्कूल में पढ़ रहा हो तो उसे किन विषयों पर ध्यान देना चाहिए?
2: सबसे पहले गणित और विज्ञान की नींव मजबूत होनी चाहिए।
1: इसका कोई खास कारण है दादाजी?
2: क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और तकनीकी विषयों की जड़ गणित और विज्ञान ही है बेटा।
1: और आगे,
2: यदि कोई BEL में तकनीकी क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या संबंधित विषयों में अध्ययन करना चाहिए।
1: तो क्या केवल इंजीनियरिंग करने वाले ही BEL में जा सकते हैं?
2: नहीं, वित्त प्रबंधन, मानव संसाधन, कानून और प्रशासन से जुड़े पदों के लिए अन्य शैक्षणिक योग्यताएं भी मान्य होती हैं बेटा।
1: दादाजी, क्या BEL में भर्ती मुश्किल से होती है?
2: नहीं, बहुत कठिन भी नहीं होती। भर्ती के लिए BEL समय समय पर विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन जारी करती है बेटा।
1: फिर आगे की प्रक्रिया क्या होती है?
2: उम्मीदवारों को आवेदन करना होता है। कई पदों के लिए लिखित परीक्षा होती है, कुछ पदों के लिए गेट जैसी परीक्षाओं के अंकों को भी महत्व दिया जाता है।
1: और फिर उसके बाद?
2: फिर साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होता है। उम्मीदवार के ज्ञान, समस्या समाधान क्षमता और तकनीकी समझ का मूल्यांकन किया जाता है।
1: इसका मतलब ये है कि केवल डिग्री होना ही काफी नहीं है?
2: बिल्कुल नहीं बेटा, व्यावहारिक ज्ञान, आत्मविश्वास और सीखने की इच्छा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। विद्यार्थियों के लिए आवश्यक कौशल जरूरी होता है।
1: दादू, पढ़ाई के अलावा और क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए?
2: बेटा, आज के समय में केवल किताबों का ज्ञान पर्याप्त नहीं है।
1: सो तो है दादू।
2: विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की भी खासी जरूरत होती है, जैसे कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान, प्रोग्रामिंग की मूलभूत समझ, संचार कौशल, टीम वर्क की समझ होना, समस्या समाधान में दक्षता होना चाहिए, तार्किक सोच होनी चाहिए, नई नई तकनीकें सीखने की आदत के साथ उसे इन सब विषयों के बारे में जिज्ञासु भी होना चाहिए।
1: मतलब दादू, पढ़ाई और कौशल दोनों जरूरी है?
2: बिल्कुल जरूरी है बेटा।
1: पर दादू, अब मुझे थोड़ा ना डर लग रहा है।
2: अच्छा?
1: ये सब सुनकर इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ बस बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही पहुँच सकते होंगे।
2: नहीं बिटिया, प्रतिभा महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है मेहनत, अनुशासन और निरंतर सीखने की इच्छा।
1: ये तो सही कहा आपने। लेकिन दादू, जितनी तेजी से दुनिया बदल रही है ना, क्या भविष्य में भी BEL जैसी संस्थाओं की आवश्यकता उस समय भी रहेगी?
2: पहले से भी अधिक होगी बिटिया।
1: अच्छा,
2: आज दुनिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्या कहते हो तुम लोग, AI, साइबर सुरक्षा, ड्रोन तकनीक, रोबोटिक्स और क्वांटम संचार की ओर बढ़ रही है बेटा।
1: इसका मतलब कि BEL भी इन क्षेत्रों पर फोकस कर रही है।
2: हाँ, आधुनिक रक्षा तकनीकों में इनका महत्व लगातार बढ़ रहा है, इसलिए आने वाले वर्षों में तकनीकी ज्ञान रखने वाले युवाओं के लिए अनेक अवसर होंगे।
1: दादू, BEL की कहानी से विद्यार्थियों को सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है?
2: तीन बातें हैं रुचि, जिनका ध्यान हर एक पढ़ने वाले बच्चे को रखना चाहिए।
1: अच्छा।
2: पहला, आत्मनिर्भर बनो। दूसरी बात कि विज्ञान और तकनीक को अपनाओ, उसे समझो, उसे जानो। तीसरी बात, अपनी प्रतिभा का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के विकास के लिए करो।
1: यानी पढ़ाई केवल नौकरी के लिए नहीं, राष्ट्र निर्माण के लिए भी होना चाहिए दादाजी।
2: हाँ बेटा, ये बात समझदार है मेरी पढ़ाकू बिटिया। बिल्कुल सही समझा बेटा तुमने। जब कोई वैज्ञानिक नया रडार बनाता है, कोई इंजीनियर नई प्रणाली विकसित करता है, या कोई शोधकर्ता नई तकनीक खोजता है, तब वो केवल अपना करियर नहीं बना रहा होता बेटा,
1: बल्कि वो देश को भी मजबूत बना रहा होता है दादाजी। और बड़े राष्ट्र केवल सैनिकों की बहादुरी से नहीं बनते, उनके पीछे वैज्ञानिकों की बुद्धि, इंजीनियरों की मेहनत, तकनीशियनों का कौशल और विद्यार्थियों के सपने होते हैं। सही कहा ना मैंने दादाजी?
2: बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल 10 में से 10 नंबर देता हूँ बेटा मैं तुमको।
1: अच्छा।
2: देखो बेटा, BEL जैसे संस्थान देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का विद्यार्थी ही कल का वैज्ञानिक, इंजीनियर और राष्ट्र निर्माता बनेगा।
1: अच्छा दादू, एक और सवाल है। क्या BEL केवल सेना के लिए काम करती है?
2: नहीं बिटिया, BEL का योगदान आम नागरिकों के जीवन में भी दिखाई देता है।
1: वो भला कैसे?
2: क्या तुमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी AVM का नाम सुना है?
1: वो तो चुनाव में उपयोग होती है ना?
2: हाँ, इन मशीनों के निर्माण में BEL की महत्वपूर्ण भूमिका है बेटा।
1: मतलब लोकतंत्र को मजबूत बनाने में भी BEL का बड़ा योगदान है।
2: बिल्कुल है। इसके अलावा BEL ने सौर ऊर्जा चलित ट्रैफिक सिग्नल, सेटअप बॉक्स और कम लागत वाला टैबलेट भी बनाया था, जिसका उपयोग जनगणना के दौरान किया गया बेटा।
1: वाह दादू, BEL तो रक्षा और विकास दोनों में योगदान देती है।
2: बिल्कुल बेटा।
1: क्या BEL अन्य कंपनियों के साथ मिलकर भी काम करती है?
2: हाँ हाँ, इसे संयुक्त उपक्रम कहा जाता है बेटा।
1: तो फिर इसका कोई उदाहरण बताइए ना दादाजी।
2: देखो बेटा, BEL ने GE हेल्थ केयर के साथ मिलकर चिकित्सा उपकरणों के निर्माण का कार्य किया।
1: मतलब रक्षा क्षेत्र से बाहर स्वास्थ्य क्षेत्र में भी योगदान?
2: हाँ, वही तो बता रहा हूँ बेटा। एक अन्य संयुक्त उपक्रम ब्रिटेन की मल्टीटोन कंपनी के साथ भी स्थापित किया गया।
1: उसमें BEL का क्या योगदान था?
2: उसमें बेटा, BEL उन्नत मोबाइल संचार उपकरण और डिजिटल संचार प्रणालियाँ विकसित करता है।
1: अच्छा। क्या BEL के सामने कभी कठिन समय भी आया दादाजी?
2: हाँ बेटा, जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए तब कुछ देशों ने भारत पर तकनीकी प्रतिबंध लगा दिए थे।
1: फिर क्या हुआ?
2: फिर विदेशी तकनीक और उपकरण प्राप्त करना कठिन हो गया।
1: दादू, ये तो बड़ी समस्या रही होगी।
2: हाँ बेटा, लेकिन BEL के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने हार नहीं मानी। उन्होंने स्वदेशी तकनीक विकसित करने का संकल्प ले लिया।
1: यानी संकट अवसर बन गया।
2: हाँ, यही आत्मनिर्भरता की शुरुआत थी बेटा।
1: दादाजी, आज आत्मनिर्भर भारत की चर्चा हर जगह होती है। आप ये बताइए, BEL इसमें कैसी योगदान देती है?
2: हाँ बेटा, जब देश स्वयं अपने रक्षा उपकरण और तकनीक विकसित करता है तो विदेशी निर्भरता कम होती है। तो ये आत्मनिर्भर बनना ही तो हुआ ना।
1: यानी देश का धन भी बचता है और तकनीक भी देश में ही विकसित होती है।
2: हाँ, इससे रोजगार बढ़ता है, अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलता है और राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत होती है।
1: दादू, क्या BEL समाज के लिए भी कुछ करती है?
2: हाँ बेटा, BEL केवल उत्पादन नहीं करती बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: वो भला कैसे?
2: देखो, विद्यालयों, अस्पतालों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संस्थाओं को सहायता भी प्रदान करती है।
1: दादू, ये तो बहुत प्रेरणादायक है।
2: हाँ बेटा, सच्ची प्रगति वही है जिसमें समाज का हर वर्ग शामिल हो।
1: और हमारा पर्यावरण?
2: BEL पर्यावरण संरक्षण के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसके कारखानों को शून्य प्रदूषण उद्योग माना गया है बेटा।
1: शून्य प्रदूषण उद्योग?
2: हाँ, यानी ऐसे उद्योग जहाँ जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण को न्यूनतम रखा जाता है।
1: और सौर ऊर्जा वाले ट्रैफिक सिग्नल्स?
2: वो भी इसी सोच का हिस्सा है, ऊर्जा बचाओ, पर्यावरण बचाओ।
1: दादू, आज मुझे समझ में आया कि BEL केवल एक कंपनी नहीं है, ये भारत की सुरक्षा, तकनीकी प्रगति, लोकतंत्र, समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण की मजबूत आधारशिला है।
2: बिल्कुल बिटिया, BEL उसे देखने, समझने और सुरक्षित रखने की तकनीकी शक्ति प्रदान करता है। आत्मनिर्भर भारत का सपना ऐसे ही संस्थानों के प्रयासों से साकार हो रहा है बिटिया।
1: सही कहा दादाजी आपने।
3: तो श्रोताओं, आज हमने जाना कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड केवल एक औद्योगिक संस्था नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की एक महत्वपूर्ण शक्ति है। तकनीक, सुरक्षा, समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण, हर क्षेत्र में इसका योगदान प्रेरणादायक है। तो इसी संदेश के साथ अब हम आपसे लेते हैं विदा।
4: नमस्कार
3: श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, वाचन स्वर था भगवती सक्सेना,
2: दीपक नेमा,
3: लेखन था स्वाति गिरी का। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल, देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम देश के संस्थान। ये रेडियो आजाद हिंद है 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

0: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: ये दुनिया 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर, मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: ये मेरा इंडिया,
1: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर अपनी टीम क्या है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। जो श्रोता हमें अपने मोबाइल फोन पर सुनना चाहते हैं वे मिक्सलर ऐप डाउनलोड करें और रेडियो आजाद हिंद टाइप करें। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आजाद हिंद

स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

0: आजाद हिंद सुनने वाले सभी श्रोताओं को तारीख का प्यार भरा नमस्कार।
1: आजाद हिंद सुनने वाले सभी श्रोताओं को इतिहास का भी प्यार भरा नमस्कार।
0: इतिहास, क्या तुम्हें याद है?
1: क्या?
0: विक्रमपुर के मालखा नगर के बहुविख्यात बसु ठाकुर। बसु ठाकुर के परिवार में मान कुमार का जन्म 28 जून 1920 को हुआ था। उनके पिता का नाम भूपति मोहन बसु ठाकुर और माँ का नाम हेम प्रभा देवी था। उनके 6 भाई और 5 बहनें थीं। मान कुमार का घर का नाम श्रीधर था।
1: अरे मुझे अच्छी तरह से याद है तारी। मान कुमार के पिता वारिचाल में सेटलमेंट कानून को थे। वहीं मान कुमार का बचपन भी था। ढाका के सेंट गैग्री हाई स्कूल में उन्हें 5 वर्ष की उम्र में भर्ती कराया गया, पर खराब स्वास्थ्य के कारण उनकी पढ़ाई में व्यवधान पड़ता रहा।
0: बिल्कुल ठीक, मान कुमार मेधावी छात्र थे। परीक्षा में वे सदैव शीर्ष 4 में 1 होते, पर स्वास्थ्य उन्हें परेशान कर रहा था। सो स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान देते हुए नियमित व्यायाम द्वारा सबल बनना उन्होंने पहला लक्ष्य बनाया। शीघ्र ही उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त भी कर लिया। सन 1938 में उन्होंने प्रथम श्रेणी में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ढाका से मैट्रिक की परीक्षा पास की
1: और आईएससी के लिए जगन्नाथ इंटरमीडिएट कॉलेज में भर्ती हुए। और सन 1940 में इसी कॉलेज से 2 अन्य विद्यार्थियों के साथ उन्हें भारतीय उपकुल रक्षी गोलंदाज जत्थे में सहयोग के लिए भेजा गया। परिवार के अन्य सदस्य नहीं चाहते थे कि वे यह काम करें, पर मान कुमार यह काम करते रहे। युद्ध जैसे कठिन कार्य में जुटे रहने के बावजूद उन्होंने 1 के बाद 13 विभागीय परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उन्होंने उर्दू शिक्षा की परीक्षा भी प्रथम रहते हुए उत्तीर्ण की।

0: सन 1942 में मान कुमार विमान ध्वंसी विभाग के जिम्मेदार कर्मचारी बन गए थे। उन्हें गोलंदाज दस्ते की ट्रेनिंग के लिए बम्बई भेज दिया गया। बम्बई के कोलाबा स्थित ट्रेनिंग केंद्र में आए परीक्षार्थियों में ब्रिटिश और भारतीय दोनों सैनिकों के जत्थे थे। प्रशिक्षण के अंत में आयोजित परीक्षा में मान कुमार ने भारतीय जत्थे में प्रथम स्थान प्राप्त किया और वे जमादार पद पर नियुक्त कर दिए गए।
1: प्रशिक्षण के दौरान भारतीय जत्थे के बंगाली सैनिकों के अच्छे प्रदर्शन के कारण अंग्रेज सैनिक उनसे ईर्ष्या करने लगे थे और जब तत्कालीन जंगी लॉर्ड अकिनलेक साहब ने चतुर्थ भारतीय उपकूल रक्षी गोलंदाज दस्ते के जमादार मान कुमार और दूसरे बंगाली नौजवानों के साहस और योग्यता की तारीफ की तो इस तारीफ ने अंग्रेज सैनिकों की ईर्ष्या की आग में घी का काम किया।
0: अब तक अंग्रेज सैनिक भारतीय सैनिकों पर रोब जमाते रहते थे, पर अब बंगाली सैनिकों ने अपना सिर उनके सामने बिना झुकाए सैनिकों की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। अंग्रेज सैनिकों ने इसे चुनौती मानकर उन्हें सबक सिखाने की धमकी तक दे डाली। आखिरकार षड्यंत्र रचा गया। कोचिन में ताड़ के पत्तों से छाए एक घर में आग लगा दी और इस अग्निकांड के बाद कुचक्र रचकर सन 1943 में 18 अप्रैल को ब्रिटिश सम्राट और सरकार के विरुद्ध विद्रोह का आरोप लगा करके 12 बंगाली सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया।
1: सुनवाई के दौरान झूठी गवाहियां रची गईं। सन 1946 में केंद्रीय व्यवस्थापिका परिषद में सामरिक विभाग के सेक्रेटरी मैनन साहब ने मान कुमार और उनके सहयोगी बंगाली सैनिकों पर अनेक अपराध कायम किए जिनमें चतुर्थ भारतीय उपकूल रक्षी जत्थे को तोड़ने का षड्यंत्र, इसके लिए अपना आवास जलाना, विस्फोट पदार्थ के गोदाम आग लगाने का प्रयत्न और जत्थे में सांप्रदायिक हंगामा मचाने के आरोप प्रमुख थे।
0: इन अभियोगों के लिए 6 जुलाई से 5 अगस्त के बीच बेंगलोर के सेंट एंड्रयूज चर्च में बैठी फौजी अदालत में गिरफ्तार किए गए तथा कथित विद्रोहियों की सुनवाई हुई। सैनिकों पर विद्रोहियों के विरुद्ध गवाही देने के लिए भारी दबाव डाला गया। जिन्होंने झूठी गवाही देने से इनकार किया उन्हें हथकड़ी पहना करके तंग कोठरी में ठूस दिया गया और भयंकर यातनाएं दी गईं। इस सुनवाई का काला पक्ष यह था कि अपराधियों को अपनी सफाई में बोलने का अवसर ही नहीं दिया गया।
1: अदालत ने मान कुमार बसु ठाकुर उम्र 21 वर्ष सहित 9 व्यक्तियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई, 2 अन्य को द्वीपांतर कारावास और 1 को 7 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा पाने वाले बंगाली सैनिक थे मान कुमार बसु ठाकुर, नंद कुमार डे, दुर्गादास राय चौधरी, निरंजन बरुआ, चितरंजन मुखोपाध्याय, फणिभूषण चक्रवर्ती, सुनील कुमार मुखोपाध्याय, कालीपद आईच और नरेंद्र मोहन मुखोपाध्याय। इन सभी युवकों की उम्र 21 से 25 वर्ष के बीच थी।
0: 24 सितंबर को इन कैदियों को फांसी देने के लिए बेंगलोर की जेल में लाया गया। ये सभी काली पोशाकों में और कड़े पहरे में लाए गए थे। बेंगलोर जेल में मौजूद कैदियों को जल्दी ही पता चल गया कि ये सभी फांसी की सजा के लिए लाए गए हैं। जेल में नजरबंद कैदी इस समाचार से अत्यंत उत्तेजित हो उठे। उन्होंने बेंगलोर जेल में इन लोगों को फांसी देने का पुरजोर विरोध करते हुए राज्य सरकार को सम्मिलित रूप से ज्ञापन दिया। आखिर ज्ञापन को उचित मानकर राज्य सरकार ने ब्रिटिश सरकार से आपत्ति प्रकट की और फांसी का स्थान बेंगलोर जेल की जगह मद्रास की जेल कर दिया गया।

0: बैंगलोर जेल से मद्रास जाते जाते दुर्गादास राय चौधरी ने अपने रक्त से वंदे मातरम लिखा एक पत्र बैंगलोर के कैदियों के पास पहुंचा दिया। इस पत्र में लिखा था, प्रिय बंधुगण, सम्राट के विरुद्ध विद्रोह के अपराध में हम 9 लोगों को मृत्युदंड दिया गया। देश की स्वाधीनता के लिए हम 9 लोग कुर्बानी दे रहे हैं। हम सभी बंगाली नवयुवक हैं। बंधुओं, अब समय आ गया है कि हम हिंदू मुसलमान सभी मिलकर देश की आज़ादी के लिए काम करें। देश की आज़ादी के महायज्ञ में आपकी सेवा और त्याग हमें सांत्वना देता रहेगा। आइए सर उठाइए और मातृभूमि की आज़ादी के लिए संघर्ष करिए। विदेशी शक्ति के विरुद्ध कठोर प्रहार कीजिए। हमारी शुभ इच्छा आपके साथ है। आप अपने प्रण में सफल हों। हमारा मधुर प्यार स्वीकारें। पत्र के अंत में रक्त से हस्ताक्षर किए गए थे दुर्गादास।
1: फौज के अधिकारियों ने भरसक प्रयत्न किया था कि मान कुमार सरकारी गवाह बन जाए और अपने साथियों के विरुद्ध झूठी गवाही देकर के सिद्ध कर दे कि उन्होंने क्रांति की योजना बनाई थी, पर सत्यवादी और देश प्रेमी मान कुमार मृत्यु दंड का संकट जानते हुए भी झूठी गवाही देने और अपने साथियों के खिलाफत को राजी नहीं हुए। मान कुमार माँ के भक्त थे और सन्यासी बाबा के अनुयायी थे। अभियोग दायर होने के बाद उन्होंने अपनी माँ को पत्र लिखा, माँ मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया हूँ। सन्यासी बाबा और माँ को स्मरण करके सभी काम करने वाले कैसे संकट में पड़ सकते हैं? पर ऐसा हुआ है, पर क्यों? मैं तो सदा सन्यासी बाबा और तुम्हारा स्मरण करके ही कुछ करता हूँ। ऐसे अपराध तो मैंने आज तक नहीं किए।
0: 25 सितंबर 1943 को मद्रास किले में 2-2 की संख्या में इन बंगाली युवकों को फांसी दी गई। फांसी का फंदा गले में डालने के पहले वे एक दूसरे से गले मिलते और राष्ट्रीय गीत गाते हुए फांसी के तख्ते पर खड़े हो जाते। मान कुमार की फांसी के बाद उनके एक साथी ढाका पुलिस के एक बड़े अफसर जनाब अब्दुल उदूद ने कहा, सत्य के लिए मान कुमार ने अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी। उनका यह बलिदान निष्फल नहीं जाएगा। जब तक सत्य कायम रहेगा, मान कुमार का नाम अमर रहेगा।
1: फांसी चढ़ने से पहले तक वे गर्व से गाते थे, सत्य की रक्षा के लिए प्राण देकर मान कुमार ने अपने देश की मान मर्यादा की रक्षा की। वे एक सार्थक व्यक्तित्व के रूप में सदा याद किए जाएंगे।

0: वादा फिर से हो रहा।
1: जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह। ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की, और गीत लिए गए थे स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जारी ऑडियो एल्बम जन गर्जे से।
3: और अब दीजिए हमें इजाजत, कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। जो श्रोता हमें अपने मोबाइल फोन पर सुनना चाहते हैं, वे मिक्सलर ऐप डाउनलोड करें और रेडियो आजाद हिंद टाइप करें।
2: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: मैं हूं हरि प्रसाद चौरासिया, आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पे, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। सुबह के 11 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे मन की बात का सीधा प्रसारण। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का 135वां भाग। इस कार्यक्रम के लिए कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती है। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों, जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और ये कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई।
1: In the rupees 9 workshop that you're providing, what all do you cover?
2: In 9 rupees, you learn how to automate your reports, how to automate your presentation, how you can create entire applications without having any coding knowledge. And not only that, you will be also learning how you can work with AI agents as well. And all of this in just 3 hours. Just imagine.
1: Wow, that is amazing. But there's so much to learn and you're charging only 9 rupees. People are going to think that's a scam. Is that true or like how do you go about that?
2: So you need to understand why do we charge 9 rupees, right? So we want to make it democratized. As many people as possible should be attending it. So I don't want price to be gatekeeping for them in order to like take their first step towards GenAI. So that's why we have kept at rupees 9.
1: Okay, that is great.
0: बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे, वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहां नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपये का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानी केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपये की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है, हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है, और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती, और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है, उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी, फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया, और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है, और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनकी रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक से अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है।
2: Have you used Claude?
3: Around 98% of people out there are not able to use Claude to its fullest extent because Claude has many features like Claude Skill, Claude Automation, among others. If you are one of them, I'm missing out on a lot. And people who are able to use Claude to its fullest extent, they are joining companies at 1 crore, 1.5 crore packages as AI automation expert. And if you want to learn how to use Claude properly and other 15 AI tools, which are going to save you 95% of your time, I invite you for my 3 hours workshop. This workshop is rated 4.92 out of 5 among 1 million workshop participants. So this workshop is not good. This workshop is freaking great. So what are you waiting for? Click on the link below, sign up for the workshop. And for first few seats, this workshop is just going to be 9 rupees. So see you inside the workshop.
4: Unlock your success with V10X.
0: Women Futsal League हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूँ। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए एआई इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य घड़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और आध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं, वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनकी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की। संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि ये किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा, लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया, ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
5: अभी आप सुन रहे थे मन की बात का सीधा प्रसारण। आज इसके अंतर्गत आपने सुना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का 135वां भाग। इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आज रात 9 बजे सुनना ना भूलिएगा रेडियो आजाद हिंद पर। ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। अगला कार्यक्रम एक छोटे से अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।
6: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
5: मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम काव्य गुंजन।
7: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। इस गुच्छे में आज हम आपके लिए ऐसा काव्य विन्यास लेकर आए हैं जहां पंखुड़ियां रण की चमक से नहीं तप की शांति से दमकती हैं। श्रोताओं, बीते एपिसोड में हमने रश्मिरथी के द्वितीय सर्ग के भाग 5, 6 और 7 के साथ उस गहन भाव भूमि को महसूस किया जहां शब्द केवल कथा नहीं कहते, वे भीतर उतरकर आत्मा को स्पर्श करते हैं। वहां कर्ण के स्वर में केवल प्रतिरोध नहीं था, बल्कि व्यवस्था से टकराता हुआ एक सच था। जहां ज्ञान उपेक्षित था और जन्म की दीवारें पुरुषार्थ के मार्ग में खड़ी थी, फिर हमने उस मौन साधना को देखा जहां गुरु के स्नेह और शिष्य के समर्पण के बीच कर्ण स्वयं को तपाता है, और अंततः वो क्षण भी जब पीड़ा उसकी जांघ में धसती जाती है पर उसका संकल्प तनिक भी नहीं डिगता। ये वही बिंदु है जहां कर्ण की महानता दिखाई नहीं देती, वो महसूस होती है उसकी निस्तब्धता में, उसके धैर्य में और उसके भीतर जलते हुए उस अग्निकुंड में जो उसे साधारण से असाधारण बनाता है।
5: हाँ श्रोताओं, यह यात्रा अब और भी भीतर उतरती जा रही है, जहां प्रश्नों के उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि अनुभवों में मिलते हैं। कर्ण का जीवन अब केवल घटनाओं का क्रम नहीं रह गया, वह एक ऐसी साधना बन चुका है जिसमें हर क्षण उसे खुद से ही जूझना है। यहाँ पीड़ा भी शिक्षक है और मौन भी मार्गदर्शक। उस विषदंश की वेदना केवल शरीर तक सीमित नहीं, वह उस व्यवस्था की चुभन है जो मनुष्य को बार बार उसकी सीमा का बोध कराती है। अब कथा उस दहलीज पर खड़ी है जहां भावनाएं और भी तीव्र होंगी, निर्णय और भी कठोर होंगे, और कर्ण का पथ नई चुनौतियों से भर उठेगा। यह वह चरण है जहां भीतर सुलगती हुई अग्नि अब धीरे धीरे प्रकाश बनने को है, पर उस प्रकाश तक पहुंचने से पहले उसे और अंधेरों से गुजरना होगा। आइए श्रोताओं, अब इस प्रवाह को आगे बढ़ाते हैं उस अगले विस्तार की ओर, जहां कर्ण की कथा और गहरी होती है, उसके संकल्प की धार और पैनी हो जाती है और जीवन उसे ऐसे मोड़ों से परिचित कराता है जिनसे गुजरकर ही कोई व्यक्तित्व अमिट बन पाता है। अब सुनते हैं द्वितीय सर्ग के भाग 8, 9 और 10 को। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, सहम गई यह सोच कर्ण की, भक्तिपूर्ण वह वल छाती। सोचा उसने, अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना शिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में, गुरु से आज्ञा लेकर बाहर किया कीट को उसने क्षत में से उंगली देकर। परशुराम बोले,
8: शिव शिव, तूने यह की मूर्खता पड़ी, सहता रहा चल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी।
5: तनिक लजाकर कहा कर्ण ने,
8: नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है ये छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा, आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच ये कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा ये जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर ये तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया, लज्जित हूं इसीलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया।
5: परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में, फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीस कर आंखें तरेर कर बोले,
8: कौन छली है तू? ब्राह्मण है क्या किसी और अभिजन का पुत्र बलि है तू?
5: यहीं से कथा निर्णायक मोड़ लेती है, गुरु के मन में शंका जन्म लेती है। भक्ति और विश्वास के बीच अब सत्य का प्रश्न खड़ा हो गया है। यही वह क्षण है जहां करुणा से कथा क्रोध और नीति की दिशा में मुड़ती है। श्रोताओं, यह काव्य संवाद सुनकर मन सचमुच भर आता है। यह केवल एक कीट दंश की कथा नहीं, यह विश्वास की अग्नि परीक्षा है जहां शिष्य अपनी पीड़ा से अधिक गुरु की नींद की रक्षा करता है। ऐसा प्रेम, ऐसी निष्ठा, ऐसा मौन त्याग आज कहां देखने को मिलता है? तप, संयम और समर्पण, ये शब्द जैसे हमारे जीवन से सरक कर केवल ग्रंथों और कथाओं में सिमटते जा रहे हैं। कर्ण ने जिस वेदना को सहा वह केवल शरीर की पीड़ा नहीं थी, वह भाग्य की विडंबना भी थी जो कभी जन्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर उसके मार्ग में दीवारें खड़ी करती रहीं। लगता है समय भी जैसे उसी के धैर्य की परीक्षा लेने पर तुला हो। और यही इस प्रसंग को साधारण कथा से उठाकर अमर कर देता है। सांच को आंच नहीं, पर आंच पहले उसी पर आती है। कर्ण की देह तो अब तक पत्थर बनी रही, पर अब बारी है उसकी असली पहचान की, जहां दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। जन्म और कर्म आमने सामने खड़े हैं, गुरु का रोष अग्नि सा धधक रहा है और शिष्य का हृदय हथेली पर रखा है। आइए सुनते हैं द्वितीय सर्ग का भाग 9, जहां सत्य की धार किसी खड्ग से कम तीखी नहीं है।
8: सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी ना जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले, नहीं यह हो सकता
7: किसी दशा में भी स्वभाव अपना वो कैसे खो सकता? कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है? इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता, ना तो फल पाएगा, परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा।
5: क्षमा क्षमा हे देव दयामय, गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मुख विवर्ण हो गया, अंग कापने लगे भय से थर थर।
9: सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ, जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो ये काम हुआ, आया था विद्या संचय को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में कार्त वीर्य के जेता का, तपोदीप्त शूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का, पर शंका थी मुझे सत्य का अगर पता पा जाएंगे, महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। पता सका मैं नहीं इसी से, हे प्रभु जाति अपनी छोटी, करे देव विश्वास भावना और ना थी कोई खोटी, पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूँ, मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ, अपने आप मरा सा जाता हूँ।
5: श्रोताओं, यह दृश्य मानो वज्र और कमल का एक साथ टूटना है। कर्ण का सिर गुरु के चरणों में झुका हुआ है, जैसे आंधी में झुकता कोई अशोक वृक्ष टूटता नहीं पर भीतर से चिर जाता है। उसकी वाणी में वह कपकपी है जो केवल भय की नहीं आत्मग्लानी की होती है। ज्ञान पाने की प्यास उसके लिए गंगा थी, पर जन्म की रेत ने बार बार उसका मार्ग रोक लिया। आज वह स्वयं को अपराधी की तरह प्रस्तुत कर रहा है, जबकि उसका दोष केवल इतना ही है कि उसने ऊंचा उड़ने का स्वप्न देखा।
7: श्रोताओं, गुरु की आंखों में दहकती ज्वाला है और शिष्य का मन जैसे राख से ढका अंगार। परशुराम का क्रोध आकाश चीरता धूम केतु सा प्रखर है, तो कर्ण की विनती संध्या की अंतिम लौ कंपित, किंतु अभी भी उजास बचाए हुए शब्द अब केवल ध्वनि नहीं रहे, वे बाण हैं और सत्य नंगी धार की तरह चमक रहा है।
5: और उस करुण क्षण को दिनकर की लेखनी ने ऐसे छुआ मानो सूर्य स्वयं अपने ही अंश की पीड़ा लिख रहा हो। एक तपता तेज जिसे संसार ने नाम देने से पहले ही ठुकरा दिया। श्रोताओं, करुणा की इस गहन घटा के बाद अब शब्दों का आकाश फिर खुलने जा रहा है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि मनुष्य केवल जन्म से नहीं अपने चुनावों और अपने व्रतों से पहचाना जाता है, कि सम्मान छल से नहीं सत्य की अग्नि से तपकर मिलता है, और यह भी कि महत्वाकांक्षा जब मर्यादा से टकराती है तो आत्मा स्वयं अपना न्यायालय बन जाती है।
7: आइए इसी सीख को हृदय में संजोए हम द्वितीय सर्ग के भाग 10 में प्रवेश करें, जहां कर्ण शाप से नहीं अपने अधूरे स्वप्नों से जूझता दिखाई देगा, जहां गुरु और शिष्य के बीच केवल दंड नहीं एक गहरी पहचान का प्रकाश भी फूटेगा। सुनते हैं रश्मि रथी का भाग 10।
9: छल से पाना मान जगत में किलविश है, मल ही तो है। ऊंचा बना आपके आगे सचमुच ये छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती भली होकर, अब जाऊंगा कहां स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करें भस्म ही मुझे देव, सम्मुख है मस्तक नत मेरा, एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहां मैं पाऊंगा। ये तृष्णा ये विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी, प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं? अब है देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूं देशाप, किंतु अंतिम सुख तो ये पाने दें, इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गवाने दें, इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गवाने दें।
5: लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर, दो कणिकाएं गिरी अश्रु की, गुरु की आंखों से बहकर बोले,
10: हाय कर्ण, तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चल सखा धार्त राष्ट्रों का, विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया, पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया, कभी नहीं मैंने पाया।
5: श्रोताओं, यह प्रसंग किसी साधारण स्वीकारोक्ति का नहीं है, आत्मा के दरबार में खड़े एक मनुष्य के नग्न सत्य का है। कर्ण यहां केवल अपने गुरु के सामने नहीं, अपने ही अंतःकरण के कटघरे में खड़ा है, जहां ना कोई आड़ है ना कोई तर्क। छल से पाया मान उसके लिए मान नहीं, मानो अंगार है जो भीतर ही भीतर उसे दग्ध कर रहा है। यह दृश्य मानो तपते मरुस्थल पर अचानक फूट पड़ी जलधारा हो। एक और कर्ण है जो शाप को भी प्रसाद की तरह हथेली पर धरने को तैयार खड़ा है, और दूसरी ओर गुरु है जिनकी कठोर दृष्टि के कोनों से करुणा ओस की बूंद बनकर ढलक रही है। यह क्षण केवल अपराध और दंड का नहीं, हृदयों के पिघलने का है, जहां शिष्य की निष्ठा और गुरु की करुणा मिलकर समय की शिला पर अमिट रेखा खींच देती है।
10: श्रोताओं, उसकी पीड़ा केवल अपने अपराध की नहीं बल्कि अधूरी रह गई आकांक्षाओं की भी है। अर्जुन को परास्त करने की इच्छा, दुर्योधन के प्रति उसका अटूट संबंध और अपने अस्तित्व को सिद्ध करने की जिद, वो दो दिशाओं के बीच खड़ा है, एक ओर धर्म का आह्वान, दूसरी ओर मित्रता का बंधन। कर्ण भली भांति जानता है कि वचन और उपकार दोनों मनुष्य को बांध लेते हैं, और वही बंधन उसे अपने निर्णयों में स्वतंत्र नहीं रहने देते। फिर भी वो अपने जीवन की याचना नहीं करता, बल्कि दंड को भी स्वीकार करने के लिए तत्पर है। यही उसकी महानता है कि वो अपने दोष से भागता नहीं, उसे स्वीकार कर उससे ऊपर उठना चाहता है।
5: श्रोताओं, दिनकर जी मूलतः वीर रस के कवि माने जाते हैं। उनकी कविताएं समाज में सकारात्मक ऊर्जा भरती हैं और जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण देती हैं। पर देखिए, उसी वीर रस के कवि ने कर्ण की करुणा को भी उतनी ही गहराई से उकेरा है। यही उनकी लेखनी की शक्ति है, वह हमें साहस भी देती है और संवेदना भी सिखाती है। आज की पीढ़ी के लिए यह संदेश स्पष्ट है, संघर्ष से घबराना नहीं, अपने लक्ष्य ऊंचे रखना, पर सत्य और आत्मसम्मान को कभी ना त्यागना। कर्ण ने भले ही असत्य का सहारा लिया हो, पर उसकी साधना और जिज्ञासा इतनी सच्ची थी कि गुरु का मन द्रवित हुए बिना नहीं रह सकता।
10: तो श्रोताओं, इसी गहन भाव विस्फोट, आत्मस्वीकृति और गुरु शिष्य के इस अद्वितीय प्रसंग के साथ आज की ये काव्य यात्रा यहीं एक मधुर विराम लेती है। कर्ण का अंतर्द्वंद्व, उसकी पीड़ा, उसका स्वाभिमान और उसका टूट संकल्प, ये सब मिलकर हमें सोचने पर विवश करते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर लड़ा जाता है। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग के अंतिम भाग 11, 12 और 13 का काव्य पाठ और चर्चा, जहां कर्ण की यात्रा एक नए निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी। लेकिन जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन किया था संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़,
7: ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, रेडियो प्रस्तुति लेखन दीपक नेमा, और इसे आप तक पहुंचाया मैंने यानी संदीप शर्मा ने,
5: मैंने यानी भगवती सक्सेना ने,
11: और मैं आपका रेडियो मित्र दीपक नेमा।
7: तो इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की यात्रा यहीं विराम लेती है, फिर मिलेंगे एक नए अंक में। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। नमस्कार। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम काव्य गुंजन, ये रेडियो आजाद हिंद है 90.8 MHz पर। अगला कार्यक्रम एक अंतराल के बाद, कीजिएगा थोड़ा सा इंतजार।
6: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए।
5: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जो श्रोता हमें अपने मोबाइल फोन पर सुनना चाहते हैं, वे मिक्सलर ऐप डाउनलोड करें और रेडियो आजाद हिंद टाइप करें। और आइए अब आपको सुनवाते हैं मध्य प्रदेश गान।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। दिन के 12 बजने को है। आइए श्रोताओं, आपको अवगत करा दें आज की सांध्यकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों से। हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे आप सुनेंगे अक्षय निधि, शाम 6 बजे सुना ना भूलिएगा कार्यक्रम वतन का राग जो केंद्रित है शिव प्रसाद गुप्ता पर, 6:30 बजे कार्यक्रम होगा बाल सभा, विषय होगा बरसात में कैसे बने इको दोस्त।

शाम 7 बजे टैग गुरु, आज का विषय दृष्टिहीन जनों के लिए कंप्यूटर तकनीक के फायदे। इस विषय पर आपको जानकारी देंगे डॉक्टर रोहित त्रिवेदी। इनसे बातचीत की है फराज फयाज ने। 7:30 बजे सुनिएगा कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, आज का विषय कारगिल युद्ध। आज सुनिएगा इसका पहला भाग। इस विषय पर आपको जानकारी देंगे सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा। साढ़े 8 बजे आजाद हिंद जो केंद्रित है मन कुमार बसु ठाकुर पर। रात 9 बजे मन की बात का पुनः प्रसारण सुनिएगा। और रात 9:30 बजे कार्यक्रम होगा काव्य गुंजन। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे रश्मि रथी भाग 5। तो ये थी जानकारी हमारी आज की सांध्यकालीन सभा के मुख्य कार्यक्रमों की। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए। दिन के 12 बज चुके हैं। एक अंतराल के बाद सुनेगा तराने आजादी।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी। तराने आजादी सुनने वाले सभी श्रोताओं को दीप्ति का बहुत बहुत नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी।

0: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीप्ति को दें इजाजत। नमस्कार, सुनते रहे 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।
1: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिजीत दा, अभिजीत भट्टाचार्य, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराया। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

0: मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती, भारत भारती,
2: श्रोताओं, आज भारत भारती कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूँ मैं, आपकी रेडियो सखी सुनीता सिंह। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस कार्यक्रम में मिट्टी की सौंधी सी महक आपके लिए, जरा पहचानिए तो आपको हम किस ओर ले चल रहे हैं। जी हाँ श्रोताओं, ये है मिट्टी की सौंधी सी महक बघेलखंड की धरती से उठती हुई। भारत भारती के आज के अंक में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मणिमाला सिंह और साथियों के गाए हुए कुछ बघेली लोकगीत। तो क्यों ना आज के इस कार्यक्रम का श्री गणेश करें इस गणेश वंदना से।

श्रोताओं, लोक संगीत यानी जन जन का संगीत, ऐसे गीत जो हमारी मिट्टी में रचे बसे हैं, सदियों से हमारी परंपरा, हमारे संस्कारों से जुड़े हुए हैं, जीवन के सुख दुख से जुड़े हुए हैं। ऐसा ही एक गीत है सोहर, जो बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। तो आइए जीवन के उत्सव का ये गीत सुनते हैं मणिमाला सिंह और साथियों की आवाजों में।

बच्चे का जन्म हुआ और महिलाओं ने मिलकर गाया सोहर। जी हाँ, सोहर बच्चे के जन्म पर खुशी में गाया जाने वाला लोकगीत है। वैसे बच्चे की बधाई तरह तरह से दी जाती है। अगर घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो बहुत तरह से मिठाइयाँ बांटकर बधाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन बधाई गीत का एक अपना ही महत्व है। तो आइए वही बधाई गीत सुनते हैं मणिमाला सिंह और साथियों के स्वरों में।

श्रोताओं, बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद माँ के द्वारा कुआं के पूजन का विधान है। जी हाँ, सिर पर गगरी रख माँ कुएं तक जाती है और घर के सभी लोग उसके पीछे पीछे साथ में गाते बजाते पहुँचते हैं कुएं तक और उसका पूजन करते हैं। तो आइए इसी अवसर पर गाया जाने वाला ये लोकगीत सुनते हैं। स्वर मणिमाला सिंह और साथियों के हैं।

श्रोताओं, भारत भारती कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मणिमाला सिंह और साथियों के गाए हुए कुछ बघेली लोकगीत। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति ये पारंपरिक रचना।

बघेलखंड का लोक संगीत। जी हाँ, सरस, मीठा, मधुर। इस लोक संगीत में संस्कार गीतों की परंपरा बहुत ही समृद्ध है। आइए कुछ शादी ब्याह से संबंधित गीत आपको सुनवाते हैं इन्हीं कलाकारों के स्वरों में। भाई, दूल्हा तैयार हो चुका है, शादी की पूरी तैयारी हो गई है और घर के लोग बारात लेकर निकलने की तैयारी में हैं। अब ये कि बनरा गाया जाएगा। जी हाँ, यही वो लोकगीत है जो इस अवसर पर गाया जाता है। आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, लोक जीवन में कितनी अनुपम और सुंदर बातें होती हैं। जी हाँ, अगर बच्चे का जन्म हुआ तो वो या तो कान्हा कहलाता है या राम, माँ कौशल्या हो जाती है या यशोदा कहलाती है। इसी तरह जब शादी के लिए तैयार होता है दूल्हा तो उसमें सभी लोग छवि देखते हैं भगवान श्री राम की, और ये बारात चाहे कहीं भी जा रही हो। लेकिन हम अपने लोकगीतों में गाते हैं कि बारात चली जनकपुर को। अब जब बारात जनकपुर पहुंची तो भाई वहां स्वागत की तैयारी भी पूरी तरह से है, बारात द्वार पर है। अब उसके स्वागत में जो गीत गाया जाता है वो है गैलहाई। आइए सुनते हैं इन्हीं कलाकारों के स्वरों में।

द्वार पर बारात का स्वागत तो एक बात, लेकिन कुछ हंसी ठिठोली भी होती है। जी हाँ, एक दूसरे से जान पहचान हो जाए, कुछ मेल मिलाप हो जाए, एक दूसरे से बातचीत में हम खुल जाएं, इस उद्देश्य को लेकर गारी भी गाई जाती है। कुछ छेड़छाड़, थोड़ा सा आमोद प्रमोद। आइए सुनते हैं द्वारचार की गारी, स्वर मणिमाला सिंह और साथियों के।

श्रोताओं, ये था दूर से बारात को देखना। जी हाँ, कभी छज्जे से तो कभी दीवार से लगे हुए एड़ियां उठाकर पूरे उत्साह के साथ और थोड़ी सी शरारत भी की गई, गारी गाई गई, बारातियों की थोड़ी सी खिंचाई की गई। जी हाँ, लेकिन अब बारात लग चुकी है द्वार पर, घराती और बाराती दोनों का ही उत्साह देखते ही बन रहा है। इस अवसर पर गाया जाता है बारात के स्वागत में ये पारंपरिक लोकगीत।

0: घर में बिटिया की शादी है। कितनी ही भावनाएं मन में हिलोरें ले रही हैं। खुशी है कि बेटी सुहागन होगी, और वहीं बचपन से लेकर आज तक जुड़ी कितनी ही यादें बार बार आती हैं, मन को भिगा जाती हैं। कभी ये लगता है कि बिटिया इतनी जल्दी बड़ी हो गई, और कभी ये लगता है कि कितनी खुशी की बात है कि बारात द्वार पर आई है। और इन्हीं मनोभावों के बीच बेटी के अनंत सुहाग की कामना लिए गाया जा रहा है सुहाग। आइए सुनते हैं मणिमाला सिंह और साथियों के स्वरों में।
1: मोरी के बोला चाहब सुहाग गीत मवा प्रसंग है। ई जौने घर मा बिटिया कुमार होती, सबको सो जाती, सब सो जाती, लेकिन वह घर के प्राणी बाबा आजा काका उन्हें स्वामी उन्हें कितनी चिंता होती, वह चिंता का लेते हम अपना के सामने।

श्रोताओं, हंसी ठिठोली एक जगह, लेकिन बारातियों से बड़ा भला कौन मेहमान, तो उनके स्वागत के लिए तैयारी भी पूरे जोर शोर से है। जी हाँ, नाना प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं और बेली जा रही हैं पूड़ियाँ। बारातियों को खिलाई जाएंगी ये पूड़ियाँ, और ये पूड़ी भी यूं ही थोड़ी बेली जाएगी, यहाँ भी तो कोई मंगल गीत होगा। जी हाँ, गांव भर की महिलाएं इकट्ठी हैं, बारातियों के लिए बेल रही हैं पूड़ी और इस अवसर पर खुशी के साथ मंगल गीत गा रही हैं, जिसे हम कहते हैं बेलनहाई। आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, बेलनहाई गाते हुए पूड़ियां तो बन गईं और अब समधी जी तैयार हैं जेवनार के लिए। और खाने के इस अवसर पर गारी तो होगी, लेकिन मर्यादित शब्दों में। और आपको पता है, बघेलखंड में नाम ले लेकर गारी देने का रिवाज है। और सबसे मजेदार बात ये कि अगर किसी का नाम न लिया जाए तो वो बुरा मान जाता है, यानी गारी दी भी जाती है प्रेम से और ली भी जाती है प्रेम से।

0: जितने जने हमारे थोड़ी का सुना थे उनसे सबसे पूछी थी, कहा थी हमरे बघेल खंड में जाकर नाम लेके गाली ना गाई जाओ, बुरा मान जा, बुरा बिल्कुल ना मानब। हम सबसे पूछी थी अपना पंचन के बगल से निकली 50,000 छोकरी,
1: कहो कैसे निकली
0: आज जैसे बजे से।

श्रोताओं, यूं ही गाते गुनगुनाते, हंसी ठिठोली करते, आमोद प्रमोद करते, खाते खिलाते सभी रस्में होने लगीं और हर रस्म के साथ कोई न कोई लोकगीत जरूर जुड़ा हुआ है। तो आइए सुनते हैं ये भंवरी, जिसके भाव बहुत ही करुण हैं। तो इसी भाव के साथ सुनिएगा मणिमाला सिंह और साथियों के स्वरों में ये लोकगीत।

श्रोताओं, बारात द्वार पर आई, उसका स्वागत किया गया, कुछ आमोद प्रमोद भी हुआ, गारी गाई गई और तरह तरह के व्यंजन परोसे गए। विवाह की इस मंगल बेला में अब गाई जा रही है अंजुरी। आइए सुनते हैं मणिमाला सिंह और साथियों के स्वरों में।

विवाह संपूर्ण हुआ और अब बेला आई विदाई की। मन भीग भीग जा रहा है। वो बिटिया जिसने इस आंगन में जन्म लिया, यहीं खेली कूदी बड़ी हुई, संस्कार पाए, माता पिता की लाड़ली, भाई बहनों की दुलारी, आज इस आंगन को छोड़कर चली जाएगी। कैसी कठिन घड़ी है कि माता पिता अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये विदाई गीत। कलाकार हैं मणिमाला सिंह और साथी।

और श्रोताओं, विदा होकर बिटिया आ गई अपने ससुराल। जी हाँ, ससुराल में खुशी का वातावरण, लोग प्रसन्न हैं कि गृह लक्ष्मी आ गई। और यहाँ भी तो घर की लक्ष्मी को घर में प्रवेश करवाने से पहले कितनी ही रस्में हैं। गृह लक्ष्मी का स्वागत हो रहा है परछन से, तो आइए इसी अवसर पर गाया जाने वाला ये लोकगीत सुनते हैं मणिमाला सिंह और साथियों के स्वरों में।

0: सुने कुछ बघेली लोकगीत और वहाँ के कुछ संस्कार गीत। हमारे आज के कलाकार थे मणिमाला सिंह और साथी। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही संपन्न होता है भारत भारती का आज का अंक। अनुमति दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती।

0: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं, हमने तो अभी तक यही सुना था कि जोड़िया ऊपर वाला बनाता है, धरती पर तो केवल उनका मिलन होता है। लेकिन कभी आपने सोचा भी ना होगा कि बेटी का रिश्ता पक्का करते समय कैसी कैसी परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है, और परेशानी भी ऐसी जो आपकी कल्पना से भी परे हो। तो आइए सुनते हैं हास्य नाटिका बेटी का रिश्ता।
2: अजी सुनते हो, लड़की कब की सयानी हो चुकी है, तुम्हें कुछ दिखाई देता भी है कि नहीं?
3: क्यों, क्या मैं घर में आंखें बंद करके घूमता हूँ?
2: यही यही तो समस्या है तुम्हारी। अरे आंखें खुली रहती हैं पर दिखाई कुछ नहीं देता। तुम्हारे सामने से बिल्ली दूध चट कर जाएगी और तुम बैठे अखबार ही पढ़ते रहोगे।
3: देखो देखो मेरे अखबार को किस्मत कहना, तुम्हें पता भी है अखबार आज के जमाने में कितनी अहमियत रखता है, पर तुम क्या जानो। अच्छा जरा बताना तो के हिलेरी क्लिंटन कौन है?
2: अरे ये क्लिंटन मिल्टन को मारो गोली।
3: क्या
2: ये अपनी कंचन को देखो ना, जो पूरन मास के चांद की तरह फुल साइज हो चुकी है। अरे इसकी शादी वादी करनी है कि नहीं?
3: तो तुम क्या सोचती हो, अकेले तुम्हें ही उसकी चिंता है? मैं तो जैसे उसको कुछ लगता ही नहीं हूँ। अरे आदमी और औरत में यही अंतर होता है। औरतें बक बक करके अपनी भड़ास निकालती हैं और आदमी चुपचाप काम करते रहते हैं।
2: अच्छा जरा मैं भी तो सुनूं कि मौन व्रत रखकर आपने कौन सी तपस्या की है भला? अरे किस महादेव को प्रसन्न किया है?
3: हाँ ये हुई ना मुद्दे की बात। अरे मगर जरा ढंग से तो पूछो। खैर छोड़ो, मैंने शास्त्री जी से बात चलाई है। हाँ? एक लड़का है उनकी नजर में, अच्छा खाता पीता का रहे।
2: अच्छा?
3: हाँ, लड़का भी ढंग का है, एक दो दिन में ही उन लोगों से बात करके बताएंगे वो हमें।
2: अच्छा अच्छा। हाँ? अरे ये तो तुमने मुझे बताया ही नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है।
3: हाँ।

0: हेलो, अरे पंडित जी प्रणाम, पाए लगूं जी जी जी। अच्छा, बात हो गई आपकी? फिर क्या, आज ही आ रहे हैं वो लोग? अरे वाह, लड़के के माँ बाप? बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। जी जी, ठीक है। सुनो जी,
1: जी।
0: पंडित जी ने सब बात जमा दी है?
1: हाँ।
0: आज ही दोपहर लड़के के माँ बाप अपनी कंचन को देखने आ रहे हैं।
1: अरे अरे अरे, हाय हाय, बस किसी तरह बात बन जाए, भगवान को मैं 125 का प्रसाद चढ़ाऊंगी।
2: बस
1: अरे चिंता के मारे मुझे नींद नहीं आती।
0: अरे चिंता छोड़ो, भगवान ने चाहा तो ये रिश्ता तय ही हो जाएगा।
1: हाँ।

0: आप फिर सोना कुंभकर्ण की तरह पूरे 6 महीने लगातार।
1: मेरा मजाक मत उड़ाओ जी। हाँ, कराटे तुम भरते हो, ऐसा लगता है कि फटी बांसुरी बज रही है, और कुंभकर्ण मुझे कहते हो।
0: फिर शुरू हो गई तुम, ये सब बाद में कर लेना, पहले चलकर तैयारी करो, कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए उन लोगों को।
1: अच्छा।

0: सुनो जी, लगता है वो आ गए हैं। तुम दरवाजा खोलो ना। हाँ, हाँ, हाँ। मैं है ना भीतर जाकर कंचन को देखती हूँ।
1: हाँ।
0: बड़ी लापरवाह लड़की है ना।
1: हाँ, बिल्कुल।
2: मैंने कहा राधे श्याम जी है क्या घर में?
3: अरे आ रहे हैं, आ रहे हैं। पाए लागो पंडित जी।
2: अरे खुश रहो, खुश रहो यजमान, सब कुशल मंगल से तो है ना।
3: आपकी कृपा है पंडित जी।
2: अच्छा तो मैं परिचय करवाता हूँ।
3: जी जी जी, जी।
2: ये हैं श्रीमान विद्यापति।
4: नमस्कार।
2: और ये हैं उनकी धर्म पत्नी।
3: जी जी जी,
0: नमस्ते।
2: और ये हैं इनके दोनों के सुपुत्र श्री पुष्पेंद्र जी। किराने की दुकान है इनकी।
3: अच्छा, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी, जो आप हमारे यहाँ पधारने का कष्ट किया आपने।
4: अरे अरे कष्ट का है का, अब हमारे पंडित जी का आदेश हुआ और हम हाजिर हो गए।
0: नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते।
3: हमारी धर्म पत्नी सावित्री देवी।
4: नमस्ते बहन जी।
3: वो कंचन को बुलाओ जरा अंदर से।
0: अभी बुलाती हूँ। कंचन बेटिया, नाश्ता चाय लेके आ जाओ बेटा।
2: वो देखो आ गई। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। वो देखिए कन्या चली आ रही है, आ रही है। अत्यंत सुशील और गुणवंती कन्या है हमारी। और एक बात बताऊं, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है।
4: शास्त्री जी, वो तो देखकर ही लग रहा है कि बिल्कुल माँ पर गई है।
5: जी नमस्ते।
4: नमस्ते बेटा।
2: कितनी सुशील संस्कारी लड़की है, देखा बिटिया खड़ी क्या हो। अरे मेहमानों को नाश्ता परोसो भैया।
5: जी पंडित जी। जी ये समोसे खाइए।
2: बिटिया ने ही बनाए हैं।
4: अच्छा।
2: अरे बेटा ये मिठाई भी तो दो, इतना कुछ तुमने बनाया है, दो लीजिए। अरे यजमान आप भी लीजिए।
4: शास्त्री जी एक बात पूछें, कन्या क्या समोसा और मिठाई खाती है?
2: तो विद्यापति जी,
4: जी
2: कैसी लगी हमारी कन्या आप लोगों को?
4: पंडित जी जरा हम चर्चा करके बताते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल भाई, आपको एक दिन का रिश्ता तो है नहीं भाई, पूरी जिंदगी का सवाल है भाई। पहले हमारे जमाने में तो ना ही जाता था भाई, रिश्ता तय कर आ जाता था और विवाह हो जाता था। लेकिन आजकल वो क्या कहते हैं, हाँ कंप्यूटर का जमाना है ना। कहने का मतलब ये कि अगर लड़का और लड़की यानी कि कन्या और आपका बिटुआ आपस में बातचीत करना चाहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
4: नहीं नहीं नहीं पंडित जी, लेकिन हमें आपत्ति है। अकेले वकेले में बात करने का संस्कार हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है पंडित जी। हमारा बेटा तो बिल्कुल श्रवण कुमार है, श्रवण कुमार, जो माँ बाप कहेंगे वही करेगा। बस जरा हम पप्पू की माँ से बात कर लें।
2: अब आपस में आप लोग राय सुमारी कर लीजिए भाई, तब तक हम लोग बगल के कमरे में बैठकर थोड़ी गप शप कर लेते हैं।
4: जी जी, हाँ, जी।
2: आइए जिजमान, आइए। हम आ जाएं?
4: अवश्य अवश्य, पधारिए पधारिए।
2: हाँ तो बताइए विद्यापति जी, क्या फैसला है आप जनों का?
4: अब वो हमारी,
0: देखिए पंडित जी, लड़की तो पसंद है हम लोगों को, पर कुछ बातें हैं जो साफ हो जाएं तो अच्छा है।
6: हाँ हाँ बहन जी, बिल्कुल दान दहेज की बात तो साफ ही होनी चाहिए। अब बात को कुछ ऐसा,
0: अरे नहीं नहीं बहन जी, दान दहेज का तो हमारे यहाँ चलन ही नहीं है। पर
6: देखिए देखिए, सकुचाइए मत, निसंकोच बोलिए जो भी मन में है।
0: अब देखिए तो महंगाई तो आप लोग देख ही रहे हैं, किस कदर सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में
3: बहन
0: तो...
3: जी, बहन जी बेफिक्र रहें आप, महंगाई की आंच हम शादी पर नहीं आने देंगे। हाँ, अगर आप लोग बारात वगैरह सादगी के साथ लेकर आना चाहते हैं तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।
4: नहीं नहीं भाई साहब नहीं, बात दरअसल वो नहीं है, बात तो ये है कि...
0: रुकिए आप, रुकिए जरा भाई साहब।
3: जी
0: हम लोगों को लड़की के बारे में एक बात पूछनी है।
6: बहन जी एक क्यों, 100 पूछिए ना।
0: जी वो ये है कि लड़की की खुराक
3: जी?
0: मतलब कि वो लड़की रोटी कितनी खाती है।
4: रोटी रोटी रोटी।
0: अब देखिए भी आप भी, राशन के भाव इतने बढ़ गए हैं तो ये बात तो साफ होनी ही चाहिए ना कि लड़की रोटी कितनी खाती है। आखिर देखिए कोई एक दिन का तो खिलाना नहीं है ना हमें।
4: अरे हाँ बहन जी, आजकल तो देखिए ना, कोई भी चीज घर में लाने से पहले ये पता किया जाता है कि उसकी खुराक कितनी है। आजकल इलेक्ट्रिक के सामान भी स्टार रेटेड खरीदे जाते हैं जिससे कि वो बिजली की कम खपत करे। लोगों ने बल्ब से तौबा कर ली है, बल्ब से तौबा, CFL से नाता जोड़ लिया है। आखिर इसीलिए ना कि बल्बों की खुराक बहुत ज्यादा थी। और तो और अब गाड़ियां भी खरीदने से पहले ये देखा जाता है कि इनका ओवरेज क्या है।
0: एवरेज?
4: अरे श्रीमान ये चीजें तो फिर भी बदली जा सकती हैं, पर लड़की?
3: जी हमने तो कभी अपनी बेटी की रोटी गिनी नहीं, पर अब आप लोग कह रहे हैं तो हम हिसाब लगाकर बताते हैं। 2 मिनट का वक्त देंगे हमें आप?
4: अरे 2 मिनट का नहीं श्रीमान जी, 10 मिनट का समय देंगे, 10 मिनट का। बिल्कुल बिल्कुल, आंकड़ा मिलने में भले ही देर हो जाए पर मिले तो बिल्कुल सही मिले। वो क्या है ना कि अगर आंकड़ा ही गलत हो जाए तो सारा का सारा हिसाब ही गड़बड़ा जाता है। पता चला बजट था 1000 रुपए का और खर्च बैठ गया 2000, तो बाकी चीजें तो गड़बड़ हो जाएंगी ना।
3: आप कहो तो हम अपनी धर्मपत्नी से भीतर जाकर चर्चा कर लें।
4: बिल्कुल श्रीमान, बिल्कुल श्रीमान, अवश्य चर्चा कर लें।
3: चलो आओ। अब क्या बताएं लोगों को, अपनी बेटी की खुराक पूछ रहे हैं। अरे तुमने भी तो लाड प्यार में कभी ध्यान नहीं दिया, मनुहार करके खिलाती गई और उसकी खुराक बढ़ती।
6: मुझे क्या मालूम था कि लड़की ब्याहने में ये बताना पड़ेगा कि कितनी रोटी खाती है। खाने का ठिकाना नहीं और चले हैं बहू ब्याहने। अरे मैं तो कहती हूँ कि इस रिश्ते को मना ही कर दो। अरे ये लोग हमारी बेटी को भूखों मार डालेंगे, गिन गिन कर रोटी खिलाएंगे और नाप तोल कर चावल दाल, और ये सब्जी तो सोने की तरह तोले में तोल कर देंगे, समझे?
3: धीरे बोल भाई, कहीं तेरी कटर कटर सुन लिए तो आया रिश्ता हाथ से निकल जाएगा।
6: अरे तू जाने दो ना। हाँ अच्छा ही होगा, हमें मुंह खोलकर नहीं कहना होगा। अरे ऐसी शादी से तो लड़की कुंवारी ही भली, कम से कम अपने घर में भरपेट खाना तो खाएगी बेचारी।
3: तो जैसे इंसान खाने के लिए ही आता है दुनिया में।
6: अरे खाने के लिए तो नहीं आता, मगर बिना खाए रहा भी तो नहीं जा सकता है? साल भर में एक शिवरात्रि का व्रत तो तुम कर नहीं पाते
3: है?
6: है? और लड़की को कहते हो कि सालों साल शिवरात्रि मना।
3: अरे पागल है तू?
6: क्यों
3: एक बार शादी तो हो जाए, फिर तो वही रहेगी घर की मालकिन है? अरे बुढ़िया ही तब इससे मांग के खाएगी। अभी बटर चटर कर रही है ना, फिर अपनी रोटी गिननेगी बुढ़िया।
6: रहने दो रहने दो, देखा ना कैसी भोंदू औलाद पैदा की है उसने।
3: अरे बड़े बड़े भोंदू भी ना जब एक बार औरत के पल्लू से बन जाते हैं तो समझदार हो जाते हैं। जैसे मैं हाँ अपना ही मामला देख लो ना तुम। अच्छा छोड़ो ये सब, तुम तो ये बताओ कि खुराक कितनी बतानी है।
6: अरे कितनी क्या बतानी है, जितना खाती है उतना बता दो।
3: अच्छा रिश्ता तोड़वाना है क्या तुझे? अरे पूरे खानदान को सांप सूंघ जाएगा जैसे ही वो सुनेंगे कि 9 रोटी और 1 कटोरा चावल खाती है तेरी लड़की।
6: अरे तो फिर क्या करें?
3: एक काम करते हैं।
6: हाँ।
3: चावल तो पूरा ही उड़ा देते हैं।
6: अरे
3: हाँ, और 1 रोटी भी कम कर देते हैं। इतने पर तो माने जाएंगे बोलो।
6: ठीक है
3: हाँ।
6: अब जैसा तुम ठीक समझो वैसा बोल दो।
3: चलो चलो बाहर चलो।
6: चलो
4: आइए श्रीमान, आइए आइए आइए आइए।
3: भाई साहब वो क्या है ना कि हमारी लड़की एक टाइम में लगभग 8 रोटी खाती है। जी पतली पतली पतली पतली है, मगर अगर चावल साथ में हो तो एक आध रोटी कम भी हो सकती।
4: चावल भी?
3: जी।
6: क्या कह रहे हैं भाई साहब, 8 रोटी?
3: जी।
0: अरे भाई साहब ये तो बहुत ही ज्यादा है,
3: हैं?
0: आज के महंगाई के जमाने में 8 रोटी? हाँ अपने मायके में हमने भी खाई है कभी 10-12 रोटियाँ। पर जब से हम ब्याह कर ससुराल आए हैं ना, अब तो आदत सी हो गई है। अरे 2-3 के बाद तो पेट ही हमारा बगावत कर देता
3: है। ठीक कहती बहन जी आप, बहुत ठीक। जब घर गृहस्थी का बोझ सर पर पड़ता है तो कहाँ होश रहता है रोटी सोटी का, फिर तो दूसरों को खिलाकर ही पेट भर जाता है। आपकी बहू भी एडजस्ट हो जाएगी धीरे धीरे।
0: नहीं नहीं भाई साहब, बात साफ हो जाए तो अच्छा है, है ना? नहीं तो आप कहेंगे कि भूखे मार डाला हमारी बेटी को। जितना तय हो जाएगा ना उससे पीछे हरगिज नहीं हटेंगे हम लोग, जमान के पक्के हैं। लेकिन
3: क्या क्या कहते हो जी, कुछ गुंजाइश हो तो तुम बता दो। सुन रही हो तुम? आखिर तुम माँ हो, तुमसे ज्यादा कौन समझता है अपनी बेटी को।
6: बहन जी 7 रोटी दे दीजिएगा। हाँ। देखो इससे कम तो नहीं, बेचारी भूखी मर जाएगी ना। हाँ कभी देखो चावल मिल जाए ना तो एक रोटी और कम कर सकती हैं आप। पर अरे नहीं नहीं बहन जी ये तो बहुत ज्यादा है। अब मुझे ही देखिए ना, दुगना वजन है आपकी बेटी से पर खुराक 4 रोटियों में ही सिमट गई है जैसे। अरे पुराना जमाना और था, सस्ताई हुआ करती थी तब। 1 रुपए किलो गेहूं मिलता था और 2 रुपए किलो चावल। मगर आज अरे सुनते हैं आबादी ऐसी ही बढ़ती रही ना तो बस अमीर लोग ही खाएंगे रोटी और चावल, और हम आप जैसे लोगों को गेहूं का भूसा और चावल की भूसी उबाल कर खानी पड़ेगी चटनी के साथ।
5: अच्छा अच्छा बहन जी ऐसा करिए, एक काम करिए, 6 रोटी अब फिक्स कर लेते हैं। देखो है ना, देखो 2 रोटी का डिस्काउंट भी ज्यादा नहीं होता है ना।
3: हाँ बहन जी
5: है ना।
3: हाँ जी हाँ, 8 में 2 का डिस्काउंट मतलब कितना है? 25%।
5: हाँ
3: 25%, इतना तो सेल में भी मिल जाता।
5: हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
0: अरे क्या बात करते हैं भाई साहब
3: जी,
0: 50% तक का डिस्काउंट उठाया है हम लोगों ने। अरे बार्गेनिंग करने वाला होना चाहिए, सब होता है।
3: पर बहन जी देखिए, हमने कोई बार्गेनिंग वाला भाव नहीं बताया है आपको, बहुत सोच समझ कर बताया है आपको हमने। ये तो जी हाँ,
0: देखिए देखिए भाई साहब, हम तो भाई 3-4 रोटी वाली लड़की ढूंढ रहे हैं।
3: क्या
0: इससे ऊपर की गुंजाइश नहीं है हमारी?
5: अरे
0: हाँ कमाऊ लड़की होती तो और ज्यादा पर भी कंसीडर कर लेते।
1: हाँ एडजस्ट कर लेंगे।
4: अबे चुप है।
2: अब देखिए यजमान, मुझे बीच में बोलना ही पड़ेगा। भाई देखिए आप लोग भी ऐसे कसम खाकर नहीं निकलते बेटा ब्याह में। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ बीच का रास्ता निकालना ही पड़ेगा। मतलब ये राधे राधे 4 और 6 के बीच में का, मतलब कि 5 का आंकड़ा फिकस कर लेते हैं। देखो अब कोई कुछ नहीं, नहीं शांत, मतलब ना आपकी और ना हमारी। क्यों यजमान?
0: अब पंडित जी अब आप इतनी रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं तो मैं 5 रोटी तक आने को तैयार हूँ।
2: जैसे
0: है ना, इससे आगे बिल्कुल नहीं, या तो हाँ या फिर ना। और हाँ अगर साथ में चावल भी हुआ तो फिर 1 रोटी कम हो जाएगी थाली में। अब आप सोच समझ के फैसला सुना दीजिए।
3: क्या कहती हो जी, क्या 5 रोटी में लड़की गुजर कर सकेगी? अब बात यस या नो की है, बार्गेनिंग की गुंजाइश अब खत्म।
5: अच्छा जी आप क्या कहते हो?
3: ठीक है।
5: हाँ ना।
3: हाँ हाँ
5: हाँ तो फिर ठीक है बहन जी, जैसी आपकी मर्जी, 5 रोटी पर रिश्ता पक्का समझो।
7: थैंक यू मम्मी, अब मेरा रिश्ता पक्का हो गया, अब मेरी शादी हो ही जाएगी।

0: रोटी की तय शर्तों के अनुसार बाकायदा एग्रीमेंट तैयार करके दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हो जाते हैं, जिससे बाद में किसी झंझट की गुंजाइश ना रहे। वो कहते हैं ना, ना सौ बका ना एक लिखा। इसलिए लिखा पढ़ी के साथ बात पक्की करना जरूरी समझा गया। यह एग्रीमेंट वर पुष्पेंद्र और कन्या कंचन के बीच हुआ, जिस पर गारंटर के रूप में उनके माता पिता और गवाह के रूप में पंडित जी ने हस्ताक्षर किए। लड़की ब्याह कर ससुराल आ गई। और अब सुनिए आगे की दास्तान।
1: सुनो जी, मेरा तो पेट ही नहीं भर रहा है यहाँ पर। भूख के मारे दिन भर चक्कर आते रहते हैं। 9-10 रोटी खाती थी मैं अपने मायके में, और यहाँ सिर्फ 5 रोटी, बिल्कुल आधी खुराक मिल रही है मुझे यहाँ पर।
2: मैं सब समझता हूँ, तू बिल्कुल चिंता मत कर। मेरे पास ढेरों हिट फॉर्मूले हैं, कल से बिल्कुल फुल डाइट मिलेगी तुझे।
1: जी, वो कैसे?
2: अरे तू आम का पेड़ गिन कर क्या करेगी, अब खुश?
0: पुष्पेंद्र की योजना के अनेक अंग थे। वह दोपहर के टिफिन के लिए 2 रोटी ज्यादा मांगने लगा, और जिसे धीरे से अपनी पत्नी कंचन को सरका देता। दुकान से आता तो जेब में किशमिश और काजू भर के लाता और कंचन की झोली में डाल देता। कभी कभी चोरी से समोसे और कचौड़ियां भी लेकर के आता, मगर बड़ी सावधानी से। पर उसकी माँ की सूंघने की शक्ति भी बहुत तेज थी। आखिर कब तक बचते वे? एक दिन की बात है।
3: बहू, ये तेरे मुंह में क्या लगा है? ऐसा लग रहा है जैसे
1: कुछ नहीं माँ जी, वो
3: अरे नहीं रे, अभी भी दिख रहा है, लगा है। लाई धरा, मैं साफ किए देती हूँ।
1: नहीं माँ जी, वो देखिए, पूछ लिया मैंने, अब तो नहीं दिख रहा ना।
3: क्या महक रहा है इसमें? कचौरी टाइप की महक आ रही है। सच सच बता बहू, देख एग्रीमेंट साइन किया है तूने?
1: माँ जी, कुछ नहीं।
3: हाँ, और तेरे माँ बाप ने गारंटी दी थी इसकी, बात अगर बिगड़ी तो फिर।
1: माँ जी नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या है ना माँ जी, कि ये अपने लिए कचौरी लाए थे, उसी में से बस थोड़ी सी मुझे चखा दी और बोले, झूठा खाने से ना पति पत्नी के बीच में प्यार बढ़ता है।
3: बहुत अच्छे, शादी के बाद हमारा सबन कुमार भी अब सही बात है। बिल्कुल, जवान बीबी के आगे माँ लगती कहाँ है, मगर मैं नहीं छोड़ने वाली, बुलाती हूँ तेरे बाप को अभी।
1: माफ कर दीजिए माँ जी, एक काम करिएगा, शाम को एक रोटी कम दे दीजिएगा ना मुझे, वो एग्रीमेंट वाला ही एवरेज बैठ जाएगा ना फिर।
3: अच्छा, और बदले में तू फिर 2 कचौरियां और नीचे उतार लेगी?
1: नहीं नहीं माँ जी,
3: ये तो वही बात हुई कि रोजा छुड़ाने चले थे, नमाज गले पड़े।
1: माँ जी,
3: है? कहां मैं रोटियों की किफायत किए जा रही हूँ, और कहां ये समोसे और कचौरियां गटकी जा रही हैं। हे भगवान, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरे को क्या दोष दूं मैं।
1: माँ जी,
3: अजी सुनते हो?
4: क्या है?
3: इस शादी में बड़ा ही धोखा हुआ है हमारे साथ
4: है?
3: मटके जैसा पेट है बहू का। काम निकालने के लिए एग्रीमेंट तो साइन कर लिया उन लोगों ने, मगर अब इसे रद्दी का कागज समझकर उड़ा रहे हैं।
4: तेरा मतलब क्या है, खुलकर कुछ बोल तो सही। अरे रोटियां तो तू ही गिनकर देती है ना उसे, अब मटके जैसा पेट हो या हंडे जैसा, क्या फर्क पड़ता है? माल तो उसमें उतना ही पहुँचता है ना जितना तू डालती है।
3: कान को दाएं से पकड़ो चाहे बाएं से, कान तो पकड़ा रहा है ना, रोटियां ना सही, कचौरियां ही सही। हाँ, आखिर खर्च तो पैसा ही होता है। ये तुम्हारा श्रवण कुमार आजकल छुप छुप कर कचौरियां खिलाता है, समोसे खिलाता है अपनी चम्मक छल्लो को। हाँ, ये तो और ही मजे हो गए, सूखी रोटियां छोड़कर तरमाल गटकी जा रही है। माँ के लिए कभी मूंगफली नहीं लाया पप्पू, और कभी के लिए कचौरियाँ समोसे।
4: अरे भगवान, मामला बड़ा गंभीर है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस बनता है इसमें। एक काम करता हूँ, आज ही एक लीगल नोटिस दिए देता हूँ बहू को एंड कॉपी टू हर पेरेंट्स।
3: ये तुम्हारी कानूनी बोली समझ में नहीं आती जी मुझे, मेरी बोली में बताओ कि तुम करोगे क्या।
4: अरे भगवान, केस करूंगा केस बहू पर और उसके मायके वालों पर, हर जाना वसूलूंगा हर जाना। अरे मजाक थोड़े ही है, कागज पर किए गए समझौते से पीछे हटना, अभी फोन करता हूँ वकील साहब को। हाँ। हेलो, वकील साहब कैसे हैं? हाँ मैं भी ठीक हूँ। अरे कुछ नहीं जनाब, वो पुष्पेंद्र की शादी का एग्रीमेंट तो आपको याद है ना? हैं? अरे आप ही ने तो ड्राफ्टिंग की थी उसकी। अरे अब उसका वायलेशन शुरू हो चुका है, वायलेशन। हाँ, बहु रोटियां तो एग्रीमेंट के हिसाब से ही खाती है पर ऊपर से कचौरी डकार लेती है। अब कचौरियां तो एग्रीमेंट में लिखी नहीं है। हैं? क्या कहा आपने, कचौरियां मिलती कहां से? अरे अपना वो पप्पू चप्पू चला रहा है। अरे अपनी लालायक औलाद देती उसे लाला कर। क्या कहा आपने, हैं? केस नहीं बनता? अरे वकील साहब मगर क्यों लो।
3: क्या बोल रहे थे वकील साहब?
4: अरे भगवान, कह रहे थे कॉन्ट्रैक्ट की पार्टियां तो हमारे बहू बेटे ही हैं, हम कौन लगते हैं इसमें। अरे जब वे ही मिलकर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहें तो गारंटर कुछ नहीं कर सकते। हमारे बेटे की मर्जी के बगैर कचौड़िया बहू खाती तब जाकर कोई केस बनता।
3: मतलब हम यू ही अपना घर लूटते देखते रहे और कुछ ना बोले?
4: बिल्कुल कुछ ना बोलो भगवान, कुछ ना बोलो। ऐसा नहीं है, अपने लड़के को तो समझा सकते हैं ना हम, मगर उसके बगैर हम बिल्कुल लाचार हैं, बिल्कुल लाचार।
3: क्यों रे पप्पू, जब कचौरियां ही खिलानी थी चुपके चुपके तो एग्रीमेंट करने का क्या मतलब? अरे उसी वक्त बता दिया होता तो कम से कम इतनी बार्गेनिंग तो ना करनी पड़ती हमें। कह देते भाई ब्लैंक चेक है हमारा, जो चाहे रकम भर लो। मियां बीबी मिट्ठू बन गए और हम हो गए दुश्मन। वाह रे जमाना, जिसके लिए ये सब कर रहे थे वही जब हमारा नहीं रहा तो।
4: देख लो इसे।
2: ऐसा नहीं है माँ, बहू भी तो अपनी ही है ना, भर पेट खाना नहीं दोगी उसे तो बीमार नहीं पड़ जाएगी वो, फिर दवा दारू का खर्चा खाने से कितना ज्यादा पड़ेगा, ये गणित भी तो सोचो माँ। काम छोड़कर बिस्तर पर पड़ जाएगी सो अलग।
4: अरे वाह बेटा वाह, आज जाके समझ में आया कि तू कितना बुद्धिमान है, हिसाब किताब में जीरो।
3: देख ली बाप बेटे की होशियारी, बड़े कानूनदा बनते हैं दोनों के दोनों। अरे एग्रीमेंट में कहां लिखा है कि हम दवा दारू भी कराएंगे उसकी और काम छुड़ाकर आराम करवाएंगे उसे?
2: तो यही कहां लिखा है कि उसकी दवा दारू नहीं कराएंगे और काम कराएंगे उससे। कल को वो काम छोड़कर बैठना चाहे तो तुम कुछ नहीं कर सकती, साफ कह देगी वो। रोटियां गिनकर देने की बात हुई है एग्रीमेंट में, पर घर का काम करने की कोई चर्चा नहीं है इसमें। फिर तुम करती रहना सुबह से शाम तक, रसोई चौका झाड़ू बुहारू। काम वाली लगाओगी तो वो भी रोटियां खाएगी और तनख्वाह भी लेगी, समझी? उससे सस्ती तो बहू है जो केवल रोटियों पर 2400 घंटे खटने को तैयार है। बात को समझो मेरी माँ।
4: अबे उल्लू के पट्टे, तू मेरा बेटा है कि अपनी बीवी का वकील है? अरे श्रवण कुमार समझते थे हम तुझे श्रवण कुमार, मगर तू तो शादी होते ही औरंगजेब बन गया।
2: अरे मैं अभी भी हूँ आपका श्रवण कुमार, अब बोल सही रहा हूँ बापू, अब तुम्हारे पक्ष की बात नहीं है तो तुम्हें गलत लग रही है।
3: सुनो जी सुनो, एक काम कर लो जी, अभी बुलाओ इसकी महरिया को यहाँ, आमने सामने बात हो जाए।
4: बुलाओ बुलाओ।
3: ये छुप छुप कर गले तर करना मुझे नहीं सुहाता बिल्कुल।
2: माँ बुला लो।
5: जी माँ जी, मुझे बुलाया आपने?
3: हाँ बहू, बोल इस मामले में क्या चाहती है तू?
5: किस मामले में?
3: इसी मामले में, साफ बोलना और साफ करना, ये ढका छुपा कुछ नहीं चाहिए इस घर में मुझे। ये नहीं कि बाकी घर वाले सूखी रोटियां खाएं और तू समोसे कचौरियां उतारे।
5: माँ जी अब मैं क्या बोलूं, मेरे पति ही मेरे सब कुछ है, ये मुझे जैसा रखना चाहेंगे मैं तैयार हूँ।
6: अरे वाह वाह कंचन, वेरी गुड, 50 रोटियां कुर्बान।
3: बड़ी होशियार है तू तो, सीधे कमजोर नस पे हाथ रखती है। मालूम ही है ना कि ये जोरू का गुलाम तेरी मुट्ठी में है, तभी तो ये मेरे कब्जे में होता ना तब ऐसे ना बोलती थी।
6: माँ उसे क्यों जल्लीकट्टी सुना रही हो? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बेटे को कितनी समर्पित अर्धांगिनी मिली है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो दासी चाहिए ना, और वो भी आधा पेट खाकर बस खटती रहे चूल्हे चौके में लगी रहे।
4: क्या बकता बे?
3: देखो जी, देख लो जिसके मुंह में जबान डालकर बोलना सिखाया हमने, अब वही मुझसे बटर पटर किए जा रहा है। वक्त बदल गया है हमारा, अब तो चिड़िया उड़ना सीख गई, अब नहीं है माँ के परों की जरूरत इसे।
4: ठीक कहती हो भगवान, बिल्कुल ठीक कह रही हो। जब चिड़िया के बच्चे उड़ना सीख जाते हैं तो चिड़िया लात मार कर घोंसले से बाहर भी फेंक देती उन्हें, ये नहीं कि।
2: ठीक है बापू, समझ गया मैं, समझ गया तुम्हारा इशारा। संभालो अपना राजपाट, हम अपना घोंसला खुद बना लेंगे, पर उसका साथ नहीं छोड़ेंगे जिसका साथ निभाने के लिए सात वचन दिया है हमने। चलो कंचन
5: जी,
2: अब गैर हुआ ये देश, चलो।
3: पप्पू पप्पू
4: पप्पू, अरे कंचन पप्पू बेटा, अरे रुक जाओ।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हास्य नाटिका बेटी का रिश्ता, प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद। आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
7: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञान वर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद। मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप शर्मा और आज हम अपने कार्यक्रम सुनो कहानी में आपको सुना रहे हैं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी खून सफेद।

चैत का महीना था, लेकिन वे खलिहान जहां अनाज की ढेरियां लगी रहती थी पशुओं के शरण स्थल बने हुए थे। जहां घरों से फाग और बसंत की आलाप सुनाई पड़ती वहां आज भाग्य का रोना था। सारा चौमासा बीत गया, पानी की एक बूंद तक न गिरी। जेठ में एक बार मूसलाधार वृष्टि हुई थी, किसान फूले न समाए, खरीफ की फसल बो दी, लेकिन इंद्रदेव ने अपना सर्वस्व शायद एक बार में ही लुटा दिया था। पौधे उगे, बढ़े और सूख गए। गोचर भूमि में घास जमी, बादल आते, घटाएं उमड़ती, ऐसा मालूम होता कि जल थल एक हो जाएगा, परंतु वे आशा की नहीं दुख की घटाएं थी। किसानों ने बहुतेरे जप तप किए, ईंट और पत्थर देवी देवताओं के नाम से पूजे, बलिदान दिए, पानी की अभिलाषा में रक्त के पनाले बह गए, लेकिन इंद्रदेव किसी तरह न पसीजे। न खेतों में पौधे थे, न गोचरों में घास, न तालाबों में पानी। बड़ी मुसीबत का सामना था। जिधर देखिए धूल ही धूल उड़ रही थी। दरिद्रता और क्षुधा पीड़ा के दारुण दृश्य दिखाई देते थे। लोगों ने पहले तो गहने और बर्तन गिरवी रखे और अंत में बेच डाले। फिर जानवरों की बारी आई, और जब जीविका का अन्य कोई सहारा न रहा तब जन्मभूमि पर जान देने वाले किसान बाल बच्चों को लेकर मजदूरी करने निकल पड़े। अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए कहीं कहीं सरकार की सहायता से काम खुल गया था। बहुतेरे वहीं जाकर जमे, जहां जिसको सुभीता हुआ वो उधर ही जा निकला। संध्या का समय था। जादू राय थका मांदा आकर बैठ गया और स्त्री से उदास होकर बोला, दरखास्त नामंजूर हो गई। ये कहते कहते वो आंगन में जमीन पर लेट गया। उसका मुख पीला पड़ रहा था और आंतें सिकुड़ी जा रही थी। आज दो दिन से उसने दाने की सूरत नहीं देखी। घर में जो कुछ विभूति थी, गहने, कपड़े, बर्तन, भांडे, सब पेट में समा गए। गांव का साहूकार भी पतिव्रता स्त्रियों की भांति आंखें चुराने लगा। केवल तकाबी यानी बीज बैल आदि के लिए सरकार द्वारा दिया जाने वाला ऋण उसी का सहारा था। उसी के लिए दरखास्त दी थी, लेकिन आज वो भी नामंजूर हो गई। आशा का झिलमिलाता हुआ दीपक बुझ गया। देवकी ने पति को करुण दृष्टि से देखा, उसकी आंखों में आंसू मड़ाए। पति दिन भर का थका मांदा घर आया है, उसे क्या खिलावे। लज्जा के मारे वो हाथ पैर धोने के लिए पानी भी न लाई। जब हाथ पैर धोकर आशा भरी चितवन से वो उसकी ओर देखेगा तो उसे वो क्या खाने को देगी। उसने आज कई दिन से दाने की सूरत नहीं देखी थी, लेकिन इस समय उसे जो दुख हुआ वो शुधा तुरता के कष्ट से कई गुना अधिक था। स्त्री घर की लक्ष्मी है, घर के प्राणियों को खिलाना पिलाना वो अपना कर्तव्य समझती है, और चाहिए उसका अन्याय ही क्यों ना हो, लेकिन अपनी दीनहीन दशा पर जो मानसिक वेदना उसे होती है वो पुरुषों को नहीं हो सकती। अचानक उसका बच्चा साधु नींद से चौंका और मिठाई के लालच में आकर वो बाप से लिपट गया। इस बच्चे ने आज प्रातः काल चने की रोटी का एक टुकड़ा खाया था और तब से कई बार उठा और कई बार रोते रोते सो गया। 4 वर्ष का नादान बच्चा, उसे वर्षा और मिठाइयों में कोई संबंध दिखाई नहीं देता था। जादू राय ने उसे गोद में उठा लिया, उसकी ओर दुख भरी दृष्टि से देखा, गर्दन झुक गई और हृदय पीड़ा आंखों में न समा सकी। दूसरे दिन ये परिवार भी घर से बाहर निकला। जिस तरह पुरुषों के चित्त से अभिमान और स्त्री की आंख से लज्जा नहीं निकलती, उसी तरह अपनी मेहनत से रोटी कमाने वाला किसान भी मजदूरी की खोज में घर से बाहर नहीं निकलता। लेकिन हाय पापी पेट, तू सब कुछ करा सकता है। मान और अभिमान, ग्लानी और लज्जा, ये सब चमकते हुए तारे तेरी काली घटाओं में छिप जाते हैं। प्रभात का समय था। वे दोनों विपत्ति के सताए घर से निकले। जादू राय ने लड़के को पीठ पर लिया, देवकी ने फटे पुराने कपड़ों की वो गठरी सिर पर रखी जिस पर विपत्ति को भी तरस आता। दोनों की आंखें आंसुओं से भरी थी। देवकी रोती थी, जादू राय चुप था। गांव के 2-4 आदमियों से रास्ते में भेंट भी हुई, किंतु किसी ने इतना भी न पूछा कि कहां जाते हो। किसी के हृदय में सहानुभूति का वास न था। जब ये लोग लालगंज पहुंचे उस समय सूर्य ठीक सर पर था। देखा तो मीलों तक आदमी ही आदमी दिखाई देते थे, लेकिन हर चेहरे पर दीनता और दुख के चिन्ह झलक रहे थे।
वैसाख की जलती हुई धूप थी, आग के झोंके जोर जोर से हरहराते हुए चल रहे थे। ऐसे समय में हड्डियों के अनगिनत ढांचे, जिनके शरीर पर किसी तरह का कोई कपड़ा न था, मिट्टी खोदने में लगे थे। मानो वो मरघट भूमि थी जहां मुर्दे अपने हाथों अपनी कब्रें खोद रहे थे। बूढ़े और जवान, मर्द और बच्चे, सब के सब ऐसे निराश और विवश होकर अपने काम में लगे हुए थे मानो मृत्यु और भूख उसके सामने बैठी घूर रही है। इस आफत में न कोई किसी का मित्र था और न हेतु। दया, सहृदयता और प्रेम, ये सब मानवीय भाव हैं जिनका कर्ता मनुष्य है। प्रकृति ने हमको केवल एक भाव प्रदान किया है और वो स्वार्थ है। मानवीय भाव बहुधा कपटी मित्रों की भांति हमारा साथ छोड़ देते हैं, पर ये ईश्वर प्रदत्त गुण हमारा कभी गला नहीं छोड़ता। 8 दिन बीत गए थे। संध्या समय काम समाप्त हो चुका था। डेरे से कुछ दूर आम का एक बाग था। वहीं एक पेड़ के नीचे जादू राय और देवकी बैठी हुई थी। दोनों ऐसे क्रश हो रहे थे कि उनकी सूरत नहीं पहचानी जाती थी। अब वो स्वाधीन कृषक नहीं रहे, समय के हेर फेर से आज दोनों मजदूर बने बैठे हैं। जादू राय ने बच्चे को जमीन पर सुला दिया। उसे कई दिन से बुखार आ रहा है, कमल सा चेहरा मुरझा गया। देवकी ने धीरे से हिलाकर कहा, बेटा आंखें खोलो, देखो सांझ हो गई। साधु ने आंखें खोल दी, बुखार उतर गया था। वो बोला, क्या हम घर आ गए मां? घर की याद आ गई। देवकी की आंखें डबडब आ गईं। उसने कहा, नहीं बेटा, तुम अच्छे हो जाओगे तब घर चलेंगे। देखो, उठकर देखो, कितना अच्छा बाग है। साधु मां के हाथों के सहारे उठा और बोला, मां मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, मुझे क्या खाने को दोगी? देवकी के हृदय में चोट लगी, पर धीरज रखकर बोली, नहीं बेटा, तुम्हारे खाने को मेरे पास सब कुछ है। तुम्हारे दादा पानी लाते हैं तो मैं नरम नरम रोटियां अब भी बनाए देती हूं। साधु ने मां की गोद में सिर रख लिया और बोला, मां मैं ना होता तो तुम्हें इतना दुख तो ना होता। ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। ये वही बेसमझ बच्चा है जो 2 सप्ताह पहले मिठाइयों के लिए दुनिया सिर पर उठा लेता था। दुख और चिंता ने कैसा अनर्थ कर दिया है। ये विपत्ति का फल है। कितना दुखपूर्ण, कितना करुणाजनक व्यापार है। इसी बीच कई आदमी लालटेन लिए हुए वहां आए। फिर गाड़ियां आईं, उन पर डेरे और खेमे लदे हुए थे। दम के दम वहां खेमे गड़ गए। सारे बाग में चहल पहल नजर आने लगी। देवकी रोटियां सेक रही थी। साधो धीरे धीरे उठा और आश्चर्य से देखता हुआ एक डेरे के नजदीक जाकर खड़ा हो गया। पादरी मोहनदास खेमे से बाहर निकले तो साधु उन्हें खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसकी सूरत पर उन्हें तरस आ गया। प्रेम की नदी उमड़ आई। बच्चे को गोद में लेकर खेमे में गद्देदार कोच पर बिठा दिया और तब उसे बिस्कुट और केले खाने को दिए। लड़के ने अपनी जिंदगी में इन स्वादिष्ट चीजों को कभी ना देखा था। बुखार की बेचैन कर देने वाली भूख अलग मार रही थी। उसने खूब मन भर खाया और कृतज्ञ नेत्रों से देखते हुए पादरी साहब के पास जाकर बोला, तुम हमको रोज ऐसी चीजें खिलाओगे? पादरी इस भोलेपन पर मुस्कुरा कर बोले, मेरे पास इससे भी अच्छी अच्छी चीजें हैं। इस पर साधु राय ने कहा, अब मैं रोज तुम्हारे पास आऊंगा। मां के पास ऐसी अच्छी चीजें कहां, वो तो मुझे चने की रोटियां खिलाती है। देवकी ने रोटियां बनाई और साधु को पुकारने लगी। साधु ने मां के पास आकर कहा, मुझे साहब ने अच्छी अच्छी चीजें खाने को दी हैं, वो बहुत अच्छे साहब हैं। देवकी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए नरम नरम रोटियां बनाई हैं, आओ तुम्हें खिलाऊं। साधु बोला, अब मैं ना खाऊंगा। साहब कहते थे कि मैं तुम्हें रोज अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगा, अब मैं उनके साथ रहा करूंगा। मां ने समझा लड़का हंसी कर रहा है, उसे छाती से लगाकर बोली, क्यों बेटा, हमको भूल जाओगे? देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूं। साधु बोला, तुम तो मुझे रोज चने की रोटियां दिया करती हो, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है। साहब मुझे केले और आम खिलाएंगे। ये कहकर वो फिर से खेमे की ओर भागा और रात को वहीं सो रहा। पादरी मोहनदास का पड़ाव वहां 3 दिन रहा। साधु दिन भर उन्हीं के पास रहता। साहब ने उसे मीठी दवाइयां दी, उसका बुखार भी जाता रहा। वे भोले भाले किसान ये देखकर साहब को आशीर्वाद देने लगे। लड़का भला चंगा हो गया और आराम से हो गया। साहब को परमात्मा सुखी रखे। उन्होंने
बच्चे की जान रख ली। चौथे दिन रात को ही वहां से पादरी साहब ने कूच किया। सुबह को जब देवकी उठी तो साधु का वहां पता न था। उसने समझा कहीं टपके आम ढूंढने गया होगा, लेकिन थोड़ी देर देखकर उसने जादू राय से कहा कि लल्लू यहां नहीं है। उसने भी यही कहा कि शायद कहीं टपके ढूंढता होगा। लेकिन जब सूरज निकल आया और काम पर चलने का वक्त हुआ, तब जादू राय को कुछ संशय हुआ। उसने कहा, तुम यहीं बैठी रहना, मैं उसे ले आता हूं। जादू राय ने आसपास के सब बागों को छान लिया और अंत में जब 10 बज गए तो निराश लौट आया। साधु ना मिला, ये देखकर देवी दाढ़े मारकर रोने लगी। फिर दोनों अपने लाल की तलाश में निकले। अनेक विचार चित्त में आने जाने लगे। देवकी को पूरा विश्वास था कि साहब ने उस पर कोई मंत्र डालकर वश में कर लिया, लेकिन जादू को इस कल्पना के मान लेने में कुछ संदेह था। बच्चा इतनी दूर अनजान रास्ते पर अकेले नहीं जा सकता। फिर दोनों गाड़ी के पहियों और घोड़े की टापों के निशान देखते हुए चले जाते थे, यहां तक कि वे एक सड़क पर आ पहुंचे। वहां गाड़ियों के बहुत सारे निशान थे, उस विशेष लीक की पहचान नहीं हो सकती थी। घोड़े के टाप भी झाड़ी के एक तरफ जाकर गायब हो गए। आशा का सहारा टूट गया। दोपहर हो गई थी। दोनों धूप के मारे बेचैन और निराशा से पागल हो रहे थे। वहीं एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। देवकी विलाप करने लगी। जादू राय ने समझाना शुरू किया। अब जब जरा धूप की तेजी कम हुई तो फिर से दोनों आगे चले, लेकिन अब आशा की जगह निराशा थी। घोड़े की टापों के साथ उम्मीद का धुंधला निशान गायब हो गया था। शाम हो गई। इधर उधर गायों बैलों के झुंड निर्जीव से दिखाई पड़ते थे। ये दोनों दुखिया हिम्मत हार कर पेड़ के नीचे टिके रहे। उसी वृक्ष पर मैना का एक जोड़ा बसेरा लिए था। उनका नन्हा सा शावक आज ही एक शिकारी के चंगुल में फंस गया था। दोनों दिन भर उसे खोजते फिरे और इस समय वो भी निराश होकर बैठे थे। देवकी और जादू को अभी तक आशा की झलक दिखाई नहीं देती थी, इसलिए वो बेचैन थे। 3 दिन तक ये दोनों खोए हुए लाल की तलाश करते रहे। दाने से भेंट नहीं, प्यास से बेचैन होते तो 2-4 घूंट पानी गले के नीचे उतार लेते। आशा की जगह निराशा का सहारा था। दुख और करुणा के सिवाय और कोई वस्तु नहीं। किसी बच्चे के पैरों के निशान देखते तो उनके दिलों में आशा और भय की लहरें उठने लगती, लेकिन प्रत्येक पग उन्हें अभीष्ट स्थान से दूर लिया जाता था। इस घटना को हुए 14 वर्ष बीत गए। इन 14 वर्षों में सारी काया पलट गई। चारों ओर राम राज्य दिखाई देने लगा। इंद्रदेव ने कभी उस तरह अपनी निर्दयता ना दिखाई और ना जमीन नहीं। उमड़ी हुई नदियों की तरह अनाज से ढेकियां भर चली। उजड़े हुए गांव फिर बस गए। मजदूर किसान बन बैठे और किसान जायदाद की तलाश में नजरें दौड़ाने लगे। वही चैत के दिन थे। खलिहानों में अनाज के पहाड़ खड़े थे। भाट और भिखमंगे किसानों की बढ़ती के तराने गा रहे थे। सुनारों के दरवाजे पर सारे दिन और आधी रात तक ग्राहकों का जमघट बना रहता था। दर्जी को सिर उठाने की फुर्सत न थी। इधर उधर दरवाजों पर घोड़े हिनहिना रहे थे। देवी के पुजारियों को अजीर्ण हो रहा था। जादू राय के दिन भी फिरे। उसके घर पर छप्पर की जगह खपरैल हो गया। दरवाजे पर अच्छे बैलों की जोड़ी बंधी हुई थी। अब वो अपनी बहली पर सवार होकर बाजार जाया करता। उसका बदन अब उतना सुडौल नहीं था। पेट पर इस सुदशा का विशेष प्रभाव पड़ा था और बाल भी सफेद हो चले थे। देवकी की गिनती अब गांव की बूढ़ी औरतों में होने लगी। व्यवहारिक बातों में उसकी बहुत पूछ परख हुआ करती थी। जब वो किसी पड़ोसन के घर जाती तो वहां की बहुएं भय के मारे थरथराने लगती। उसके कटु वाक्य तीव्र आलोचना की सारे गांव में धाक बंधी थी। महीन कपड़े अब उसे अच्छे नहीं लगते, लेकिन गहनों के बारे में वो इतनी उदासीन नहीं थी। उसके जीवन का दूसरा भाग इससे कम उज्जवल नहीं था। उनकी 2 संतानें थी। लड़का माधो सिंह अब खेतीबाड़ी के काम में बाप की मदद करता था और लड़की का नाम शिवगौरी था। वो भी माँ को चक्की पीसने में सहायता करती और खूब गाती थी। बर्तन धोना उसे पसंद नहीं, लेकिन चौका लगाने में वो निपुण है। गुड़ियों के ब्याह करने से उसका जी कभी नहीं भरता। आए दिन गुड़ियों के विवाह होते। हाँ, इनमें किफायत का पूरा ध्यान रहता था। खोए हुए साधु की याद अब तक बाकी थी। उसकी चर्चा नित्य हुआ करती और कभी बिना रुलाए नहीं रहती। देवकी कभी कभी सारे दिन उस लाडले बेटे की सुध में
अधीर रहा करती। सांझ हो गई। बैल दिन भर के थके मांदे सिर झुकाए चले आते थे। पुजारी ने ठाकुर द्वारे में घंटा बजाना शुरू किया। आजकल फसल के दिन थे, रोज पूजा होती थी। जादू राय खाट पर बैठे नारियल पी रहे थे। शिवगौरी रास्ते में खड़ी उन बैलों को कोस रही थी जो उसके भूमिस्थ विशाल भवन का निरादर करके उसे रौनते चले जाते थे। घड़ियाल और घंटे की आवाज सुनते ही जादू राय भगवान का चरणामृत लेने के लिए उठे ही थे कि अकस्मात एक नव युवक दिखाई पड़ा जो भौंकते हुए कुत्तों को दुत्कारता हुआ बाइसिकल को आगे बढ़ाता हुआ चला जा रहा था। उसने उनके चरणों पर अपना सर रख दिया। जादू राय ने गौर से देखा और तब दोनों एक दूसरे से लिपट गए। माधो भौचक बाइसिकल को देखने लगा। शिवगौरी रोती हुई घर में भागी और देवकी से बोली, दादा को साहब ने पकड़ लिया है। देवकी घबराई हुई बाहर आई, साधु से देखते ही उसके पैरों पर गिर गया। देवकी लड़के को छाती से लगाकर रोने लगी। गांव में मर्द औरतें और बच्चे सब के सब जमा हो गए। मेला सा लग गया। साधु ने अपने माता पिता से कहा कि मुझ अभागे से जो कुछ अपराध हुआ हो उसे क्षमा कीजिए। मैंने अपनी नादानी में खुद बहुत कष्ट उठाए और आप लोगों को भी दुख दिया, लेकिन अब मुझे अपनी गोद में लीजिए। देवकी ने रोकर कहा, जब तुम हमें छोड़कर भागे थे तो हम लोग 3 दिन तक बेदाना पानी के ढूंढते रहे, पर जब निराश हो गए तब अपने भाग्य को रोकर बैठे रहे। तब से आज तक कोई ऐसा दिन न गया होगा जब तुम्हारी सुध न आई हो। रोते रोते एक युग बीत गया और अब तुमने खबर ली है। बताओ बेटा, उस दिन तुम भागे कैसे और कहां जाकर रहे? साधु ने लज्जित होकर उत्तर दिया कि माता जी, अब अपना हाल क्या कहूं। मैं पहर रात रहे आपके पास से उठकर भागा। पादरी साहब के पड़ाव का पता शाम को ही पूछ लिया था। बस पूछता हुआ दोपहर को उनके पास पहुंच गया। साहब ने पहले मुझे समझाया कि अपने घर लौट जाओ, लेकिन जब मैं किसी तरह राजी नहीं हुआ तो उन्होंने मुझे पूना भेज दिया। मेरी तरह वहां सैकड़ों लड़के थे। वहां बिस्कुट और नारंगियों का भला क्या जिक्र। जब मुझे आप लोगों की याद आती तो मैं अक्सर रोया करता, मगर बचपन की उम्र थी। धीरे धीरे उन्हीं लोगों में हिल मिल गया। हाँ, जब से कुछ होश हुआ और अपना पराया समझने लगा हूं, तब से अपनी नादानी पर हाथ मलता रहा हूं। रात दिन आप लोगों की रट लगी थी। आज आप लोगों के आशीर्वाद से ये शुभ दिन देखने को मिला। दूसरों में बहुत दिन कटे, बहुत दिनों तक अनाथ रहा। अब मुझे अपनी सेवा में रखिए, मुझे अपनी गोद में लीजिए। मैं प्रेम का भूखा हूं। बरसों से मुझे जो सौभाग्य नहीं मिला वो अब दीजिए। गांव के बहुत से बूढ़े जमा थे। उनमें से जगत सिंह बोले, तो क्यों बेटा, तुम इतने दिनों तक पादरियों के साथ रहे? उन्होंने तुमको भी पादरी बना दिया होगा? साधु ने सिर झुकाकर कहा, जी हां, ये तो उनका दस्तूर है। जगत सिंह ने जादू राय की तरफ देखकर कहा, ये बहुत कठिन बात है। साधु बोला, बिरादरी मुझे जो प्रायश्चित बताएगी मैं करूंगा। मुझसे जो कुछ बिरादरी का अपराध हुआ है नादानी से हुआ है, लेकिन मैं उसका दंड भोगने के लिए तैयार हूं। जगत सिंह ने फिर जादू राय की तरफ कनखियों से देखा और गंभीरता से बोले, हिंदू धर्म में कभी ऐसा हुआ है? यूं तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अपने घर में रख ले, तुम उनके लड़के हो, मगर बिरादरी कभी इस काम में शरीक न होगी। बोलो जादू राय, क्या कहते हो? कुछ तुम्हारे मन की भी तो सुने। जादू राय बड़ी दुविधा में था। एक ओर तो अपने प्यारे बेटे की प्रीति थी, दूसरी ओर बिरादरी का भय मार डालता था। जिस लड़के के लिए रोते रोते आंखें फूट गईं, आंखों में आंसू भरे हुए कहता है कि पिताजी अपनी गोद में ले लो, और मैं पत्थर की तरह अचल खड़ा हूं, शोक। इन निर्दयी भाइयों को किस तरह समझाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन मां की ममता उमड़ आई, देवकी से रहा न गया। उसने अधीर होकर कहा, मैं अपने लाल को अपने घर में रखूंगी और कलेजे से लगाऊंगी। इतने दिनों के बाद मैंने उसे पाया है, अब उसे नहीं छोड़ सकती। जगत सिंह रुष्ट होकर बोले, चाहे बिरादरी ही छूट क्यों ना जाए। देवकी ने भी गरम होकर जवाब दिया, हां, चाहे बिरादरी ही छूट जाए। लड़के बच्चों के लिए ही तो आदमी आड़ पकड़ता है, और जब लड़का ही ना रहा तो भला बिरादरी किस काम आएगी। इस पर कई ठाकुर लाल लाल आंखें निकालकर बोले, ठाकुराइन, बिरादरी की तो तुम खूब मर्यादा करती हो, लेकिन लड़का चाहे किस रास्ते पर जाए और बिरादरी चूं तक ना करे। अरे ऐसी बिरादरी कहीं और होगी। हम साफ साफ कह देते हैं कि अगर ये लड़का तुम्हारे घर में रहा तो बिरादरी भी बता देगी कि वो क्या कर सकती है।
जगत सिंह कभी कभी जादू राय से रुपए उधार लिया करते थे। मधुर स्वर से बोले, भाभी अरे बिरादरी थोड़ी कहती है कि तुम लड़के को घर से निकाल दो। लड़का इतने दिनों के बाद घर आया है, हमारे सिर आंखों पर रहे, पर जरा खाने पीने और छुआ छूत का बचाव रखना चाहिए। बोलो जादू भाई, अब बिरादरी को कहां तक दबाना चाहते हो? जादू राय ने साधु की तरफ करुणा भरे नेत्रों से देखकर बोला, बेटा जहां तुमने हमारे साथ इतना सुलूक किया है वहां जगत भाई की इतनी कही और मान लो। साधु ने कुछ तीक्ष्ण शब्दों में कहा, क्या मान लो? यही कि अपनों में गैर बनकर रहूं, अपमान सहूं, मिट्टी का घड़ा भी मेरे छूने से अशुद्ध हो जाए? ना, ये मेरे किए न होगा, मैं इतना निर्लज्ज नहीं हूं। जादू राय को पुत्र की यह कठोरता अप्रिय मालूम हुई। वो चाहते थे कि इस वक्त बिरादरी के लोग जमा हैं, उनके सामने किसी तरह समझौता हो जाए, फिर कौन देखता है कि हम उसे किस तरह रखते हैं। चिढ़कर बोले, इतनी बात तो तुम्हें माननी होगी। साधु इस रहस्य को न समझ सका। बाप की इस बात में उसे निष्ठुरता की झलक दिखाई पड़ी। वो बोला, मैं आपका लड़का हूं, आपके लड़के की तरह रहूंगा। आपके प्रेम और भक्ति की प्रेरणा मुझे यहां तक लाई है, मैं अपने घर में रहने आया हूं, और अगर ये मेरा घर नहीं है तो मेरे लिए इसके सिवा और कोई उपाय नहीं कि जितनी जल्दी हो सके मैं यहां से भाग जाऊं। जिनका खून सफेद है उनके बीच में रहना व्यर्थ है। देवकी ने रोकर कहा, लल्लू मैं अब तुम्हें नहीं जाने दूंगी। साधु की आंखें भर आईं और मुस्कुराकर बोला, मैं तो तेरी थाली में खाऊंगा। देवकी ने उसे ममता और प्रेम की दृष्टि से देखकर बोला, मैंने तो तुझे छाती से दूध पिलाया है, तू मेरी थाली में खाएगा तो क्या? मेरा बेटा ही तो है, कोई और तो ना हो गया? साधु इन बातों को सुनकर मतवाला हो गया। इनमें कितना स्नेह, कितना अपनापन था। बोला, मां आया तो इसी इरादे से था कि अब कहीं नहीं जाऊंगा, लेकिन बिरादरी ने मेरे कारण यदि तुम्हें जाति च्युत कर दिया तो मुझसे न सहा जाएगा, मुझसे इन गंवारों का कोरा अभिमान न देखा जाएगा, इसलिए इस वक्त मुझे जाने दो। जब मुझे अवसर मिलेगा तुम्हें देख जाया करूंगा। तुम्हारा प्रेम मेरे चित्त से नहीं जा सकता, लेकिन यह संभव है कि मैं इस घर में रहूं और अलग खाना खाऊं, अलग बैठूं, इसके लिए मुझे क्षमा करना। देवकी घर से पानी लाई, साधु हाथ मुंह धोने लगा। शिव गौरी ने मां का इशारा पाया तो डरते डरते साधु के पास गई। माधो ने आदर पूर्वक दंडवत की। साधु ने पहले उन दोनों को आश्चर्य से देखा, फिर अपनी मां को मुस्कुराते देखकर समझ गया। दोनों लड़कों को छाती से लगा लिया और तीनों भाई बहन प्रेम से हंसने खेलने लगे। मां खड़ी ये दृश्य देखती थी और उमंग से फूली न समाती थी। जलपान करके साधु ने बाइसिकल संभाली और मां बाप के सामने सिर झुकाकर चल खड़ा हुआ। वहीं जहां से तंग होकर आया था, उसी क्षेत्र में जहां कोई अपना न था, देवकी फूट फूट कर रो रही थी और जादू राय आंखों में आंसू भरे, हृदय में एक ऐठन से अनुभव करते हुए सोच रहे थे कि हाय हाय मेरे लाल, तुम उससे अलग हुआ जाता है। ऐसा योग्य होनहार लड़का हाथ से निकला जाता है, और ये केवल इसलिए कि अब हमारा खून सफेद हो गया है।

0: सुनो कहानी के इस अंक में आपने मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी सुनी। अपने अगले अंक में फिर किसी ऐसी ही कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: ये दुनिया 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर, मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
4: ये मेरा इंडिया।
3: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।

0: आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है, जिन्होंने भारत माता को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराया। उनकी कुर्बानी हमेशा याद रहेगी। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत भारती।
2: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती, भारत भारती।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, हमारे देश में संगीत की एक समृद्ध परंपरा रही है और संगीत दायरों को नहीं मानता। इतना बड़ा हमारा देश, अलग अलग बोली भाषा के लोग, अलग जाति धर्म के लोग, अलग रीति रिवाज को मानने वाले लोग, अलग जाति धर्म, अलग बोली भाषा और अलग रीति रिवाजों से उत्पन्न कितनी ही स्वर लहरियां संगीत की अलग अलग शैलियों के रूप में आज विख्यात हैं। ऐसी ही एक संगीत शैली है अभंग। आज भारत भारती कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं महाराष्ट्र की इसी संगीत परंपरा की वानगी। और विशेष बात ये कि इसे प्रस्तुत करने वाली दो कलाकार चेन्नई से संबद्ध हैं। जी हाँ, कर्नाटक शैली में पारंगत रंजनी और गायत्री। इनके युगल स्वरों में आइए सुनते हैं अभंग गायन।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रंजनी और गायत्री का अभंग गायन। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। बहुत जल्द भारत भारती के एक और अंक के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, आप बने रहिएगा 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद के साथ। सुनते रहिए देश का चैनल, देश के लिए।
1: हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों के संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम भारत भारती। भारत भारती।

आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूँ रेखा भारद्वाज और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं सोनाली राठौर। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। जय हिंद।

0: इस समय आप जुड़े हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, अब हमारी दोपहर कालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। शाम के ठीक 5 बजे हैं, अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। आप सभी श्रोताओं का हम पुनः स्वागत करते हैं। आपके साथ मैं हूं आपकी रेडियो मित्र भगवती सक्सेना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 157 से वाचन। ऋषि हैं दीर्घतमा औचत्य, देवता हैं अश्विनी कुमार, छंद है जगति और त्रिष्टुप।
3: अबोध्यग्निर्जम उदेति सूर्यो, व्युषाश्चंद्रा महद्वो अर्चिषा, आयुक्षातामश्विना यातवे रथम, प्रासावीद्देवः सविता जगत पृथक। भूमि पर अग्निदेव चैतन्य हुए, सूर्यदेव उदित हो गए हैं, महान उषा देवी अपने तेज से लोगों को हर्षित करती हुई आ गई हैं। अश्विनी कुमारों ने यात्रा के लिए अपने अश्वों को रथ में जोड़ लिया है। सूर्यदेव ने सब प्राणियों को अपने पृथक पृथक कर्मों में प्रवृत्त कर दिया है। यद्युञ्जाथे वृषणमश्विना रथम घृतेन नो मधुना क्षत्र मुक्षतम, अस्माकं ब्रह्म प्रतनासु जिन्वतम वयम धना शूर साता भजे मही। हे अश्विनी कुमारो, आप अपने श्रेष्ठ रथ को जोड़कर हमारे पौरुष को घृत से पुष्ट करें, हमारी प्रजाओं में ज्ञान की वृद्धि करें। हम युद्ध में शत्रुओं को पराजित करके धन प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। अर्वांग त्रिचक्रो मधुवाहनो रथो जीराश्वो अश्विनोर यातु सुष्टुतः, त्रिवंधुरो मघवा विश्व सौभगः, शम्न आ वक्षद द्विपदे चतुष्पदे। हे अश्विनी कुमारो, आप रथ पर विराजित होकर यहाँ पधारें। तीन पहियों वाला और मधुर अमृत तुल्य पोषक तत्वों को धारण करने वाला शीघ्रगामी अश्वों से जुता हुआ प्रशंसनीय बैठने के तीन स्थानों वाला समस्त ऐश्वर्य और सौभाग्य से भरा हुआ आपका रथ मनुष्यों और पशुओं के लिए सुखदाई हो। आ न ऊर्जम वहतम अश्विना युवम मधुमत्या नह कषया मिमिक्षतम, प्रायुस्तारिष्टम नीरपांसी मृक्षतम सेधतम द्वेषो भवतम सचा भुवा। हे अश्विनी कुमारो, आप दोनों प्रचुर अन्न प्रदान करें, हमें मधु से परिपूर्ण पात्र प्रदान करें, हमें दीर्घायुष्य प्रदान करें, हमारे सभी विकारों को दूर करके तथा द्वेष भावना को मिटाकर सदैव हमारे सहायक बने। युवम ह गर्भम जगतीषु धत्थो युवम विश्वेषु भुवनेष्वन्तः युवमग्निं च वृषणावपश्च वनस्पतीन् रश्विना वैरयेथाम्। हे शक्तिशाली अश्विनी कुमारों, आप दोनों गौओं में अर्थात संपूर्ण विश्व में उत्पादक क्षमता स्थापित करने में सक्षम हैं। अग्नि, जल और वनस्पतियों को प्राणी मात्र के कल्याण के लिए आप ही प्रेरित करते हैं। युवम हस्थो भिषजा भेषजे भेरथो हस्थो रथ्या राथ्ये भी अथो ह क्षत्रमधि धत्थ उग्रायो वाम हविष्मान मनसा ददाश। हे अश्विनी कुमारो, आप दोनों श्रेष्ठ औषधियों से युक्त उत्तम वैद्य हैं, उत्तम रथ से युक्त श्रेष्ठ रथी हैं। हे पराक्रमी अश्विनी कुमारो, जो आपके प्रति श्रद्धा भावना से हविष्यान्न अर्पित करते हैं, उन्हें आप दोनों क्षात्र धर्म के निर्वाह के लिए उपयुक्त शौर्य प्रदान करते हैं।
2: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 157 से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
0: देश का चैनल देश के लिए आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम भक्ति संगीत।

श्रोताओं, जब हम भगवान की शरण में होते हैं तब भी हमें डर लगता है, जो कि बिल्कुल स्वाभाविक है। गीता में भी अर्जुन को विषाद हुआ था। डर तब आता है जब मन भविष्य को काबू में करना चाहता है, जबकि शरणागत होने का अर्थ है नियंत्रण छोड़ देना। दोनों के बीच की खींचतान ही डर है।

ईश्वर का नाम स्मरण करने से मन का सारा डर चला जाता है। हर सांस के साथ अपने मन में अपने इष्ट का नाम लें। श्वास और नाम जुड़ते ही मन वर्तमान में आ जाता है और डर हमेशा भविष्य में ही

श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, तू बस अपना काम पूरी ईमानदारी से कर, नतीजा मैं देख लूंगा। हर सुबह अगर ये बात हम अपने मन में दोहराएं कि आज का कर्म मेरा और कल की चिंता तेरी, तो अवश्य ही प्रभु सब संभाल लेंगे।

प्रभु के प्रति समर्पण एकदम से नहीं आता। हर दिन छोटा छोटा समर्पण यदि हम करें तो जीवन में वो स्थिति अवश्य ही आएगी कि जब हम पूर्ण रूप से उन्हें अपने आप को सौंप सकेंगे।

हे नाथ, मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ। मेरे मन का डर, मेरे भविष्य की चिंता सब आपके चरणों में रखता हूँ। मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं हर हाल में आपका नाम ना भूलूं। मेरा प्रेम आपसे दिन ब दिन बढ़ता जाए और मैं आपके भरोसे निश्चिंत जी सकूं।

हे नाथ, मैं सिर्फ आपको पुकार रहा हूँ और अब थक गया हूँ। मेरी थकान भी आप ले लो। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, जो आप कराओगे सो वही करूँगा। मुझे अपना बना लो, चाहे जैसे भी रखो।

भगवान श्री राम कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोही जबही, जन्म कोटि अघना सही तबही। अर्थात जिस क्षण से हम सच्चे मन से प्रभु के सामने जाते हैं, करोड़ों जन्मों के पाप उसी क्षण कट जाते हैं। आइए हम भी इस संध्या काल में प्रभु का भजन करें और अपने पापों को काटें।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज हम वतन का राग कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं समर्पित देशभक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पत्रकार और महान दृष्टा शिव प्रसाद गुप्त जी की।

0: आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।
1: ये वतन
2: चंद्र सूर्य चिरकाल रहे तेरे पावन आंगन में, अंधकार हटे ज्ञान मिले, मिलजुल कर हम गाएं तेरे यश की गाथा। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। अपनी मातृभूमि भारत माता के लिए इस तरह की मंगल कामनाएं रखते हुए आजीवन उसकी सेवा करने वाले समर्पित देशभक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पत्रकार और महान दृष्टा थे शिव प्रसाद गुप्त। उन्होंने काशी विद्यापीठ की स्थापना की, साथ ही उन्होंने आज नाम से एक राष्ट्रवादी दैनिक पत्र निकाला और बनारस में भारत माता मंदिर का निर्माण करवाया। शिव प्रसाद गुप्त का जन्म 28 जून सन 1883 को बनारस के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी का अध्ययन घर पर ही किया और स्नातक की परीक्षा इलाहाबाद से उत्तीर्ण की। इलाहाबाद में उन्हें आचार्य नरेंद्र देव और पंडित गोविंद वल्लभ पंत आदि का साथ मिला, जिससे उनके भीतर निर्भीकता, दृढ़ता और राष्ट्र चेतना जैसे गुण गहरे होते गए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की प्रेरणा से वो स्वाधीनता संग्राम में शामिल हुए। जब महात्मा गांधी से उनकी भेंट हुई तो वो गांधी जी से अत्यंत प्रभावित हुए और बहुत जल्द ही गांधी जी के बहुत निकटवर्ती लोगों में शामिल हो गए। उनकी राष्ट्र निष्ठा से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र रत्न कहना शुरू कर दिया और आगे चलकर ये संबोधन उनके साथ उपाधि की तरह जुड़ गया। लेकिन शिव प्रसाद गुप्त ने स्वयं को सदा ही भारत माता का आराधक ही कहा। बापू से उनकी पहली भेंट लंदन में हुई थी। उन दिनों बाबू शिव प्रसाद गुप्त ये जानने के लिए विदेश भ्रमण पर थे कि दुनिया के स्वतंत्र देश अपनी प्रभु सत्ता की रक्षा कैसे करते हैं, उनकी शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां किस प्रकार की हैं और पराधीन भारत उनसे कौन कौन सी बात सीख सकता है। उसी क्रम में यूरोप के साथ साथ वो अमेरिका और जापान भी गए और वहाँ सक्रिय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और क्रांतिकारियों से भेंट की। भारत लौटने के बाद उन्होंने अपने अनुभव को आधार बनाकर भारत के लोगों को एकजुट करने, उनकी दुर्बलताओं को दूर कर उनमें आत्मविश्वास पैदा करने का भरपूर प्रयास किया। सर्वहारा और विधवाओं की स्थिति में सुधार कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। छुआछूत की भावना को समाप्त करने के लिए उन्होंने सघन प्रयास किया। उसके साथ ही अंतर जाति विवाह के अभियानों को तन मन धन से प्रोत्साहित किया। दरअसल वो उन मूल कारणों पर काम करते रहे जो भारत की स्वतंत्रता के मार्ग में बाधक थे। दिन रात उनकी आंखों में भारत माता के उत्कर्ष का, भारत की विजय का स्वप्न तैरता था।

बाबू शिव प्रसाद गुप्त, पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव और डॉक्टर भगवान दास आदि से बहुत प्रभावित थे। गंगा के पश्चिमी तट पर उन्होंने 75,000 वर्ग फुट में निर्मित एक भव्य अट्टालिका खरीदी और गांधी जी ने उसका नाम सेवा उपवन रखा। सेवा उपवन में लगातार स्वाधीनता संग्राम हेतु विविध आयोजन हुआ करते थे। शिव प्रसाद गुप्त क्रांतिकारियों का सहयोग भी करते थे। अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण उन्होंने अनेक जेल यात्राएं भी की। देश के पहले गांधी आश्रम की स्थापना के समय भी उन्होंने भरपूर सहयोग दिया। महामना मदन मोहन मालवीय जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पर विचार कर रहे थे, उस समय भी इस विश्वविद्यालय की कल्पना को साकार करने में कदम कदम पर मालवीय जी को शिव प्रसाद गुप्त ने सहयोग किया। आगे चलकर बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने काशी विद्यापीठ की स्थापना की। गांधी जी ने इसकी आधारशिला रखी। 10 फरवरी सन 1921 को असहयोग आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागृत करना, छात्रों को स्वावलंबी बनाना, हिंदी भाषा का विकास करना और सहयोग तथा सेवा की भावना विकसित करना आदि। बहुत जल्द काशी विद्यापीठ राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बन गई। विद्यापीठ के अनेक युवकों ने शिक्षा के साथ साथ स्वाधीनता संघर्ष में भी सघन रूप से भाग लिया। शिव प्रसाद गुप्त ने इस विद्यापीठ में पठन पाठन का प्रमुख आधार हिंदी को बनाया और उसे माध्यम के रूप में सक्षम बनाने के लिए उच्च कोटि की पाठ्य पुस्तकों को भी छपवाया। आगे चलकर सन 1995 में इस विद्यापीठ के साथ महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया और वर्तमान में ये शिक्षा केंद्र महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कहलाता है। भारत माता की जय के नारे के साथ स्वाधीनता संग्राम लगातार जारी था, लेकिन भारत माता का एक मंदिर भी हो, ये भावना लगातार शिव प्रसाद गुप्त के मन में बलवती हो रही थी। ये एक अद्वितीय परिकल्पना थी कि वाराणसी की पवित्र भूमि में जहाँ देवी देवताओं के अनेक मंदिर है, इन मंदिरों के बीच एक ऐसा मंदिर हो जिसमें किसी देवी देवता की प्रतिमा की जगह राष्ट्र का भौगोलिक लघु प्रतिरूप विराजित हो और ये संपूर्ण देश की आस्था का केंद्र हो। काशी विद्यापीठ के परिसर में ही चित्रकला विभाग के पास भारत माता मंदिर के नाम से राष्ट्र देवता का ये मंदिर स्थापित हुआ, जिसका उद्घाटन स्वयं गांधी जी ने किया।

भारतीयों के मन में राष्ट्र चेतना जागृत हो, ये प्रयास बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने हमेशा ही किया। इसी उद्देश्य से उन्होंने सन 1920 में दैनिक समाचार पत्र आज का प्रकाशन आरंभ किया। हिंदी समाचार पत्रों के इतिहास में आज का प्रकाशन एक उल्लेखनीय घटना थी। बाबू शिव प्रसाद गुप्त एक ऐसे दैनिक पत्र का प्रकाशन चाहते थे जो लंदन टाइम्स जैसा प्रभावशाली हो। उन्होंने ज्ञान मंडल प्रकाशन की स्थापना की और 5 दिसंबर सन 1920 को आज का पहला अंक प्रकाशित हुआ। इस पत्र ने हिंदी पत्रकारिता कला को एक नया स्वरूप, नई गति और नई दिशा प्रदान की। दैनिक समाचार पत्र आज ने हिंदी पत्रकारिता के नए मानदंड स्थापित किए। उस पत्र ने हिंदी को अनेक नए शब्द प्रदान किए। तिलक जी की प्रेरणा से जन्मा दैनिक समाचार पत्र आज महात्मा गांधी के आंदोलन का अग्रदूत बना। अपने समय में सत्याग्रहियों की नामावली छापने का साहस आज ने ही किया। इस कारण इस पत्र को ब्रिटिश शासन का कोप भाजन भी बनना पड़ा। जब सरकार के कोप और दमन के कारण आज का प्रकाशन रुका तो इसके प्रधान संपादक बाबूराम विष्णु पड़ारकर ने रणभेरी का प्रकाशन कर राष्ट्रीय जागरण की गति को मंद नहीं होने दिया। आज की टिप्पणी और लेख अत्यंत प्रभावशाली होते थे। आज के प्रमुख लेखों में सर्वश्री संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव, श्री प्रकाश, पंडित कमलापति त्रिपाठी, बेड़प बनारसी, बेचैन शर्मा उग्र आदि शामिल हैं। दैनिक समाचार पत्र आज ने अपनी उच्च गुणवत्ता से असंख्य पाठकों को भाषा और व्याकरण की दृष्टि से संस्कारित भी किया। प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर भगवान दास जैसे मनीषी भी इस पत्र के लिए लिखा करते थे। आज के संपादकों में सर्वश्री प्रकाश, बाबूराव विष्णु पड़ारकर, कमलापति त्रिपाठी, विद्या भास्कर, श्रीकांत ठाकुर, रामकृष्ण, रघुनाथ बिडलकर शामिल रहे हैं। और अपने प्रकाशन की 100 वर्षों की यात्रा पूरी करता हुआ दैनिक समाचार पत्र आज भी वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, पटना, इलाहाबाद और रांची से प्रकाशित हो रहा है। ज्ञान मंडल प्रकाशन शिव प्रसाद गुप्त के समय में भी विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखित इतिहास, राजनीति और दर्शन आदि के हिंदी ग्रंथों के प्रकाशन का बड़ा केंद्र बन गया था। बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने स्वयं भी पृथ्वी पदशिला नामक पुस्तक लिखी। बाबू शिव प्रसाद गुप्त जीवन भर देश की आजादी और चरित्र निर्माण के लिए समर्पित रहे। भारत माता की सेवा और आराधना करते हुए 24 अप्रैल सन 1944 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन राष्ट्र रत्न बाबू शिव प्रसाद गुप्त को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष, जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

0: हाय, मैं हूँ ईशा और आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल सभा।
1: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
0: बच्चों नमस्ते, मैं हूं आपकी मनीषा दीदी, लेकर आई हूं आपके लिए बाल सभा कार्यक्रम। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं बरसात के मौसम में कैसे बने इको दोस्त। तो सबसे पहले तो आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे और मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आज बच्चों हम जो बात करने वाले हैं ना, वो विषय सुनकर आप और अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि ये विषय हम सभी से जुड़ा है, आपसे, मुझसे, आपके घर से, मेरे घर से, आपके स्कूल से, हमारे शहर से, हमारे गांव से, पशु पक्षी पेड़ नदियां बादल सब इससे जुड़े हैं, है ना? क्योंकि बरसात का मौसम है तो ये जानना ज़रूरी है कि आज हम कैसे अपनी बात को आपके सामने रखें। बच्चों आज का विषय मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि बरसात आने वाली है तो कैसे बने इको दोस्त। अब जब कुछ ही दिनों में, या हम ये भी कह सकते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले से ही हमारे घर के दरवाजे पर बारिश की बूंदों ने दस्तक दे दी है। गर्मी की तपती दोपहर के बाद अब छम छम छम बारिश की आवाज़ आने लग गई है, और जब ये धरती पर बूंदें गिरती हैं तो कितनी अच्छी सौंधी सौंधी सी मिट्टी की खुशबू आती है ना। हम सब लोग बाहर निकलते हैं, कई बच्चे छाता लेकर जाते तो हैं स्कूल लेकिन फेंक देते हैं या छुपा देते हैं, गीले होकर आ जाते हैं और फिर जहाँ भी पानी भरा मिलता है वहाँ छप छप ज़रूर करते हैं, है ना, पैरों से। जूते भले ही गीले हो जाएं, भले ही मम्मी ने इस बार नए शूज़ लिए हो, लेकिन क्या हुआ, बरसात का मौसम है तो एक बार तो पानी जहाँ भरा हुआ है जिस गड्ढे में वहाँ पर छपाक करना ही है, है ना। क्योंकि ये सब हमको अच्छा लगता है। सच बात तो यह है कि मौसम जब जब बदलता है तब तब, कभी हमें अच्छा लगता है और कभी हमें पुराना मौसम इतना अच्छा लगता था कि नया वाला जो चेंज आ रहा है ना वो अच्छा नहीं लगता। गर्मी सबको बहुत पसंद होती है क्योंकि उसमें छुट्टियां होती हैं, उसमें बहुत सारे आइसक्रीम खाने को मिलती है, हमने बोला था ना बर्फ़ का गोला कई बच्चे खाते हैं। लेकिन जब गर्मी बहुत बढ़ जाती है ना, तब एक थकान हम सबको घेर लेती है, क्योंकि ना कहीं खेलने निकल पाते हैं, लू चल रही है, जहाँ निकल रहे हैं गर्मी के गर्म गर्म हवाओं के ऐसा लगता है गाल पे थपेड़े से पड़ रहे हैं, है ना। अभी थोड़े ही दिन पहले हम शाम को निकल रहे थे तो लग रहा था नहीं नहीं मत निकलो, रात में भी ऐसा लग रहा था जैसे दिन है, क्योंकि बच्चों गर्मी का बहुत असर इस बीच हमको देखने के लिए मिला। और जब इतनी गर्मी के बाद बारिश की बूंदें गिरी ना, तो ऐसा लगा जैसे एक बारिश में सारी गर्मी उड़नचू हो गई, भाग गई, डर गई बूंदों से, है ना। इसीलिए तो मुझे बारिश बहुत पसंद है। कहीं भी देखिए आप, दूर दूर तक नज़र डालिए, धरती पर आपको हर जगह ऐसा लगेगा जैसे पेड़ों का रंग कुछ और सुंदर हो गया है, पौधे जैसे पहले से अधिक खिलखिला रहे हैं, जैसे मिट्टी खुद भी नाचने के लिए इधर से उधर कूदा फादी कर रही है, है ना। पानी के साथ छपाक जैसे होता है तो थोड़ी सी मिट्टी कहीं किसी के कपड़े पे गुड़ जाती है, कहीं हमारे पीछे जब कोई गाड़ी आ रही होती है तो छींटे पड़ जाते हैं। तो कई बार इसको थोड़ा सा अलग दृष्टि से देखें तो ऐसा लगता है जैसे मिट्टी खुद ब खुद नाचना चाह रही है और खुद ब खुद वो पेड़ पौधे सब हिल के हमारा स्वागत करने को तैयार हैं। लेकिन हम क्या करें, प्रकृति ने तो अपना सुंदर रूप दिखा दिया है, लेकिन हम अपने सुंदर नागरिक होने का परिचय कैसे दें? तो बच्चों बात बहुत सीधी और बहुत सरल है कि हम इको दोस्त बने और प्रकृति को, धरती को अच्छा व्यक्ति, अच्छा नागरिक, अच्छा दोस्त होने का परिचय दें। अब आप सोच रहे होंगे कि इको दोस्त होता कौन है? तो बच्चों जैसे हमारा कोई अच्छा दोस्त होता है जो हमारी मदद करता है, हमारा ध्यान रखता है, वैसे ही जो व्यक्ति प्रकृति का ध्यान रखता है, पेड़ लगाता है, पानी बचाता है, जानवरों की रक्षा करता है, पक्षियों से प्रेम करता है, वो इको दोस्त कहलाता है। और इको दोस्त बनने के लिए बहुत बड़े बड़े काम करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटे छोटे काम करके भी हम इको दोस्त बन सकते हैं। अब बताऊँ आपको वो छोटे छोटे से काम कौन से हैं। जैसे बच्चों, पानी को कभी व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, पेड़ पौधों की देखभाल करनी चाहिए, प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए, पक्षियों के लिए पानी रखना चाहिए, अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। बस इन छोटे छोटे कामों को करके ना हम धरती से दोस्ती कर सकते हैं, हम प्रकृति से दोस्ती कर सकते हैं। अब आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों ये बातें होने लगती हैं जब बारिश आने वाली होती है कि पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए? क्योंकि एक तो बच्चों, जब बारिश होती है तो पौधे ज़्यादातर ऐसा होता है कि बारिश के मौसम में अच्छे फलते फूलते हैं, उनकी जगह बदलती है, उनका घर बदलता है, तब भी वो बच जाते हैं, उनके बचने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि इस मौसम में हमें ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अब क्योंकि इन दोनों का आपस में संबंध है, तो क्या संबंध है? पेड़ धरती के सबसे अच्छे मित्र होते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा आपके एटमॉस्फेयर को ठंडा रखने में ये मदद करते हैं। और तो और, ये हरियाली जो है ना, वो बादलों को भी आकर्षित करती है। और जब बादलों को आकर्षण मिलता है तो आपको तो पता ही है, बस बारिश के आसार बढ़ते हैं, पेड़ मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं, मतलब मिट्टी को बहने से भी बचाते हैं। दूसरी बात, आपने देखा होगा जहाँ पेड़ पौधे बहुत होते हैं, आप कहीं से भी गुजरिए, जैसे जब हम भोपाल में ही कोलार की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि स्वर्ण जयंती पार्क जैसे ही आने को होता है तो बच्चों वहाँ का टेम्परेचर कुछ हमें कम लगने लगता है, या वहाँ पे गर्मी हमें कम लगने लगती है। और जब उस पार्क के हम अंदर चले जाते हैं तो हमें गर्मी थोड़ी और कम लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं बच्चों। कभी आप जाइए और देखिए, वहाँ गर्मी के मौसम में भी आप अंदर जाकर बैठोगे तो इतने बड़े बड़े पेड़ हैं कि आपको बहुत गर्मी नहीं लगेगी। पेड़ सीधे सूरज से आपको मिलने से रोकते हैं, मतलब क्या है, दरवाजे होते हैं ये, है ना, अच्छे दरवाजे होते हैं, धूप को सीधे आपके पास नहीं आने देते हैं। और तो और, ऑक्सीजन आपको जो मिलती है, जो आपकी प्राणवायु है, उसको भी ये साफ करते हैं। एक और चीज़ बहुत अच्छी बताऊँ, जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ चिड़िया की चूं चूं ज्यादा क्यों सुनाई आती है, कभी सोचा है? क्योंकि चिड़िया का घर होता है पेड़। और आप मान लीजिए कि उस पे फल लगे हुए हैं तो क्या ही कहने, जैसे इस वक्त खूब आम के पेड़ आपने देखे होंगे ना, जहाँ जहाँ आम के पेड़ लगे होंगे वहाँ आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि कोई आम टपकेगा तब आप खाओगे, या फिर आप खुद तोड़ोगे। खुद तोड़ा ठीक है, कोई बात नहीं, आपको साझा आम मिल जाएगा, लेकिन अगर वो आम पेड़ पर लगे लगे पक गया तो पहले आप नहीं खाएंगे, बल्कि पहले कोई गिलहरी खाएगी, फिर कोई चिड़िया खाएगी, और वो फल सबके पास से होता हुआ एक दिन अंदर से खाली होता हुआ नीचे टपक जाएगा, तब आपको मिलेगा। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ पक्षियों के लिए खाना पीना होता है, पक्षियों के लिए छांव होती है, और पक्षियों के लिए उस स्थान पे थोड़ी नमी भी होती है, तो वह अच्छे से वहाँ रह सकते हैं, है ना। इसलिए पेड़ों का धरती से बड़ा गहरा संबंध है। अब बच्चों, अगर पेड़ कम हुए तो गर्मी बढ़ेगी, जल संकट बढ़ेगा, मिट्टी बंजर हो जाएगी और पक्षियों की संख्या भी कम होगी। इसलिए बरसात का मौसम पेड़ लगाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अब हमारे बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि आज मनीषा दीदी इतनी सारी बातें कर रही हैं लेकिन ये तो बता ही नहीं रही है कि हम लोग करें क्या। तो बच्चों, आप क्या क्या कर सकते हैं वो अब बताती हूँ। आपका पहला कदम ये हो कि आप कभी भी कोई भी अच्छे दिन पर एक छोटा सा पौधा लगाइए। जैसे आपकी बर्थडे है, जैसे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, जैसे आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, आपने क्लास में टॉप किया, या आपको कोई उम्मीद है, आप सोच रहे हैं कि इस बार कम नंबर आए हैं, अगले साल मैं इतने नंबर लाऊंगा, तो आप फिर ऐसा करिए कि एक पौधा लगाइए, है ना, और सोचिए कि जब पौधा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ही मेरी हाइट भी बढ़ेगी, वैसे ही मैं भी बढ़ूंगा, मैं भी अच्छी पढ़ाई करूंगा, तो आपको मज़ा आने लगेगा। और सच में बच्चों, मैंने आपको एक बार एक छोटी सी कहानी भी सुनाई थी कि हमारे कॉलोनी के पार्क में एक बच्चे ने आम खाया और गुठली वहाँ पर साफ़ करके, बिल्कुल साफ़ करके उसने मिट्टी में गाड़ दी। थोड़े दिन बाद ना उसमें से जब अंकुर फूटे, फिर छोटे छोटे से छोटे से वो बढ़ना शुरू हुआ। और मैं सच बताऊं आपको, अब तो ऐसा हो गया है कि वो पेड़ उस बच्चे के घुटने तक आ गया है। तो वो जब उस पेड़ के पास आती है ना, तब उसको इतना प्यार करती है और हर बार हर किसी को ये बताती है, आंटी ये मैंने लगाया था। कभी अपने भाई के साथ आएगी ना तो हमेशा कहेगी, देख रहे हो वो पेड़ मैंने लगाया था। मतलब उसको इतना इस चीज़ की खुशी है, इस चीज़ का इतना गर्व है कि ये पौधा जो बढ़ रहा है वो दरअसल उसके कारण है। उसने मिट्टी में एक गुठली को सिर्फ मिट्टी से दबा दिया था। आप सोचिए, कुछ नहीं किया था, उसने आम खाया था, गुठली को साफ किया था और कॉलोनी के पार्क में मिट्टी जहाँ उसको ज़्यादा दिखी उसने थोड़ी सी मिट्टी को खोदा, उसके नीचे उस गुठली को दबा दिया। अब वो पौधा किस्मत से अंकुरित हो गया, अब वो जो गुठली थी वो अंकुरित हो गई। कितनी अच्छी बात है ना। ये आपके आत्मविश्वास में भी बहुत सहायक होती है बच्चों। अब आप आज संकल्प ले सकते हैं कि आप एक पौधा इस बारिश में ज़रूर लगाएंगे। मैं तो कहती हूँ एक क्यों, बहुत सारे पौधे लगाइएगा। अब आप पूछेंगे कौन सा पौधा लगाएं दीदी, तो मैं बता देती हूँ, कोई भी लगा लीजिए। नीम, आम, अमरूद, जामुन, गुलमोहर, तुलसी, गुड़हल, मोगरा, कितने अनगिनत पौधे हैं बच्चों, अनगिनत। कुछ फूल वाले, कुछ फल वाले, कुछ हरियाली देने वाले ऐसे ही घने घने वृक्ष जो आपकी प्राणवायु को बहुत शुद्ध करते हैं। तो देखना ये है कि आप इस बार कौन सा पौधा लगाते हैं, कौन सा पौधा चुनते हैं। और जैसे ही आप पौधे को लगा दें, बस उसे अपना दोस्त बना लीजिए, रोज़ पानी दीजिए, रोज़ बातें कीजिए, रोज़ आप चाहें तो उसकी ऊंचाई भी नाप सकते हैं। और हाँ, कभी कभी मम्मा को ले जाकर, क्योंकि उनके पास स्मार्टफोन होगा, तो उसकी फ़ोटो खींचिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, बताइए किस पौधे को आपने लगाया था, है ना। और अपने नानी नाना को, दादी दादा को उसकी फ़ोटो भेज सकते हैं, अगर वो पास में है तो वैसे ही दिखा सकते हैं। और उस पर एक अच्छा सा पत्र लिख सकते हैं, एक पत्र पौधे के नाम, है ना। कैसे, अब आप सोचो, तो आप लिखोगे प्यारे नीम या प्यारे आम या प्यारे अमरूद, मैंने तुम्हें लगाया था, मैंने इस जगह पे लगाया था, मैंने तुम्हें इस तारीख को लगाया था, अब तुम इतने बड़े हो गए हो या तुम्हें छोटी छोटी सी पत्तियां आने लगी हैं। आप धीरे धीरे देखेंगे कि एक पौधे के बहाने आपकी राइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी हो जाएंगी और आपको लगेगा कि आपने एक अच्छा और सच्चा दोस्त बनाया है। और अनजाने में आप किसके दोस्त बन गए हैं, धरती के, है ना। तो आप ये छोटे छोटे से काम किया करिए। बहुत से बच्चे इस वक्त सोच रहे होंगे कि दीदी इतनी सारी चीज़ें बता रही हैं, लेकिन हम तो फ्लैट में रहते हैं, हमारे घर में तो जगह ही नहीं है, तो क्या करें, हम कहाँ लगाएं। तो कोई बात नहीं है बच्चों, पुराने सामान तो होंगे, उनका इस्तेमाल कीजिए। पुरानी कोई बाल्टी होगी, कोई मटका आपके आसपास होगा, कोई प्लास्टिक की बॉटल होगी, कोई डिब्बा होगा, पुराना टायर होगा, ऐसे बहुत टूटा हुआ गमला होगा, इन सब को आप सुंदर रंगों से सजाकर गमले की तरह उपयोग कर सकते हैं। और इसे ही कहते हैं कि कचरे से आप कोई उपयोगी वस्तु बना सकते हैं, और वो भी ऐसी जिससे पर्यावरण भी बचेगा और घर भी सुंदर लगेगा। बच्चे छोटे छोटे काम करके ना आप अपना घर का मिनी गार्डन भी बना सकते हैं। आप जैसे कि मैंने कहा, कुछ बच्चे कहेंगे कि हमारे पास तो जगह नहीं है, तो आप अपने घर में, बालकनी में, छत पे, खिड़की के पास थोड़ी सी भी जगह है तो वहाँ छोटा सा बगीचा ज़रूर बनाइए। अगर और जगह कम है तो मुझे एक और चीज़ बहुत अच्छी लगती है बच्चों, वो होते हैं लताओं वाले पौधे, है ना, जिसमें बहुत मोटा तना नहीं होता, बहुत जगह नहीं घेरते, लेकिन उसकी लताएं दूर दूर तक फैल जाती हैं, बेल जिसे कहते हैं ना, जैसे चूही की बेल बहुत सुंदर होती है बच्चों, और मधुमालती की बेल बहुत सुंदर होती है, एक टिकोमा की बेल बहुत खूबसूरत होती है। टिकोमा में सर्दियों में बहुत अच्छे नारंगी फूल आते हैं, वो ऐसा लगता है जैसे झूमर हो। ऐसे ही बच्चों मधुमालती में ना बहुत सारे इकट्ठे दोस्त जैसे इकट्ठे रहते हैं, वैसे ही फूल आते हैं। तो ये सब वो पौधे मैं आपको बता रही हूँ जहाँ बहुत सारी जगह ना हो, लेकिन आपको अगर उस जगह हरियाली करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो। एक आइडिया और बच्चों, आप अपनी कॉलोनी का या मोहल्ले का ग्रीन क्लब भी बना सकते हो, है ना? क्योंकि आपको अकेले काम करना तो अच्छा लगता नहीं है, और ये बात मुझे पता है कि बच्चों को जो काम करना है वो मिलके करना है, और जब आप मिलके काम करते हो ना तो आपकी बात सुनी जाती है। तो आप अपने कॉलोनी या मोहल्ले में एक छोटा सा ग्रुप बनाइए, है ना? उसका नाम आप ग्रीन क्लब रखिए, या कुछ भी, हरित क्लब, या जो आपका मन आए, या धरती मित्र मंडली, कुछ भी अच्छा सा नाम रखिए। और इस क्लब में ना 5-7 बच्चों को ज़रूर जोड़िए, और फिर आप 5-7 बच्चे मिलकर महीने में कोई एक पौधा लगाइए, या सप्ताह में एक दिन उस जगह की सफाई पर निकलिए, पक्षियों के लिए दाना पानी रखिए, पौधों की देखभाल करिए। तब आपको समझ में आएगा बच्चों कि सच में कुछ ऐसे काम हैं जो करके आपको बहुत बहुत बहुत संतुष्टि मिलेगी, है ना? कई बार आपने देखा होगा कि कॉलोनी में खाली जगह पड़ी है, और जब वो जगह खाली होती है तो धीरे धीरे जो लोगों की प्रैक्टिस है ना बच्चों, वो क्या है कि जैसे ही जगह खाली दिखती है, या तो उस जगह पर कोई कबाड़े का सामान रख देते हैं लोग बाग, या क्या करते हैं कि उस जगह पर हो सकता है कोई कचरा ही फेंक जाए, फिर वो खाली जगह कचरे वाली जगह पर बदल जाती है, या उस जगह पर कोई गाड़ी पार्क करने लगता है। तो हमें क्या करना है, हमें उस जगह को सुंदर बनाना है। वो जो कॉलोनी का हम या मोहल्ले का हम ग्रीन क्लब बता रहे हैं ना आपको बच्चों, उस जगह पे हमने क्या करना है, हमने उस जगह को सुंदर सा पेंट करना है सारे बच्चे मिलके, क्योंकि ग्रीन क्लब में तो कई बच्चे होंगे, तो आपको पहले पेंट करना है। फिर आपके घर में जितना पुराना सामान है, जैसे बाल्टी, मटका, प्लास्टिक का जो आपकी चीज़ें हैं, उन सबको ले आइए, और फिर आप देखिए कि उसको कैसे रीयूज कर सकते हो आप लोग, है ना, कैसे आप रिसाइकिल कर सकते हो चीज़ों को। आप कॉलोनी के मम्मी पापा और जो आपके दोस्तों के होंगे और जो आंटी अंकल होंगे, उनसे थोड़ी हेल्प लीजिए। एक कॉलोनी मुझे याद है, एक बार मैं दिल्ली गई थी बच्चों, आपको वो बात बताते हुए मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि वो कॉलोनी धीरे धीरे ज़ीरो वेस्ट बन गई है। मतलब उस कॉलोनी से कचरा बाहर जाता ही नहीं है, यहीं तक नहीं रुके हैं वो लोग। उस कॉलोनी में, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, छोटे छोटे बच्चों ने शुरुआत की थी ऐसे ही छोटे छोटे कामों से, कि वो संडे को मिलते थे और फिर एक जगह बैठते थे, कुछ नहीं करते थे, वो बस एक ही बात कहते थे, गीला कचरा एक जगह डालिए, सूखा कचरा एक जगह डालिए। ये एक मैसेज कॉलोनी के हर घर में देते देते देते देते आज वो कॉलोनी इतनी आगे निकल गई कि जब पर्यावरण दिवस था तब उन लोगों को इनाम मिला, और उसमें जो राशि मिली वो उन लोगों ने पता है किसे दी, उस कॉलोनी में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को। कितनी अच्छी बात है ना कि एक छोटी सी शुरुआत, छोटी सी, बहुत छोटी सी, कहाँ तक पहुँच गई। अब ये स्थिति हो गई है कि अभी तक तो गीला कचरा सूखे कचरे की बात थी, अभी वो ई वेस्ट को बिल्कुल अलग करते हैं, और बच्चों वो लोग कॉलोनी में जहाँ जगह दिखती है, जहाँ खाली जगह है, वहाँ पौधा लगा देते हैं। उन्होंने लगभग अपनी कॉलोनी को इतना हरा कर दिया है कि उनको गाड़ियों के लिए किसी शेड की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जिससे धूप आने से बच सके, क्योंकि उन्होंने वैसे ही अपनी कॉलोनी को बहुत हरा भरा बना दिया है। जहाँ बहुत हरियाली होती है ना बच्चों, वहाँ धूप बहुत तेज नहीं लगती है, क्योंकि सूरज को भी ना आपको देखने में, आपको घूरने में ना एक पर्दा जैसा, मैंने बोला था ना दरवाजे होते हैं पेड़, वो दरवाजे जैसा फील होता है, वो एकदम डायरेक्ट आपको नहीं घूर सकता है सूरज। तो आपको क्या है, हरियाली की चादर जरूर बनानी है, या आपको ऐसा जरूर करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं। अब बच्चे एक बार ये भी कह रहे थे कि दीदी, हम कॉलोनी में जब इतने सारे बच्चे होते तो एक दिन किसी की बर्थडे, एक दिन किसी की बर्थडे। शुरुआत में क्या होता है कि सबको आप एक एक बार तो बहुत अच्छा गिफ्ट दे देते हो, थोड़े दिन बाद आप रियलाइज करते हो कि अगर कॉलोनी में मान लीजिए 30 बच्चे हैं, हर बच्चे की बर्थडे, मतलब एक महीने में अगर 2-3, मतलब 12 महीने ही होते हैं ना बच्चों, 12 महीने में 2 बच्चों की तो कम से कम पड़ेगी, और किसी महीने में 3 भी पड़ जाएगी, तो 3 बच्चों के लिए अगर आप बहुत महंगे महंगे गिफ्ट लोगे तो पापा मम्मी की पॉकेट पे भी तो असर आएगा ना। तो देखिए, अगर आपने अपनी कॉलोनी या मोहल्ले में एक छोटी सी नर्सरी जैसी बनाई हुई है तो कितना अच्छा होगा कि आप उन्हीं में से कुछ पौधे निकालोगे, छोटे छोटे से, अगर आपके किसी के घर से डिस्पोजेबल ग्लास निकलते हैं या कुछ भी ऐसा निकलता है तो उसमें आप उनको लगाओगे और गिफ्ट कर दोगे। तो पहली बात तो आपको महंगा उपहार खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। दूसरी बात, आप हर बार एक मैसेज दोगे, जब जब किसी को पौधा दोगे तब तब उसके साथ में अनजाने में एक मैसेज भी पहुँचेगा कि ये बच्चे कितने होशियार हैं और कितने समझदार हैं। देखो, ये सबको हरियाली का उपहार देते हैं, है ना, और ये देख के बड़े बड़े लोग भी आपसे सीख लेंगे। और आपको पता है कई बार बहुत सारे लोग स्मृति में भी पौधा लगाते हैं, है ना? जैसे किसी का कोई प्रियजन गुजर जाता है तो भी वो पौधा लगाते हैं उसके नाम से। और ये कितनी अच्छी बात है कि जब जब आप उस पौधे को देखते हैं, उस पौधे को बड़ा होता हुआ देखते हैं, वृक्ष बनता हुआ देखते हैं, उसकी छांव में जाकर बैठते हैं, तो आपको याद आता है कि ये बिल्कुल उसी बुजुर्ग की तरह है जो आपको इस दुनिया में अकेला छोड़ गए, है ना? तो उस वृक्ष का साथ भी आपको आपके बुजुर्गों की याद दिलाता है। लेकिन बात यह है कि क्या पौधा लगाना ही पर्याप्त है? तो मैं कहूंगी नहीं। सिर्फ पौधा लगाना तो पर्याप्त नहीं है बच्चों, क्योंकि उसको बचाना बहुत जरूरी है। एक पौधा लगाना शायद फिर भी आसान हो, लेकिन उस पौधे को पेड़ बनाना ना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बच्चों, क्योंकि उसे आपको नियमित पानी देना पड़ता है, आपको उसे जानवरों से भी बचाना पड़ता है, ये भी देखना होता है कि आसपास जंगली घास ना आ जाए, ये भी देखना होता है कि कहीं वो पौधा सूख तो नहीं रहा। तो क्या करेंगे इसके लिए बताइए? वही ग्रीन क्लब, किसी की जिम्मेदारी पानी देने की, किसी की जिम्मेदारी छोटी छोटी लकड़ियों से फेंसिंग बनाने की, किसी की जिम्मेदारी उसको सूखने ना देने की, और किसी की जिम्मेदारी उसकी रख रखाव की। तो बस इसीलिए कहते हैं ना कि अकेले कोई काम नहीं सधता, हमको दो तीन लोगों को तो साथ में लेके चलना होता है। अब हम बात कर रहे हैं ना कि बरसात आने वाली है तो इको दोस्त बने, तो बरसात का क्या क्या खास मूल्य है हमारे पौधों के लिए? तो बच्चों ये बारिश का पानी बहुत कीमती होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसमें नहाते हैं, धोते हैं, छप छप करते हैं, उचकते हैं, कूदते हैं, डांस करते हैं और फिर इसे बह जाने देते हैं। नहीं, बाल सभा सुनने वाले बच्चे तो समझदार होते हैं ना, तो फिर ऐसा कैसे कर सकते हैं हम बच्चों? हमें इसे बचाना है। जो घर की छत से पानी बह बह कर चला जा रहा है, पहले तो हम मम्मी पापा से बात करें कि हम वाटर हार्वेस्टिंग की कहीं कोई योजना बना सकते हैं क्या। कॉलोनी में जो आपकी समितियां हैं, जो मोहल्ले की समितियां, उसमें बात करिए। जो आपका ग्रीन क्लब है उसमें जो आप बच्चे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जाएं, बात करें क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि वर्षा के जल को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ गंभीर जवाब मिलेगा, ज़रूर आपके लोग बात मानेंगे। फिर अगर नहीं हो पा रहा है तो छोटे छोटे तरीकों से टंकी में पानी को इकट्ठा कीजिए, अपने माता पिता से बात कीजिए, और ये ख्याल ज़रूर रखिए कि कैसे भी पानी को व्यर्थ नहीं बहने देना है, है ना? आपको ये भी ध्यान रखना है कि कॉलोनी और मोहल्लों में जो पार्क वाली जगह है उसको बहुत ज़्यादा सीमेंटेड ना बनाया जाए, है ना? कहीं कहीं कच्ची मिट्टी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो पानी को धरती के भीतर जाने में मदद करती है बच्चों। उसके बाद ये भी है कि गर्मी और बरसात दोनों मौसमों में पक्षियों को हमारी सहायता की आवश्यकता होती है ना? तो अपने घर की छत पर, बालकनी में, आंगन में, आप गर्मियों में जैसे पानी रख रहे थे ना, थोड़ा दाना रख रहे थे, अब चूंकि बरसात हो जाएगी पक्षियों को दाना पानी बहुत पानी की तो ज़रूरत नहीं होगी, पर हाँ दाने की तो होगी, तो थोड़ा शेड में आप ध्यान रखें कि दाना गीला ना हो, आकर पक्षी खा सकें, आप उनको देखकर आनंद ले सकें, बस यही है। इसके बाद हमें ये भी देखना है कि पर्यावरण के शत्रु कौन कौन से हैं, है ना? तो उसमें एक सबसे बड़ा नाम किसका आता है? प्लास्टिक का। आप अपनी कॉलोनी या मोहल्ले में ये भी कर सकते हैं कि जो भी आपको दिख रहा है दुकानों से प्लास्टिक के थैले लेता हुआ आ रहा है, उसको कुछ ज़्यादा नहीं बोलना है, सिर्फ ये बोलना है आंटी या अंकल अगली बार घर से कपड़े का थैला लेकर जाइएगा। या फिर वही ग्रीन क्लब अगर आपने बना लिया या बनाने वाले हो तो आप पुराने कपड़े कलेक्ट कर सकते हो, और इस चीज़ के लिए आप सबसे थोड़ी सी हेल्प लेकर या किसी बड़े को ये जिम्मेदारी देकर पुराने कपड़ों से थैले बनवा सकते हो, कॉलोनी और मोहल्ले में बंटवा सकते हो। प्लास्टिक की बोतल का भी कम उपयोग करो, इससे अच्छा होता है कि अगर हम स्टील के बर्तन यूज़ करें, है ना, स्टील का ग्लास यूज़ करें। और तो और आजकल स्कूल के लिए बड़े अच्छे अच्छे टिफ़िन बॉक्स, लंच बॉक्स आपके स्टील में भी आ रहे हैं, बॉटल्स भी आ रही हैं, उनका उपयोग करिए। ये जो एकल उपयोग वाली प्लास्टिक होती है ना बच्चों, उनसे बचने की बहुत ज़रूरत है। तो बच्चों ये एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की बात से मुझे याद आया कि कल मैं एक जगह जा रही थी तो मैंने देखा कि सड़क पर कुछ लोग ठंडा शरबत डिस्पोजिबल में बांट रहे थे, डिस्पोजिबल ग्लासेस में बांट रहे थे। चलिए वहाँ तक भी ठीक है कि आप बांट रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग पीने वाले थे, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, और अगर उनमें से एक दो लोग भी वहाँ थे, मैं आपको जगह भी बता सकती हूँ, बिट्टन चौराहे पर ये हो रहा था, जो दशहरा मैदान है उसके सामने की ये बात है। तो कहानी में ये हुआ कि लोग जहाँ पी रहे थे स्कूटर पर बैठे थे तो स्कूटर से वो डिस्पोजेबल ग्लास को फेंक रहे थे, अगर गाड़ी में बैठे थे तो वो गाड़ी से फेंक रहे थे। तो अगले चौराहे तक सड़क के किनारे किनारे बहुत सारे डिस्पोजेबल ग्लासेस मैंने उड़ते हुए देखे, क्योंकि इनमें कोई वजन नहीं होता तो वो जरा सी भी आंधी जैसी चले तो वो उड़ते हैं। फिर कितनी गलत बात है ना बच्चों, हम सब चीज़ें बच्चों को ही सिखाने की कोशिश क्यों करते हैं? हम खुद बड़े होकर ये क्यों नहीं सीखते हैं कि हमको भी इस धरती को, इस प्रकृति को, अपनी सड़कों को बचाना है, साफ रखना है, स्वच्छ रखना है, है ना? तो आप भी बच्चों अगर किसी को ऐसा करते देखें तो ज़रूर टोकिएगा, मगर प्यार से, बहुत अच्छे शब्दों में, बहुत अच्छी भाषा के साथ। तो आज की बाल सभा में बच्चों हमने आपको खेल खेल में इको दोस्त बनना तो सिखा दिया है। अब जल्दी से हमारी बारी है संकल्प की। हम थोड़े से संकल्प ले लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। अगली बाल सभा में भी हम जब आपसे मिलेंगे तो ये बात ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमारे संकल्प इतने ही हैं। कि मैं जहाँ तक संभव होगा धरती की या धरती का अच्छा दोस्त बनूंगा या बनूंगी। मैं इस बरसात के मौसम में कोई पौधा अवश्य लगाऊंगी। मैं उस पौधे को वृक्ष बनने तक उसका ख्याल रखूंगा या रखूंगी। मैं प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करूंगी। मैं किसी भी ऐसे जीव को परेशान नहीं करूंगी जो मेरे आसपास है, जैसे चींटियां भी हो सकती हैं, चींटा भी हो सकता है, और बरसात में बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकलती हैं जिनसे हमें बचकर तो रहना है लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। और हाँ, अपने आसपास मैं स्वच्छ वातावरण निर्मित करूंगा या निर्मित करूंगी। अगली बार कुछ ऐसी ही बातें फिर करेंगे, लेकिन अभी के लिए अपनी मनीषा दीदी को अनुमति दीजिए बाल सभा कार्यक्रम समाप्त करने की। तो बच्चों नमस्ते। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम। मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए 90.8 रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: बाल सभा।

नमस्कार, मैं हूँ मधुश्री और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। मैं सलाम करती हूँ देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तैनात रहते हैं, और साथ ही उन क्रांतिकारियों को भी जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं।

0: रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुन सकते हैं प्रातः 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: प्रोफेसर हूँ सरोजिनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज भोपाल में। और यदि बात करें तो बचपन से ही मैं दृष्टिहीन हूँ और बाय बर्थ इनफैक्ट। और शुरू में मेरी पढ़ाई जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्कूल्स होते हैं, स्कूल फॉर द ब्लाइंड, उसमें हुई। और फिर प्रयास किए कि कैसे, मैंने रेगुलर स्कूल्स में एडमिशन मिलने में बड़ी दिक्कत होती थी, पर फिर पढ़ाई हुई और उस टाइम पे किताबें वगैरह मिलती नहीं थी। तो बाद में तो शुरू में तो लोग सुनाते थे पढ़ के, बाद में फिर कैसेट रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड कर करके अपने लेसन्स तैयारी वगैरह करी। 1989 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ गवर्नमेंट पीएससी के थ्रू और मैंने सिलेक्शन हुआ उसके बाद में, और मैं प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर बना कॉलेज में। तो 1993 में हम लोगों को पता पड़ा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एक इनोवेशन हुआ है और उन्होंने कोई स्पीच सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसको कंप्यूटर पे लगा के एक बॉक्स को जो कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पे है उसको हम स्पीच में कन्वर्ट कर सकते हैं कंप्यूटर पे जो कुछ भी है। तो ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे एक वर्कशॉप कराई ब्लाइंड लोगों के लिए और इस तरह से कंप्यूटर पे फिर मैंने अपना खुद का कंप्यूटर लिया और कंप्यूटर सीखना शुरू किया। और फिर हम लोगों ने एक संस्था है यहाँ पे आरुषि करके, तो उसमें हम लोगों ने कंप्यूटर सेंटर शुरू किया जहाँ हमने ब्लाइंड बच्चों को कंप्यूटर सिखाना शुरू किया। तो कंप्यूटर सीखने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि अभी तक बच्चे जो थे वो अपनी पढ़ाई के लिए ऑडियो पे डिपेंडेंट थे या ब्रेल पे डिपेंडेंट थे, ब्रेल में किताबें होती नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि अगर उनको अपने लिख कर कोई चीज़ कम्युनिकेट करना है तो उनके पास कोई साधन नहीं था। तो ये इट वॉज़ अ बिग रेवोल्यूशन इन दोज डेज कि अब चाहो तो आप अपनी बात कंप्यूटर पर लिख सकते हो और प्रिंट करके अपने बात भेज सकते हो या मेल के माध्यम से भेज सकते हो। तो ऐसे हम लोगों ने शुरुआत करी टेक्नोलॉजी की।
1: तो सर, इस तरह से टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई, आपने पढ़ाई की और इतना आपने सारा अपनी जर्नी हमसे शेयर की, तो वो बीच में सर और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी से आपका जुड़ाव होता रहा?
0: देखिए, अगर जहाँ तक हम दृष्टिबाधित लोगों के लिए कहें तो हम टेक्नोलॉजी को 3-4 तरह से समझ सकते हैं। एक तो हमारे पास में कंप्यूटर पे टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर होता है। इसका मतलब ये है कि जो जो कुछ कंप्यूटर के स्क्रीन पे दिखता है स्क्रीन टेक्स्ट, उस वो पूरा स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर का काम ये होता है कि जो कुछ कंप्यूटर की स्क्रीन पे अवेलेबल है वो टेक्स्ट में, इन स्पीच में कन्वर्ट कर दे। साथ ही साथ, क्योंकि मान लीजिए उसमें ये भी फैसिलिटी होती है कि जो आपको छोटी छोटी जो बारीकियां होती हैं वो भी आपको कमांड दे के आप उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो सॉफ्टवेयर के माध्यम से। फ़र्ज़ कीजिए हम एक डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं और उस डॉक्यूमेंट में मान लीजिए कुछ हमको चीज़ें बोल्ड में करना है, इटैलिक्स में करना है, उसका कलर चेंज करना है, तो सॉफ्टवेयर में अगर हम एक कमांड देंगे कि उसमें ये फॉन्ट कौन सा है, उसका टाइप क्या है, उसका कलर कौन सा है, कित लाइन स्पेसिंग क्या है आपकी, सिंगल स्पेसिंग है कि डबल स्पेसिंग है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सॉफ्टवेयर में कमांड के माध्यम से स्पीच में मिल जाएगी। तो इससे क्या है कि जो ब्लाइंड व्यक्ति है वो इंडिपेंडेंटली अपना पूरा काम कंप्यूटर पे कर सकता है। तो एक तो ये टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर हो गया। इसके अलावा जो लोग थोड़ा देख सकते हैं तो उनके लिए मैग्निफिकेशन की फैसिलिटीज़ है या मैग्नीफाइंग सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे है उसको बड़ा करके देख सकते हैं, लार्ज फॉन्ट में आ जाता है। और ऐसे ही अगर आपको कंप्यूटर के आने के बाद में लार्ज प्रिंट की बुक्स निकालना भी बड़ा सरल हो गया है कि अगर आप चाहें तो जो बच्चे कम देख पाते हैं और वो बड़ी अक्षर पढ़ सकते हैं तो हम किताबों को लार्ज फॉन्ट में तैयार कर सकते हैं। फिर किताबों को में जो अक्षर लिखे हैं उसको मैग्नीफाई करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लासेस, मैग्नीफायर्स आ गए हैं काफ़ी सारे, तो वो मैग्नीफाई कर देते हैं। लो विजन वाले लोगों के लिए एक एडवांटेजेस चीज़ हो जाती है। दूसरा एक चीज़ और है, उसको बोलते हैं रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले। तो रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले में क्या होता है, इसको हम अपने कंप्यूटर से लगाते हैं तो कंप्यूटर में अगर लगा दिया तो जो कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पे है वो ब्रेल में सीधे आ जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रेल डिस्प्ले कहलाता है। और उसमें ब्रेल डिस्प्ले के का अगर हम आप बताएं तो ब्रेल में 6 डॉट्स होते हैं, तो वो पूरी एक लाइन जो है वो टेक्स्ट जो है वो ब्रेल में कन्वर्ट हो जाएगा अलग अलग। तो ये एक चीज़ हो गई। और तीसरा ये है कि हम एक और टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि अगर मान लीजिए हमारे पास में कोई इमेज फाइल है, तो इमेज फाइल को हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करके टेक्स्ट टू स्पीच स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर या फ़ोन के माध्यम से हम उसको सुन सकते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई चीज़ की फ़ोटो खींची, किताब को पूरा स्कैन कर लिया, स्कैन करके उसको इमेज में कन्वर्ट कर लिया, इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया और टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर लिया। अब ये सारे सॉफ्टवेयर जो पहले कंप्यूटर में थे वो कंप्यूटर से मोबाइल पे भी आ गए। तो अगर आपके पास में एंड्रॉयड फ़ोन है तो हर एंड्रॉयड फ़ोन में एक अंदर एक सेटिंग के अंदर एक फीचर होता है एक्सेसिबिलिटी करके। एक्सेसिबिलिटी में अलग अलग डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए क्या क्या अकोमोडेशन हो सकते हैं, तो खास तौर पे एक सॉफ्टवेयर होता है टॉकबैक। तो टॉकबैक को अगर आप चालू करेंगे तो कोई भी मोबाइल फ़ोन बोल पाएगा, स्पीच में कन्वर्ट हो जाए। तो मोबाइल का सारा काम जो है वो इंडिपेंडेंटली ब्लाइंड व्यक्ति कर सकता है। किताबों को सुनना है पढ़ना है तो वो मोबाइल फ़ोन से ही अपनी किताबों को सुन सकता है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है अभी। अब इस पूरे इको सिस्टम का यूज़ करते हुए अब क्या किया है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने, जैसे हमारे यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है डेजी फोरम ऑफ इंडिया। तो डेजी फोरम ऑफ इंडिया इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि 100 से अधिक ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि ब्लाइंड बच्चों के लिए किताबों को एक्सेसिबल फॉर्मेट में तैयार करते हैं। तो उन्होंने क्या किया है, अपनी सारी किताबों को एक वेबसाइट बनाई और उस पर अपलोड कर दिया। उसका नाम है सुगम्य पुस्तकालय। तो सुगम्य पुस्तकालय के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि किताबों को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम उसको अपलोड कर दिया ई टेक्स्ट फॉर्मेट में, या फिर इवन ऑडियो बुक्स को भी हम उसमें अपलोड कर सकते हैं किताबों को रिकॉर्ड करके। तो और फिर जो बच्चे हैं अपने मोबाइल पे उनके ऐप होगा और वो ऐप के माध्यम से या उसको हम लोग मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक इन किताबों को सुनने के लिए प्लेयर्स बने हैं जिनको बोलते हैं डेजी प्लेयर। डेजी मतलब होता है डिजिटल एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, DAISY। तो इसके माध्यम से हम डेजी प्लेयर के माध्यम से किताबों को सुन सकते हैं। और ये जो है स्पेसिफाइड फॉर्मेट में किताबें तैयार होती हैं, जैसे कि आम बच्चा जो है साइटेड बच्चा है किताब को पेज वाइज हेडिंग वाइज सब अंदर के सब हेडिंग्स वो आराम से सुन देख सकता है पढ़ने पलट के। तो हम किताब में भी ये फैसिलिटी है, ऑडियो बुक में भी या ई टेक्स्ट में भी, कि उसको हम इस तरह से फॉर्मेट डिज़ाइन करते हैं कि वो किताब मान लीजिए मुझे 115 पेज पे जाना है तो मैंने बस टाइप किया 115 तो किताब का 115वां पेज से आप पढ़ना शुरू करोगे। तो इससे जो एक कैसेट रिकॉर्डर जब हम रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करते थे उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता था कि मान लीजिए अगर एक बार कैसेट रिकॉर्ड किए तो वो या लीनियर रिकॉर्डिंग होती थी तो कि आपको पता नहीं होता था कि कौन सी आपका मान ली किताब जो है 12 घंटे की किताब है तो आपका जो चैप्टर वो दूसरे नंबर के कैसेट में है कि 5वें नंबर के कैसेट में है कि 8वें नंबर के कैसेट में है। और फिर हमको उस चैप्टर के भी पर्टिकुलर सब सेक्शन में जाना है या हमको सिर्फ उसकी क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने क्वेश्चंस देखने तो वो हमको पता नहीं होता था। पर यहाँ पर ये फैसिलिटी है कि हम स्किप कर सकते हैं या नेविगेट कर सकते हैं अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए।
1: सर, आपने इतनी डिटेल में हमें बताया और सवाल और मेरे मन में उठा कि आपने इतनी कंप्यूटर और मोबाइल में सब तमाम तरह की टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, आज लोग जो यूज़ करते हैं इस टेक्नोलॉजी को तो इसमें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उनको मिल रहा होगा।
0: जी, उनका जो
1: हर क्षेत्र में
0: हाँ लोगों पे डिपेंडेंस ख़त्म हो गया है, बच्चे जो है वो अपने आप अपना पढ़ाई कर लेते हैं, अपने आप लिख लेते हैं। अब तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी CBSE ने अलाउ कर दिया है लोगों को कि ब्लाइंड बच्चे कंप्यूटर पे अपना एग्ज़ाम खुद इंडिपेंडेंटली दे सकते हैं। अभी तक उनको लिखना अपने राइटर पे डिपेंड करना होता था कि राइटर जो लिखेगा वो उनको डिपेंडेंट होना पड़ता था उनको राइटर पे। अब उनको राइटर पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, वो चाहें तो अपना अगर उनमें प्रैक्टिस कर ली है तो वो इंडिपेंडेंटली अपना एग्ज़ाम कंप्यूटर पे खुद दे सकते हैं। तो एक वो कॉन्फिडेंस कई लोगों के तो 90% से ऊपर 98% तक मार्क्स आए कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देने के बाद में, तो वो एक फ्रीडम मिल गई है। फिर ऐसे फील्ड्स जहाँ पे वो अभी तक काम नहीं कर पाते थे, पढ़ाई नहीं करते थे, उन फील्ड्स में उनकी पढ़ना शुरू कर दिया। लोग IT के फील्ड में जा रहे हैं, विजुअली इम्पेयर्ड पीपल दे आर गोइंग IT का जो फील्ड है, कंप्यूटर साइंस है, मैनेजमेंट है, MBA कर करके लोग आगे निकल रहे हैं और कॉरपोरेट सेक्टर्स में उनको एम्प्लॉयमेंट्स मिल रहे हैं, फाइनेंस में, HR में, मार्केटिंग में, वो सब लोग जो हैं। अगर आप अपने आप को इक्विप रखेंगे, अपने आप को अप टू डेट रखेंगे, पढ़ाई अच्छी करेंगे और सबसे बड़ी बात है इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे, तो आप बहुत सारे फील्ड्स में अब उनके लिए ओपनिंग्स शुरू खुल गई हैं, नौकरियाँ मिलने लगी हैं लोगों को और लोग इंडिपेंडेंटली काम करने लगे हैं। पिछले 2 साल में इतना ज़बरदस्त फिर से क्रांति आई है IT फील्ड में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग करके बहुत सारे काम हो सकते हैं। मान लीजिए किसी के सामने कोई इमेज है, तो इमेज को वो जो मोबाइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पूरे के माध्यम से पूरा डिस्क्राइब कराया जा सकता है कि किस चीज़ की इमेज है, फ़ोटो में क्या हुआ है, अगर किसी व्यक्ति की फ़ोटो है तो उसने कौन सी ड्रेस पहनी हुई है, उसका वो का उसके आसपास का बैकग्राउंड क्या है, या मान लीजिए मैं इस रूम में आपको बैठ बात कर रहा हूँ तो मैंने इस रूम की फ़ोटो खींची, तो इस रूम में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो सारा कुछ जो है वो मोबाइल के माध्यम से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हम तक पहुँच सकता है। तो हम अपने मोबाइल के माध्यम से पूरी दुनिया को बिना किसी और की मदद से जान सकते हैं।

0: सर, हम अक्सर असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में सुनते हैं काफ़ी, हमें क्या आप उस पर कुछ रोशनी डालेंगे?
1: देखिए, असिस्टिव टेक्नोलॉजी और कुछ नहीं है, जो टेक्नोलॉजी जो है वो अगर किस तरह से एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को, एक किसी एक दिव्यांग व्यक्ति को कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे मदद मिल सकती है, ऐसी टेक्नोलॉजी को हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी बोलते हैं। वो आपको ऑडियो में फीडबैक दे सकती है, वो आपको हैप्टिक फीडबैक मतलब वाइब्रेशन के माध्यम से फीडबैक दे सकती है, वो आपको वॉइस क्लूज के माध्यम से फीडबैक दे सकती है, वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मदद करके आप उसकी मदद ले सकते हैं, आप उसका यूज़ अपने मूवमेंट के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्हील चेयर यूज़ कर रहा है, मोटराइज व्हील चेयर, तो वो उसका यूज़ ऐसे कर सकता है। वो हियरिंग एड हो सकती है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो सुन नहीं पाता है, जैसे मैंने आपको बताया कोई टेक्टाइल क्लू, जैसे मैंने आपको बताया ब्रेल डिस्प्ले आता है। तो ऐसी सारी टेक्नोलॉजी जो किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी को असिस्ट करती है अपने काम को इंडिपेंडेंटली करने में और अच्छे से करने के लिए करने में, और उसकी जो डिसेबिलिटी को ओवरकम करने में उसकी मदद करती है, ऐसी टेक्नोलॉजी को हम लोग बोल सकते हैं कि वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी।
0: सर, एक बात और, ये टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं, लोग इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग इससे अवेयर नहीं होते, मालूम नहीं होता। सर, उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है?
1: इसके लिए आप जैसे लोग जो हैं, जो अपने हम लोगों की बातों को और जगह तक पहुँचाएंगे, जहाँ तक बहुत सारे लोग सुनेंगे इस बात को, तो उन तक तो रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इसके माध्यम से बात पहुंच सकती है। और हम लोग कोशिश भी करते हैं कि सोसाइटी में भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग करें, टीचर्स के साथ में, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ में, डिसेबल्ड लोगों के साथ में, उनको बताएं जा जाके कि भाई देखो ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उनकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ट्रेनिंग दें उनको कि कैसे उसका यूज़ करना है और कैसे उसको मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन करना है इस टेक्नोलॉजी का, और कहाँ कहाँ वो अपने आप को, अपने डिसेबिलिटी को कैसे ओवरकम कर सकते हैं ये यूज़ करके। तो वो काम है लोगों का जो कर सकते हैं, तो ट्रेनिंग और अवेयरनेस इससे मदद मिल पाएगी।
0: अक्टूबर के 2nd Thursday जो होता है उस पर विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है, तो इस पर और कौन कौन से सर कुछ कार्यक्रम वगैरह होते हैं स्पेशल? क्योंकि पहले और अब में तो काफ़ी डिफरेंस आया ही है, आप जो बता रहे हैं टेक्नोलॉजी आ गई, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं।
1: देखिए, ऐसे ऐसे जो ओकेजन्स होते हैं, इनका पर्पज़ यही है कि अधिक से अधिक लोगों तक इस बात की अवेयरनेस पहुंच पाए कि नंबर एक कि दृष्टि साइट को प्रोटेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, नंबर दूसरी बात कि अगर साइट लॉस हो रहा है और वो क्योरेबल है तो उसको पहले क्योर करना, तीसरी बात यह कि जो लोग साइट लूज़ कर चुके हैं उनको सही गाइडेंस मिले, और वो अपने अगर लेट साइट लूज़ होती है, या एक कहना चाहिए कि एक उम्र के बाद अगर साइट लूज़ होती है तो एक ट्रॉमा सा आ जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, उसका फाइनल ईयर, और धीरे धीरे करके उसकी साइट जा रही है, तो वो एक ट्रॉमा के स्टेट में पहुंच जाता है और वो डिप्रेशन की स्टेट में, तो उसको निकालना उस स्टेज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसको ये कॉन्फिडेंस देना कि नहीं, तुम बिना आँख के भी सब कुछ कर सकते हो, चल सकते हो, काम कर सकते हो, पैसे कमा सकते हो, इंडिपेंडेंट लाइफ लीड कर सकते हो, तो वो कॉन्फिडेंस दिलवाना लोगों को, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ों में इस तरह के फेस्टिवल्स ओकेजन्स मदद करते हैं।
0: तो सोसाइटी इसमें किस तरह से हेल्प कर सकती
1: है? सोसाइटी इस तरह से हेल्प कर सकती है कि अगर हम इस बात पे विश्वास करें या इस बात को हम कम्युनिकेट करें या इस बात को समझें कि हर आदमी हर काम को कर सकता है, उसको काम करने का तरीका अलग हो सकता है, पर कैसे करेगा वो हमको फिर फिगर आउट करना होगा। तो हम लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को नौकरियां नहीं देते कि अरे ये ब्लाइंड है, अरे ये काम कैसे करेगा, अरे ये यहाँ पे वहाँ पे जाएगा कैसे लोगों से मिलने के लिए, अरे पहले नौकरी तो दो आप उसको, तो और फिर उसको उस प्रकार की ट्रेनिंग दो। तो वो अगर हम आपको इस बात में अगर हम लोगों को समझा पाएँ कि हर व्यक्ति, और कई बार क्या है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ने, कैसे लोगों की लाइफ को चेंज किया है, डिसेबल्ड लोगों की, ये लोगों को पता नहीं है, और इसीलिए उनको लोगों को काम देने में डरते हैं, लोगों पर उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता है और उनको दया की दृष्टि से देखते हैं, उनको मदद करना चाहिए वो मदद नहीं मिल पाती जो एक्चुअल उनको एम्पावर करने में करा जाए लोगों को और उनको सपोर्ट करें तो वो इंडिपेंडेंट लाइफ लीड कर सकते हैं। तो सोसाइटी का कई काम है कि उसमें आपकी हेल्प करें।
0: सर आपने बहुत अच्छी बात की कि लोग ट्रस्ट नहीं करते, ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सर आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों से जो टेक्नोलॉजी पे हमने बात की कि किस तरह से आखिर में फिर से आप उनसे ये कहेंगे कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और अपनी जो पढ़ाई को ना रुकने दें और अपने भविष्य को बनाएं?
1: सबसे बड़ी बात है कि हमको जो इनक्विजिटिवनेस है या हमारी जिज्ञासा है अगर लोगों में बनी रहेगी और वो एक उनमें डिटर्मिनेशन रहेगा कि हमको अपने आगे बढ़ना है तो लोग उनकी डिसेबल्ड लोगों की मदद करेंगे। तो पहले तो स्टेप दिव्यांग को खुद को लेना है, विकलांग व्यक्ति को, कि वो आगे बढ़े और फिर समाज भी उस उनको मदद करे। दोनों एक बड़ा पारस्परिक सा है ये संबंध, तो एक दूसरे की मदद से लोग आगे बढ़ सकते हैं और एक इंक्लूसिव सोसाइटी को हम लोग आगे की परिकल्पना कर सकते हैं कि एक अच्छी सोसाइटी बन जाएगी। और आई थिंक ये एक बात है।
0: इतना टाइम हो गया पहले और अब में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया होगा
1: जी,
0: मतलब एक पॉजिटिव ये चेंज है। आप जो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी आ गई है, सब लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब हर तरह से लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं और लोग भी हेल्प कर रहे हैं
1: जी। हाँ, लोग हेल्प कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, पर एक जो एक जुनून होना चाहिए कि हम लोग मिलके एक ऐसा माहौल क्रिएट करें या एक ऐसा वातावरण क्रिएट करें कि अधिक से अधिक लोगों को एक एम्पावरमेंट हो पाए, उनको एजुकेशन मिल पाए। तो वो सारी चीज़ें जब तक टेक्नोलॉजी है, मगर टेक्नोलॉजी को हार्नेस करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करके उसका एडवांटेज लोगों तक पहुंचाना उनके भले के लिए, उनके अध्ययन अध्यापन के लिए, उनके रोज़गार में उनको बढ़ावा देने के लिए, उस पर काम होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा एक चीज़ ये है कि एक आस्पेक्ट बहुत है कि अब सारा जो दुनिया है वो इंटरनेट पे डिपेंडेंट है और इंटरनेट पे कुछ गाइडलाइंस हैं कि वेबसाइट्स कैसी हों कि जो ब्लाइंड बच्चा जो है, व्यक्ति है, वो स्क्रीन रीडर के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर पाए
0: जी।
1: है ना, पर वो उनको बोलते हैं वेब कंटेंट एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस, WCAG गाइडलाइंस कहलाती हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बड़े क्लियर इंस्ट्रक्शन है। एक एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन शुरू हुई थी जिसमें कि ना केवल फिजिकल एक्सेसिबिलिटी की बात कही थी कि भाई रैंप, रेलिंग, पाथवे टाइल्स, एक्सेसिबल टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, पर इसके अलावा जितनी सर्विसेज हैं वो भी एक्सेसिबल होनी चाहिए। मान लीजिए आपने एक रेलवे स्टेशन पे टच स्क्रीन लगा रखा है तो वो ब्लाइंड व्यक्ति तो नहीं कर पाएगा उससे काम। अगर वो टॉकिंग होता, स्पीच होता उसके अंदर, तो ब्लाइंड व्यक्ति भी टच स्क्रीन का यूज़ करके टाइम टेबल पता कर लेता। या मान लीजिए आप POS मशीन है तो वहाँ पर वो ब्लाइंड व्यक्ति जो है क्योंकि टच स्क्रीन पर टाइप करके नंबर टाइप करके पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो वेबसाइट्स, ऐप्स और डिवाइसेस, इनको एक्सेसिबल बनाना, या माइक्रोवेव ओवन है उसमें टच स्क्रीन है या वॉशिंग मशीन में टच स्क्रीन है तो वो ब्लाइंड व्यक्ति काम उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। तो उसको सोसाइटी का काम ये है कि हम ऐसा माहौल क्रिएट करें जहाँ पर हर व्यक्ति उसका टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाए।
0: इंस्टीट्यूट्स भी होंगे जो ट्रेनिंग देते होंगे?
1: हाँ, इंस्टीट्यूट्स ट्रेनिंग दे रहे हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करने में। जैसे भोपाल में मैं जानता हूँ कि एक संस्था है जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है कंप्यूटर सिखाने में, मोबाइल का यूज़ करने में ब्लाइंड बच्चों को, तो वो लोग करते हैं। कई और संस्थाएं भी हैं जो कि इसमें काम लोग लगी हुई हैं। बहुत सारे डिवाइस आने लगे हैं आजकल, जैसे मान लीजिए ब्लड प्रेशर मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी आजकल वॉइस आने लगी है, तो आपको सुन के पता पड़ेगा कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, पल्स रेट कितना है। हम लोगों को बहुत दिक्कत हुई कोविड के टाइम पे, जब मान लीजिए क्योंकि अगर उस टाइम पे टॉकिंग थर्मामीटर होता या टॉकिंग ऑक्सीमीटर होता तो लोगों को डर नहीं होता कि अगर किसी ब्लाइंड को कोविड हुआ है तो वो क्या करेगा, वो सामने सोशल डिस्टेंसिंग के कारण कोई बुखार लेने को तैयार नहीं था कि कितना बुखार है भाई इनको। तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं, तो सोसाइटी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई भाई ये इस बात का ध्यान रखें कि कोई चीज़ बन रही है तो उसको ऐसा बनाएं कि डिसेबल्ड लोग भी उसका यूज़ कर पाएं।
0: सर आखिर में कोई आप संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से?
1: संदेश ये है कि बस कुल मिला के अगर सब लोग एक दूसरे का सपोर्ट करें तो बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं।
0: सर आपने रेडियो आज़ाद हिंद से बात की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद सर।
1: जी जी थैंक यू।
0: कार्यक्रम टेक गुरु में आप सुन रहे थे डॉक्टर रोहित त्रिवेदी से बातचीत, जिसमें उन्होंने अपने अनुभव हमसे साझा किए। इस कार्यक्रम की परिकल्पना सुश्री अदिति गौड़ की थी। ये थी रेडियो आजाद हिंद की प्रस्तुति। हमें उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण और ये कार्यक्रम है हमारी सेना हमारा गर्व। वाकई में श्रोताओं, जब जब भी हम अपने सेना का जिक्र करते हैं तो हमारा मानस एक आत्मसम्मान से भर जाता है, गर्व से भर जाता है और देश के प्रति एक अभिमान का भाव स्वतः ही जागृत हो जाता है। निसंदेह इसका श्रेय जाता है हमारी भारतीय सेना के उन वीर सिपाहियों को जो सरहद पर आकाश, समुद्र, जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों में हमारे लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने को तत्पर रहते हैं। देश के प्रति उनके बलिदान, उनके पराक्रम से, उनकी वीरता और उनके साहस की शौर्य गाथाओं से ही भारतीय सेना का इतिहास लिखा गया है। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में जिसका नाम है हमारी सेना हमारा गर्व, हम एक नई श्रृंखला का आगाज कर रहे हैं। कालचक्र के अब हम उस खंड में प्रवेश कर रहे हैं जो इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो ज्यादा दूर की बात नहीं है। जी हाँ, आज से महज 26-27 साल पुरानी ही बात है। आइए इस श्रृंखला को शुरू करते हैं सुदूर उत्तर के लद्दाख के पहाड़ों से, जहां ताशी नामग्याल नाम का एक चरवाहा अपने गुमशुदा याक को खोज रहा था। ये बात है मई सन 1999 की, जब ताशी नामग्याल अपने याक को खोजने के लिए लद्दाख के बटालिक क्षेत्र में काफी ऊपर के पहाड़ों पर पहुंच गए और वहां उन्होंने जो देखा वो उन्हें काफी अटपटा सा लगा। उन्होंने देखा कि कुछ हथियारबंद लोग पहाड़ की चोटी पर हैं, जो कि अपने देश के नहीं दिख रहे। ताशी बिना हड़बड़ाए नीचे उतरे और इसकी सूचना उन्होंने समीप की भारतीय सेना की चौकी को दी। श्रोताओ, बस इतनी सी छोटी सी घटना ने एक बड़े और बेहद ही चुनौतीपूर्ण युद्ध को जन्म दिया, जिसे आज हम कारगिल की लड़ाई के नाम से जानते हैं। ज्यादा देर न करते हुए कारगिल के विजय गाथा को जानने और उसे समझने के लिए आइए एक बार फिर हम रुख करते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा सर की तरफ, जिन्होंने लगभग 20 वर्षों तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं और अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए जीवन के अनमोल वर्षों को अर्पित किया है। सर, कार्यक्रम की इस नई श्रृंखला में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जय हिंद पूर्वा जी, जय हिंद श्रोताओं। आपने जो अभी कहा
1: जी,
2: जिस तरह से आपने डिस्क्राइब किया, इसको और थोड़ा अच्छे से समझने के लिए मैं थोड़ा और पीछे जाता हूँ।
1: जी बिल्कुल।
2: अगर हम इसका जेनेसिस देखें, जो कारगिल हुआ था, इट इज द सेम प्रॉब्लम जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर का लीगली इंडिया में शामिल होना
1: जी,
2: पाकिस्तान को कभी भी भाया नहीं था और उसकी हमेशा ये कोशिश रही है और है कि वो किसी तरह से इसको कब्जे में करें। तो ये हमने पहले भी अपने एपिसोड्स में देखा है कि हर बार जो है वो यही कोशिश में रहता है और इसी तरह से वो कोशिश करता रहा है। तो कारगिल का भी जो युद्ध था, ये भी एक तरह से पाकिस्तान का अटेम्प्ट था कश्मीर मुद्दे वाला
1: जी,
2: जो है
1: जी।
2: और स्पेशली जैसे हमने पहले सियाचिन ग्लेशियर का एपिसोड किया
1: जी,
2: तो उसमें आपने देखा होगा कि पाकिस्तान साल्टर रिज पे जमाने में और एस्टैब्लिश करने में, पोस्ट एस्टैब्लिश करने में फेल रहा था और खासकर उसने अपनी कैद पोस्ट जो है लूज करी थी, तो उसके कारण भी जो है ये कारगिल का युद्ध जो है उसने छेड़ा था।
1: उसे भूल नहीं पाए
2: वो भूल नहीं पाए और ना भूलते हैं वाली बात है। तो ये जो है एक तरह से उनका वेल प्लान्ड ऑपरेशन था इन्फिल्ट्रेशन का। अब उसी समय आप देखिए कि मई 1998 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर्स बन गए थे, जिससे के कारण के सिक्योरिटी कंसर्न जो है बढ़ गए थे। दोनों देशों में टेंशन को कम करने के लिए और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए, अगर आपको याद हो लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ था
1: जी, बिल्कुल, लाहौर घोषणा पत्र,
2: हाँ, फरवरी 1999 में
1: जी,
2: जो कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री जो थे उस समय उन्होंने किया था।
1: हाँ,
2: और उस समय अगर आपको याद हो हमारे जो प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने हिस्टोरिक बस यात्रा करी थी, लाहौर गए थे। लाहौर डिक्लेरेशन जो साइन हुआ था
1: जी,
2: उसका जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो ये था कि दोनों जो देश हैं वो पीसफुल रिजोल्यूशन निकालेंगे
1: जी,
2: जो लॉन्ग आउटस्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं
1: जी,
2: स्पेशली ओवर जम्मू एंड कश्मीर का जो है इसके ऊपर
1: जी।
2: और इसके साथ साथ दोनों देशों ने मतलब एक तरह से एक दूसरे को भरोसा भी दिया कि अनऑथराइज्ड यूज ऑफ जो है और एक्सीडेंटल यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होगा, और दोनों देशों के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है वो डिस्कस किए जाएंगे, बढ़ाए जाएंगे
1: जी।
2: और ये सब पूरा करा था तो एक तरह से माहौल ऐसा था कि बहुत ही पीसफुल माहौल था
1: जी,
2: बहुत अच्छा शांतिपूर्ण माहौल चल रहा था। लेकिन हमें नहीं पता था कि इसी वक्त जो है पाकिस्तान आर्मी कारगिल के अंदर जो है इंट्रूजन कर रही थी जो है
1: जी।
2: इसी दौरान जो पाकिस्तान आर्मी है उसने कारगिल सेक्टर में
1: जी,
2: जो है एलओसी को ब्रीच किया और ब्रीच करके जो वहां की डोमिनेटिंग हाइट्स थी स्पेशली तो उसमें जो है उनको ऑक्यूपाई किया।
1: यही दौरान था सर जिस समय हम लोगों ने समझौता किया था भारत पाकिस्तान,
2: बिल्कुल ये उसी समय की बात है। मतलब उसके आप देखिए फरवरी में लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ और मई में हम लोग को मालूम चला कि मतलब ये इंट्रूजन हो गया। तो ये तो वो वक्त था जब हम समझ रहे थे कि पाकिस्तान के साथ हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई है और शांतिपूर्ण माहौल है, भरोसा किया जा सकता है किसी तरह का, मतलब जो है इट वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ठीक है, तो उन्होंने इसको ऑपरेशन बदर का नाम दिया था मतलब पाकिस्तान ने, और एम उनका वही था कि कश्मीर और लद्दाख को कट कर सकें और जो ट्रुप्स हैं इंडियन आर्मी के ट्रुप्स हैं उनको सियाचिन ग्लेशियर से भी जो है मतलब आइसोलेट कर सकें और भारत को मतलब वो फोर्स करें कश्मीर के मुद्दे के ऊपर जो है डिस्प्यूट के ऊपर बात करके, और मतलब एक तरह से मतलब वो कश्मीर को अपने कब्जे में करना चाहते थे, है ना। तो ये जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ था ये तकरीबन जो है 160 किलोमीटर के जो रिज लाइन है एलओसी है उसमें हुआ था, और जो जहाँ पे हुआ था इन्फिल्ट्रेशन हुआ था ये जो रोड है हमारी NH1 अल्फा इसको पूरी तरह से मतलब
1: नेशनल
2: हाईवे इसको डोमिनेट करता हुआ था,
1: लेह तक जाता है
2: जो ले जाता है श्रीनगर से जो ले जाता है उसको डोमिनेट कर रहा था, है ना। तो ये जो जैसे अब ये 160 किलोमीटर के स्ट्रेच पे मतलब जो इम्पोर्टेंट हाइट्स थी जहाँ पे वो डोमिनेट कर सकते थे वो उन्होंने कर सकते थे वो उन्होंने जो है ऑक्यूपाई करी हुई थी। अब इस इलाके में आपको मालूम है कि जो पोस्ट है मिलिट्री पोस्ट है जो हाइट्स हैं वो सारी की सारी 16,000 फीट से जो है ऊपर की हाइट पे 16,000-18,000 के ऊपर जाती है। तो मई में जैसे आपने अभी बताया कि कल से हमें खबर लगी कि जो है आइडेंटिफाइड आदमी जो है कारगिल में देखे गए हैं, उसके बाद फिर तो काफी ज्यादा एक्सटेंसिव पेट्रोलिंग करी गई, एरियल रेकीस हुई कंडक्ट किया, जिससे फिर हमें समझ में आया कि ये मामला बड़ा है और इंट्रूजन हुआ है। और पाकिस्तान इस बात से पूरी तरह से नकार रहा था कि ये उनकी आर्मी यहाँ नहीं है। उनका कहना था अगर वहां पे है तो हो सकता है मुजाहिदीन हो, मिलिटेंट्स हो सकते हैं, लेकिन हमारी आर्मी नहीं है।
1: अच्छा,
2: इन स्पाइट ऑफ मतलब डूइंग इट दे वर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट इट।
1: तो सर पहले भी उन्होंने हमेशा से इसी तरह से किया जैसे रजाकार को वो आगे कर देते थे,
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: उसी तरह से ये भी था,
2: बिल्कुल उसी तरह से ये भी था। और एम भी अगर आप देखें तो वही सेम वही उसी तरह
1: उद्देश्य भी उनका वही है, जम्मू कश्मीर को हथियाना,
2: बिल्कुल बिल्कुल जो है। तो अब यहाँ पे जो है उन्होंने रिज लाइन तो ली है
1: जी,
2: लेकिन एक तो वो हमारा एरिया है, दूसरा वो डोमिनेटिंग एरिया है, तो उससे तो उनको हमको निकालना हमारे लिए तो जरूरी था, हर हालत में जरूरी था। एंड दूसरी बात ये थी कि अगर आप देखें इस एल्टीट्यूड के ऊपर जो है जब आप अटैक करने जाते हैं बहुत ही मतलब एक मुश्किल काम है,
1: दुष्कर है सर, बहुत ज्यादा,
2: क्योंकि एक तो पहाड़ियां हैं,
1: ऊंचाई है,
2: ऊंचाई है, ऊंचाई में है, दूसरा ये है कि हाइट होने के कारण रेरिफाइड ऑक्सीजन है वहां पे, ठंड बहुत ज्यादा है, माइनस का टेम्परेचर है, तो उसके लिए आपको स्पेशल एक्रोमेटाइजेशन करना पड़ता है, स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए होता है, और उतना ज्यादा कंबसम होता है, मतलब चलना बहुत मुश्किल है। एंड देन आप अटैक कर रहे हैं
1: और सर हथियार और रसद भी आपके साथ है,
2: साथ है
1: जी।
2: और डिफेंडर जो है ऊपर बैठा हुआ है
1: ऊंचाई पर
2: बैठा, तो उसके लिए बहुत आसान है कि उसको पूरे एडवांटेज
1: जी, जी।
2: लेकिन इसी कारण से क्योंकि वो डोमिनेट कर रहा है NH1 अल्फा में इंटरफेरेंस कर रहा है, अगर इंटरफेरेंस कर रहा है तो लद्दाख सेक्टर कट होता है
1: जी।
2: तो इसलिए इट वाज वेरी मच रिक्वायर्ड दैट वी शुड थ्रो देम आउट, वी शुड डिस्ट्रॉय देम। दूसरी बात ये थी कि ये कारगिल सेक्टर में हुआ था। इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड कि जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको हम कारगिल तक ही रिस्ट्रिक्ट करके रखेंगे टू अवॉइड ए फुल स्केल वॉर विद पाकिस्तान। मतलब दिस डिसीजन वाज टेकन तो मतलब किया है कि बाकी जगह ना, तो इसके कारण जो है एक और मतलब उन्होंने डायरेक्शन इशू किया कि भाई LOC विल नॉट बी क्रॉस्ड, आपको इनको निकालना है, आप निकालेंगे लेकिन जो है
1: लाइन ऑफ कंट्रोल को
2: आप क्रॉस नहीं करेंगे। तो बहुत से ज्यादा ये मुश्किल चैलेंजिंग टास्क बन जाता है एफओस के लिए जो
1: जी, बिल्कुल,
2: जिनको ऑपरेट करते समय ये काफी दिक्कतें आती हैं। एनीवे बट दिस वाज अबाइडेड बाय, है ना, इसको बिल्कुल फॉलो किया गया
1: जी।
2: ये फिर से जो है अगर हम देखें तो तीनों जो फोर्सेस है आर्मी नेवी एफओस तीनों का ऑपरेशन था। IAF को इंडियन एफओस को स्ट्राइक करने का टास्क दिया गया था जो एनिमी पोस्ट है उनके बेसिस हैं जिसको भी कर सकते हैं ठीक है बिना क्रॉस किए हुए। एंड उन्होंने अपना पहला जो है ऑपरेशन शुरू किया था 26 मई को
1: जी।
2: जो है जिसको ऑपरेशन सफेद सागर बोलते हैं जी। और नेवी वाज अलर्टेड एट द सेम टाइम कि अगर पाकिस्तान कोई और किसी तरह से कुछ अटैक करता है या नेवी से कुछ होता है तो नेवी वाज अलर्टेड स्पेशली द कोस्टल एरियाज में जो हो तो अगर मतलब उनसे मतलब उम्मीद जा सकती है कि वो किस तरह का रेड कर सकते हैं कुछ और कर सकते हैं। एंड वहां पे फिर इसको रिस्ट्रिक्ट किया तो एडिशनल फोर्सेस हमें कारगिल में मतलब जो है आर्मी की जो इन्फेंट्री बटालियंस हैं, आर्टिलरी है ठीक है, स्पेशल फोर्सेस हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉजिस्टिक यूनिट्स हैं, मतलब सबको इंडक्ट करना शुरू किया टू डील विद द सिचुएशन। अब सिर्फ कारगिल में भी अगर आपको लड़ना है तो डिफेंस सिर्फ पोस्चर तो पूरी कंट्री में पूरे के पूरे बॉर्डर के ऊपर आपको करना है तो मतलब
1: तो पूरे सीमाओं की चाहिए
2: बिल्कुल तो पूरी की पूरी जो हमारी फोर्सेस हैं
1: जी
2: सारी की सारी जो है मोबिलाइज हुई थी और डिप्लॉय हुई थी
1: जी,
2: ताकि कहीं और किसी सेक्टर में अगर किसी तरह से पाकिस्तान की तरफ से अगर कुछ होता है एस्केलेशन होता है वो कोई और नया फ्रंट खोलना चाहते हैं तो उसको हम कंट्रोल कर सके। एंड स्पेसिफिकली इवन वी हैड टू टेक केयर ऑफ द चाइना बॉर्डर आल्सो कि अगर ऐसे टाइम पे अगर पाकिस्तान के कहने से चाइना
1: उसका साथ
2: देता है तो इट बिकम्स अ डबल फ्रंट फाइट। इसके अलावा जो है जम्मू एंड कश्मीर में स्पेसिफिक इनिशिएटिव लेने पड़ रहे थे क्योंकि वहां पे टेररिस्ट एक्शंस को भी कंट्रोल करना है क्योंकि ऐसे टाइम पे इट वाज एक्सपेक्टेड कि पाकिस्तान उनको भी जो है भड़का के
1: यानी अंदरूनी हालातों पर भी नियंत्रण की उतनी ही आवश्यकता है
2: जितना आपको जो है आपके बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना है। कारगिल के बारे में तो हम पहले भी अपने एपिसोड्स में डिस्कस कर चुके हैं कि ये काफी हाई माउंटेन रेंजेस हैं, 18,000 फीट उससे ऊपर की रेंजेस हैं, स्नो क्लैड रहती है, बर्फ रहती है पूरी, और क्या है कि ये पहाड़ हैं इसके जो उसमें कोई पेड़ नहीं है तो किसी तरह का छुपाव नहीं है, बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं वहां पे जो है एंड माइनस में टेम्परेचर जाता है, एल्टीट्यूड एरिया है तो -30 डिग्री उससे भी कम हो जाता है तो जो चढ़ने के लिए है अगेन आई रिपीट माई सेल्फ कि इट्स अ वेरी स्टीप क्लाइंब, आपको ऊपर जाना है जिसको ऑक्यूपाई करा हुआ है और ओपन में जा रहे हैं हम, एनिमी आपकी सारी मूवमेंट देख रहा है किसी तरह से मतलब आपको कंसीलमेंट है ही नहीं किसी भी तरह से तो ये सब जो थी मतलब काफी
1: कठिन परिस्थितियां
2: बेहद कठिन परिस्थितियां थी। एंड आपको ये रेरिफाइड ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में आपका पर्सन का और इक्विपमेंट का जो है एफिशिएंसी काफी कम हो जाती है, फिर सारे के सारे जो मूव्स करने हैं आपको 140 करने हैं क्योंकि ना तो आपकी गाड़ी जा सकती है ना आप हेलीकॉप्टर्स का यूज कर सकते हैं। इन नेचुरल जो इम्पीडिमेंट्स थे इसके अलावा एक और ये रिस्ट्रिक्शन थे कि LOC क्रॉस नहीं करना है तो इन सबको देखते हुए जो है तैयारी की गई, बट ये जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं इससे सोल्जर जो है
1: आपके काम में बाधा है ना सर, ये
2: बाधा तो है लेकिन इसको हम बाधा मानते नहीं है,
1: सही बात है।
2: जो टास्क दिया गया है जो ऑब्जेक्टिव है वो तो पूरा करना ही
1: करना
2: है,
1: किसी भी हालत में
2: और वही हमारे जो जवानों की ये एक मतलब बहादुरी है जो है कि वो कभी भी इन सब चीजों से डटन नहीं होते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है।
1: हाँ, तो सर
2: उनको मालूम है ये मेरा ऑब्जेक्टिव है जी, जी, और ये मैंने करना ही करना। हाँ, है
1: तो सर इंडियन आर्मी में एक पॉपुलर सेइंग भी है कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग।
2: यस एग्जैक्टली, एंड देयर आर नो ऑब्स्टिकल्स फॉर इन्फेंट्री। तो इन्फेंट्री के लिए कोई ऑब्स्टिकल नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो कहीं भी जा सकती है, कहीं भी पहुंच सकती है। तो ऑफ विजय जो था, जो कारगिल में हमने इसको लिया, इसको हम ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं। इसमें वंस अगेन मतलब वी शोकेस द ब्रेवरी ऑफ इंडियन फोर्सेस, देयर ग्रिट, डिटरमिनेशन एंड फाइटिंग स्पिरिट। वंस अगेन वी प्रूव्ड दैट फॉर अ सोल्जर कंट्री इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एवर, हमेशा जो है। एंड सोल्जर्स फॉट दिस बैटल आफ्टर बैटल विदाउट केयरिंग फॉर देयर लाइव्स, एक के बाद जो है, हम देखेंगे, हम जिक्र भी करेंगे, लड़ते रहे जब तक कि आखिरी इंट्रूडर को हमने मार नहीं दिया
1: या
2: भगा नहीं दिया, और हमने अपना तिरंगा वहां पे लहराया नहीं
1: जी।
2: तब तक ये सोल्जर्स लड़े हैं
1: जी जी जी।
2: इट वाज ए वेरी हैवी कैजुअल्टीज।
1: हाँ सर, ये सर अब तक जो हम करते चले आ रहे हैं युद्ध की बातें, उसमें कारगिल का युद्ध जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं या समझते हैं, तो उसमें ये बहुत जो कैजुअल्टीज हैं उसके ऊपर बहुत दुख होता है, और ऐसा लगता है कि ये दुश्मन से ज़्यादा मौसम की मार जो थी और चोटियों पर जो उनका कब्जा करने की जो एक उनमें एक अदम्य सोच थी, उसी के कारण हम वहां तक पहुंचे।
2: हाँ बिल्कुल सही बात है
1: जी,
2: बिल्कुल हम जिक्र करेंगे इसका, तो आपको एहसास होगा कि कितना मतलब मुश्किल टास्क था,
1: दुष्कर था,
2: बहुत ही दुष्कर टास्क था जो कि इन्होंने पूरा किया
1: जी।
2: और विजय को अगर हम डिस्कस करें
1: जी बिल्कुल,
2: तो उसमें इट विल बी बेटर अब भी अगर हम सेक्टर वाइज जैसे डिस्कस करते हैं।
1: हाँ जी।
2: तो सबसे पहले अगर हम द्रास सेक्टर की बात करेंगे, तो द्रास जो है तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है कारगिल से। जब आप श्रीनगर से जाते हैं तो जुजिला क्रॉस करने के बाद पहले द्रास आता है, फिर उसके बाद जो है कारगिल आता है। द्रास को सेकेंड कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड भी बोला जाता है, वहाँ पे जो है -50 तक का जो है टेम्परेचर जाता है। और ये जो इलाका था इसमें जो है तोलोलिंग रिज है
1: जी,
2: मेरे ख्याल से काफी फेमस हो चुकी
1: हाँ
2: है, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। ये तकरीबन द्रास से 5 किलोमीटर नॉर्थ में है
1: जी।
2: और ये जो है श्रीनगर ले हाईवे जो है NH1 अल्फा, उस समय NH1 अल्फा बोलते थे, उसको प्रॉपरली डोमिनेट करती है। और यही जो था सबसे डीप पेनिट्रेशन था इंट्रूडर्स का, सबसे ज्यादा जो है इंट्रूजन जो हुआ था वो इस जगह पे हुआ था। तो तोलोलिंग रिज लाइन थी, उसके पास आगे फिर 0.5140 हाइट आती है
1: जी।
2: ये जो कॉम्प्लेक्स था इसमें जो इंट्रूडर्स बैठे हुए थे, मतलब वो क्या कर रहे थे कि जितना वेकुलर मूवमेंट था उसके ऊपर जो है उनका जो है मतलब इंटरफेरेंस था, आर्टिलरी शेलिंग करवा रहे थे वो, तो बिल्कुल उनका मतलब जो है रोकने के लिए की पुरजोर कोशिश रही थी
1: जी।
2: तो इसको जो कैप्चर करने का टास्क था, उस समय वहां पे 8 माउंटेन डिव होती थी
1: जी,
2: 56 माउंटेन ब्रिगेड थी, उसको दिया गया था। इसमें जब अटैक कर रहे होते हैं, देखिए क्या होता है कि आपको अटैक से पहले काफी चीजें समझनी होती हैं, प्लानिंग के दौरान जो है कि दुश्मन कहाँ है, कितना है
1: जी,
2: किस तादाद कितनी है, कितने किस तरह के उसके हथियार हैं, उसके बाद लेआउट क्या है डिफेंसेस का, उसके पास डिफेंस किस तरह के हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं नहीं है, फायर पावर सपोर्ट अवेलेबल है या नहीं है, और क्या उसको कहीं और से सपोर्ट रीइन्फोर्समेंट मिल सकता है नहीं मिल सकता है, तो ऐसा मतलब जो है सब कुछ मतलब मालूम होना चाहिए। हाउएवर ये जो वाइटल इन्फॉर्मेशन है वो इतनी डिटेल में अवेलेबल नहीं थी। इनिशियली तो मतलब ये बोला गया था कि 8 से 10 इंट्रूडर्स हैं वहाँ पे, जो कि मुजाहिदीन हो सकते हैं, मिलिटेंट्स हो सकते हैं, जिन्होंने कि ये जो है फीचर्स ऑक्यूपाई करे हुए हैं पाक आर्मी के सपोर्ट से, पाकिस्तान की आर्मी के सपोर्ट से।
1: हमें तब तक मालूम नहीं था कि पाकिस्तानी सेना है या आतंकवादी है,
2: बिल्कुल हमें ये क्लियर नहीं था, और यही माना जा रहा था कि ये लोग जो है मुजाहिदीन या मिलिटेंट्स हैं, है ना। तो अगर मिलिटेंट्स होते हैं तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि देखो कि उनके पास जो है स्मॉल आर्म्स होंगे, राइफल्स होंगी, ज्यादा LMG हो सकती हैं, तो वही उसी तरह से जो है फर्स्ट अटैक 18 ग्रेनेडियर्स यूनिट है,
1: इसी सोच के साथ पहला आक्रमण किया गया।
2: हाँ पहला आक्रमण किया गया था कि मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब आक्रमण तो आक्रमण है, तैयारी तो पूरी करी ही है, सब कुछ करना है, लेकिन एक जब आपका ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है और एक बार जब कम इन्फॉर्मेशन होती है उसका फर्क होता है
1: सूचना के आधार पर।
2: एग्जैक्टली, तो जो फर्स्ट अटैक अटैक किया गया था 22-23 मई को, मतलब उसमें भी अटैक में पूरा सपोर्ट था आर्टिलरी का, मोटर्स का, एमजीज का। तो जब ये ट्रूप्स पहुंचे हैं उस इलाके में जहां दुश्मन थे, एनिमी लोकेशन पहुंचे, तो संडे इनके ऊपर बहुत हैवी फायर आना शुरू हुआ।
1: अच्छा।
2: और उस फायर में मतलब ये रियलाइज किया गया कि मीडियम मशीन गन्स भी थी, हैवी मशीन गन्स भी थी, इवन एयर डिफेंस वेपन्स भी थे, आर्टिलरी का भी फायर आ रहा था। तो ये रियलाइज हुआ कि ये लोग जो है मुजाहिदीन नहीं है, इस तरह के हथियार मुजाहिदीन नहीं रखते
1: नहीं
2: हैं
1: रखते।
2: ये पाकिस्तान आर्मी के रेगुलर आर्मी के ट्रुप्स हैं जो कि वहां पे आए हुए हैं।
1: अच्छा।
2: जैसे हमने पहले जिक्र किया कि डिफेंस पे वो ऊपर बैठे हुए हैं, अब आप ऊपर अटैक वाले जा रहे हैं, सडनली फायरिंग आ रही है, छुपने की जगह नहीं है। तो आप उनकी हालत सोचिए, जो है दे वर पिन डाउन बाय हैवी फायर बट दे केप्ट ऑन होल्डिंग देयर पोजीशन,
1: जगह नहीं छोड़ी।
2: उसके बावजूद कि उनके ऊपर फायरिंग आती रही, बट उन्होंने जो है अपनी जगह नहीं छोड़ी है ना। अब तक जो है सिचुएशन जैसे क्लियर हो रही थी, तो इंडियन फोर्सेस में आर्मी ने जो है एडिशनल आर्टिलरी इंक्लूडिंग बोफोर्स वगैरह जो है इंक्लूड किया, और उसका जो है कांस्टेंट फायर जो है दुश्मन की पोजीशंस पे करते रहे जो है। तो इसके बाद जब और आर्टिलरी का जब सपोर्ट मिला, फायर सपोर्ट मिला, तो 1898 ने फिर से अपना जो है जो अटैक था, उनके जो 2IC साहब होते थे, 2IC मतलब सेकंड इन कमांड जो होते हैं बटालियन में, कर्नल विश्वनाथन साहब थे, वो अटैक लीड कर रहे थे, और उनके जो एफर्ट्स थे और सोल्जर्स की जो ब्रेवरी थी, एफर्ट्स थे, उससे जो है ये लोग जो है एक फुटहोल्ड एस्टैब्लिश करने में वहां पे सफल कामयाब रहे।
1: जी, जी।
2: और जो कर्नल विश्वनाथन साहब थे वो ही वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, एंड उसमें उनको काफी बुलेट इंजरीज हुई, एंड इन दिस अटैक एक्चुअली ही लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द कंट्री, वो शहीद हुए। इसी तरह से एक दूसरे ऑफिसर थे मेजर RS अधिकारी, वो भी जो है लीड कर रहे थे, सबको लीड करते करते उनको भी ही ऑल्सो लेट डाउन हिज लाइफ फॉर द कंट्री। तो ये जो ब्रेव ऑफिसर्स हैं जिन्होंने लीड किया और ब्रेव सोल्जर्स हैं, उनके कारण जो है ये फुटहोल्ड पहले एस्टैब्लिश हुआ है।
1: पहली कामयाबी
2: जो थी एक तरह से वो हासिल हुई हमें। आप समझ सकते हैं जो पहली बार जब जो कोई जाता है और उसके लिए कितना मतलब मुश्किल होता है, उसके लिए हर एक चीज एक सरप्राइज थी, दुश्मन के बारे में इतना जानकारी नहीं थी, और अचानक फायर आना सरप्राइज था, फिर उस टेम्परेचर में जो है कोल्ड में जो है आप बैठे हुए हैं, एंड बट स्टिल जो बहादुर सिपाही थे, बहादुर पल्टन है, उन्होंने जो है अपना फुटहोल्ड एस्टैब्लिश किया। तो आगे के अटैक के लिए देन फिर जो है 2 राजरिफ बटालियन को इसमें टास्क दिया गया।
1: अच्छा।
2: तो उन्होंने जो है अपना अटैक पे 12 जून को कमेंस किया था।
1: अच्छा।
2: अब उस समय जो है उनकी प्रोग्रेस, अब देखिए क्योंकि हालात ऐसे देखिए, ऊपर से आपको फायरिंग भी आ रही है, इंटेंस रेजिस्टेंस मिल रहा है दुश्मन का, स्टीप क्लाइम है, पूरा एक्सपोज टेरेन है, उसमें क्या होता है कि आपके जो नेचुरली जो आपका प्रोग्रेस होता है स्लो होता है।
1: जी, जहां तक मुझे जानकारी है जब इस तरह की लड़ाई होती है तो क्या रात में ही आगे बढ़ा जाता है?
2: रात में प्रेफर किया जाता है क्योंकि रात में ही जो है आपको आपके लिए सपोर्ट है
1: जी, दुश्मन से आप तभी छुप सकते
2: हैं, तभी आप छुप सकते हैं, तो रात को ही करा जाता है। और क्योंकि ओपन दिन में तो अगर मतलब वही होता है, दिन में जब अटैक स्टॉल हो जाता है तो आप तो बिल्कुल 100% एक्सपोज रहे बैठे हुए हैं
1: जी,
2: और आपको ऊपर से देख रहा है, तो 100% रात को ही अटैक किया जाता है ताकि हमें इसका फायदा मिले। तो ये जो एक तरह से अभी जैसे जिक्र कर रहा था, स्टीप लाइन था, सब कुछ था, उसके बावजूद जो है बहादुर सिपाही हैं जो इंच बाय इंच आगे बढ़ते रहे है ना। और जब एनिमी की मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो उनका जो है फायरिंग भी जो है उनकी ज्यादा होने लगी,
1: ज्यादा होती जा रही थी,
2: तो कैजुअलिटीज भी बढ़ती जा रही थी, पर इन सबसे जो है फिर भी नो डिटरेंस, एंड द सोल्जर्स एंड द बटालियन के जो ऑफिसर लीड कर रहे थे, दे केप्ट ऑन मूविंग अहेड, आगे बढ़ते रहे, एंड फाइनली दे सक्सीडेड इन रीचिंग द एनिमी लोकेशंस। ठीक है। फिर उसके बाद जब वो पहुंच गए हैं ऊपर तो सबने मिलके जो है अटैक किया, है ना, संघर्ष जो थे, क्योंकि वहां उन्होंने ना पत्थर से संघर्ष बना रखे थे
1: जिसमें
2: बंकर तो सॉलिड होते हैं, संघर्ष होते हैं जो मतलब एक पत्थर होते हैं,
1: हाँ
2: वो बनाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद जब ये अटैक हुआ तो इवन मतलब अब इतना पास दुश्मन है कि देन इट बिकम ए हैंड टू हैंड फाइट। हैंड टू हैंड फाइट जो है मतलब इस जमाने में लड़ना भी बहुत बड़ी बात बनी है। तो इसमें मेजोरिटी ऑफ इंट्रूडर्स जो थे वो तो मारे गए, ठीक है, और जो थोड़े बहुत बचे थे उन्होंने पोस्ट छोड़ दी। तो तोलोलिंग वॉज द फर्स्ट मेजर सक्सेस आफ्टर हैवी फाइटिंग एंड सेक्रीफाइस, ठीक है। और ये 17 जून को जो है, तीन मतलब ऑलमोस्ट 3 हफ्ते के बाद जो है हमें सफलता मिली। अगर आप देखें
1: बहुत लंबा समय है, बहुत लंबा समय युद्ध के हिसाब से, तीन हफ्ते
2: में ये सफलता मिली। और इसमें जो है 3 officer, 4 JCO, 16 other rank शहीद हुए थे और तकरीबन 50 से ज्यादा जो है घायल हुए।
1: इस शहादत से ही समझा जा सकता है सर वो कितनी कठिन जगह थी जिसको हमने जीता।
2: और वहाँ फिर हमें जो है पता चला
1: जी
2: कि ये जो लोग बैठे हुए हैं ये निसंदेह जो है पाकिस्तान आर्मी के हैं
1: जी,
2: क्योंकि उस तरह का वेपन मिले,
1: सबूत,
2: रॉकेट लॉन्चर्स थे, 81M मोटर्स थे, उसका एमिनेशन था, फिर डॉक्यूमेंट्स थे जो पाकिस्तान आर्मी के जो है जो डॉक्यूमेंट्स उन लोग के जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स थे उससे मतलब ये प्रूव हुआ कि ये जो है कोई मुजाहिदीन नहीं है, ये मिलिटेंट्स नहीं है और ये जो है रेगुलर पाकिस्तान
1: पाकिस्तानी सेना है
2: जी। तो इसके बावजूद जो है पाकिस्तान आर्मी मानने को तैयार नहीं हो रही
1: सर, हमेशा से उनका यही रहा है। तो श्रोताओं, युद्ध भूमि पर हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे सैनिकों का वो जज्बा है, वो जुनून है जो सियाचिन और कारगिल की चोटियों से भी कई गुना ऊंचा है, जो दुश्मन को पीछे हटने को मजबूर कर देता है, बरबस कर देता है। कारगिल के इस जंग की विजय गाथा को हम आगे भी जारी रखेंगे कार्यक्रम के अगले एपिसोड्स में भी, और जानेंगे कि तोलोलिंग को फतह करने के बाद हमारी अगली चुनौतियां क्या थी। तो सर, आज इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आज आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू बरुआ जी, जय हिंद।
1: जय हिंद सर। तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन था संतोष कुमार वर्मा का, परिकल्पना की अदिति गौड़ ने, ध्वनि संपादन था अमित कुंदानी का और समन्वय सहयोग रहा सतीश बाथम का। मैं थी आपके साथ आपकी रेडियो मित्र पूर्वा खले। तो दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम से, नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। देश का चैनल, देश के लिए सुनते रहिए।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान। श्रोताओं, पिछले एपिसोड में हमने जाना था हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हाल की प्रेरक कहानी। दादू से रुचि ने जाना कि कैसे हाल लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और अन्य वायुयान बनाकर भारत की आकाशीय शक्ति को नई ऊंचाइयां प्रदान करता है। लेकिन क्या केवल विमान बना लेना ही पर्याप्त है? क्या एक लड़ाकू विमान बिना रडार, बिना संचार प्रणाली और बिना आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है? यही प्रश्न आज रुचि के मन में भी है। आइए चलते हैं दादू और रुचि के घर पर।
1: दादू, पिछली बार हमने हाल के बारे में चर्चा की थी। तेजस लड़ाकू विमान और ध्रुव हेलीकॉप्टर के बारे में जानकारी पाकर अब मेरे मन में और भी सवाल आने लगे हैं दादू। आज आपको उन सभी सवालों के जवाब देने होंगे। बताइए ना, आप मेरे सवालों के जवाब देंगे ना दादाजी?
0: अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है बिटिया, बिल्कुल दूंगा। चलो, आज मैं तुम्हें एक नई कहानी सुनाता हूँ।
1: अरे वाह, मैं रेडी हूँ दादाजी। वैसे आज आप किस बारे में बताने वाले हैं?
0: सोचो सोचो, दिमाग लड़ाओ बिटिया।
1: पिछली बार आपने बताया था कि हाल विमान बनाती है, लेकिन विमान को रास्ता कौन दिखाता है? दुश्मन के विमान की पहचान कौन करता है? सैनिकों तक संदेश कौन पहुंचाता है? आज मुझे इसी बारे में जानने को मिलेगा। सही कहा ना मैंने?
0: अरे बिल्कुल सही कहा बिटिया, शाबाश। क्या बात है, लगता है तुम अब इन देश के संस्थानों की विशेषज्ञ बनने वाली हो।
1: क्या दादू, आप भी ना, अब बताइए भी।
0: हाँ हाँ बताता हूँ। सुनो बेटा, जिस प्रकार शरीर में आंखें, कान और मस्तिष्क महत्वपूर्ण होते हैं, उसी तरह किसी भी आधुनिक सेना के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियां महत्वपूर्ण होती हैं। और भारत में ऐसी प्रणालियों के निर्माण का सबसे बड़ा नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL।
1: तो आज हम BEL की कहानी सुनने वाले हैं।
0: हाँ बिटिया, आज हम उस संस्था की कहानी जानेंगे जो दिखाई कम देती है लेकिन देश की सुरक्षा में उसकी बहुत बड़ी भूमिका है।
1: दादू, BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की शुरुआत हुई कब थी?
0: किसी भी संस्था की कहानी जानने के लिए उसके जन्म का कारण जानना बहुत जरूरी होता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना 1954 में बेंगलुरु में की गई थी।
1: अच्छा।
0: हाँ, उस समय भारत को रक्षा क्षेत्र में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बहुत जरूरत थी।
1: भला ऐसा क्यों दादाजी?
0: बेटा, आजादी के बाद भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ थी। देश को अपनी सीमाओं की सुरक्षा करनी थी, सेना को आधुनिक बनाना था और रक्षा क्षेत्र में विदेशी देशों पर निर्भरता भी कम करनी थी। और फिर सरकार चाहती थी कि देश अपनी जरूरतों के लिए किसी विदेशी कंपनियों पर निर्भर ना रहे। बस यही कारण था BEL की स्थापना का।
1: दादाजी, मतलब आत्मनिर्भर भारत का सपना तब से देखा जा रहा था?
0: बिल्कुल, आज जैसे हम आत्मनिर्भर भारत कहते हैं ना बेटा, उसकी नींव ऐसे ही संस्थानों ने दशकों पहले रखनी शुरू कर दी थी।
1: मतलब उस समय भारत में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं बनते थे?
0: बहुत कम बनते थे बेटा। सेना को रडार, संचार उपकरण और अन्य महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। युद्ध या संकट के समय ये निर्भरता बहुत बड़ी समस्या बन सकती थी।
1: तभी सरकार ने इसका समाधान खोजा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना करके। अच्छा दादाजी, तो आज BEL कितनी बड़ी संस्था है?
0: आज भारत

0: इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारत सरकार का एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ये केवल एक कारखाना नहीं है, बल्कि देश भर में फैली अनेक उत्पादन इकाइयों, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों का विशाल नेटवर्क है बेटा। इसके 9 प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं, जहां हजारों वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ कार्य करते हैं। और तुम्हें पता है, इसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त है।
1: नवरत्न का क्या मतलब हुआ दादाजी?
0: देखो बेटा, भारत सरकार कुछ उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उनके शानदार प्रदर्शन, लाभप्रदता, तकनीकी क्षमता और राष्ट्रीय योगदान के आधार पर विशेष दर्जा देती है। इसे नवरत्न का दर्जा कहा जाता है।
1: तो क्या ये रक्षा मंत्रालय के अधीन बनाया गया संस्थान है?
0: बिल्कुल, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों की विशेष और चुनौतीपूर्ण जरूरतों को पूरा करना था, इसलिए इसे रक्षा मंत्रालय के अधीन रखा गया।
1: तो दादाजी, इसका पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया?
0: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बेटा।
1: बेंगलुरु में?
0: उस समय बेंगलुरु धीरे धीरे विज्ञान, तकनीक और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा था, इसलिए BEL की पहली उत्पादन इकाई वहीं स्थापित की गई।
1: दादू, आपने बताया था कि इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, तो क्या इसके बाकी सारे कारखाने भी वहीं पर हैं?
0: नहीं बिटिया, जैसे किसी विशाल वृक्ष की शाखाएं दूर दूर तक फैलती हैं, वैसे ही BEL की उत्पादन इकाइयां पूरे देश भर में फैली हुई हैं।
1: सच में दादू? तो फिर बताइए ना, कहाँ कहाँ फैली है?
0: बेंगलुरु के अलावा गाजियाबाद, पंचकुला, कोटद्वार, हैदराबाद, मछलीपट्टनम, नवी मुंबई, पुणे और चेन्नई में इनकी प्रमुख इकाइयां हैं बेटा।
1: इतना विस्तार? दादाजी, कितना रोमांचक रहा होगा ना?
0: बिल्कुल, जैसे जैसे भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की आवश्यकता बढ़ती गई, BEL भी नई तकनीकों और नए उत्पादों के साथ आगे बढ़ती गई। छोटे से कारखाने ने धीरे धीरे एक विशाल संगठन का रूप लेना शुरू कर दिया बेटा।
1: पर दादू, इसकी इतनी सारी इकाइयां क्यों हैं?
0: क्योंकि BEL अनेक प्रकार के उत्पाद बनाती है। अलग अलग इकाइयां अलग अलग तकनीकों और प्रणालियों के निर्माण में विशेषज्ञता रखती है बेटा।
1: मतलब किसी एक बड़ी मशीन के पुर्जे अलग अलग जगह बनाकर फिर वो एक जगह पहुँचाए जाते हैं?
0: बिल्कुल, इसके अलावा देश भर में इसके क्षेत्रीय कार्यालय है बेटा, और न्यूयॉर्क और सिंगापुर में भी इसके कार्यालय स्थापित हैं।
1: वाह, यानी BEL की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करती है।
0: बिल्कुल बेटा।
1: दादू,
0: आखिर
1: BEL ऐसा क्या बनाती है जो सेना के लिए इतना महत्वपूर्ण है?
0: यदि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को हम सेना की उड़ान कहें, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड उसकी आँख, कान और मस्तिष्क है बेटा।
1: पर ये भला कैसे?
0: बिटिया रानी, अभी तो बताया मैंने तुम्हें, BEL रडार प्रणालियां बनाती है, और रडार दूर स्थित वस्तुओं को पता लगाने में मदद करता है। तुम है ना बेटा, बादाम खाना शुरू करो रुचि।
1: दादू, आप भी ना, जब देखो तब मेरा मजाक बनाते रहते हैं, मैं भूल जाती हूँ कभी कभी। पर मेरे प्यारे दादू है ना मुझे सब कुछ बताने के लिए, तो फिर से बता दीजिए।
0: अच्छा है बेटा, दादू को पेड़ पर चढ़ाते जाओ तुम।
1: क्या है दादू, आप बिना आप मुझे ये बताइए कि क्या इन रडार प्रणालियों से दुश्मन का विमान सीमा से दूर हो तब भी उसका पता लगाया जा सकता है?
0: बिल्कुल लगाया जा सकता है बेटा। इसके अलावा BEL सैन्य संचार उपकरण बनाती है, जिससे सैनिक सुरक्षित रूप से संदेश भेज और प्राप्त कर सकते हैं।
1: अच्छा दादाजी, ये इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली क्या है?
0: देखो बेटा, आज युद्ध केवल हथियारों से नहीं, तकनीक से लड़े जाते हैं, है ना? तो ये इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली दुश्मन की संचार व्यवस्था और रडार को बाधित करने में सहायता करती है।
1: यानी अब तकनीक को भी हथियार बना लिया गया है।
0: BEL नौसेना प्रणालियां, टैंक, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, सौर ऊर्जा प्रणालियां और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर भी विकसित करती है।
1: दादू, ये रडार किस तरह की तकनीक है?
0: रडार को समझने के लिए एक आसान उदाहरण लेते हैं बेटा। मान लो तुम किसी पहाड़ी के सामने खड़ी होकर जोर से आवाज लगाओ, कुछ समय बाद वही आवाज लौट कर तुम्हारे पास आती है, जिससे प्रतिध्वनि या इको कहते हैं।
1: हाँ, मैंने पहाड़ों में ऐसा होते देखा है।
0: हाँ, रडार भी ऐसा ही कुछ करता है बेटा।
1: अच्छा,
0: वो रेडियो तरंगें भेजता है। ये तरंगें किसी विमान, जहाज या मिसाइल से टकराकर वापस लौटती है। लौटने में लगे समय से उसकी दूरी, दिशा और गति का पता लगाया जाता है।
1: वाह दादाजी, यानी रडार हवा में देखने वाली आँख की तरह काम करता है।
0: बिल्कुल बेटा।
1: दादू, फिल्मों में तो युद्ध बंदूक और टैंकों से होता है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्या होता है?
0: बेटा, आज के आधुनिक युद्ध में ना जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। बिटिया रानी, यदि दुश्मन की संचार व्यवस्था बंद कर दी जाए, उसके रडार को भ्रमित कर दिया जाए या उसके संकेतों को पकड़ लिया जाए, तो बिना गोली चलाए भी बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है।
1: फिर वही बात कि आज तकनीक भी युद्ध का हिस्सा बन चुकी है।
0: तभी तो BEL जैसी संस्थाएं देश की सुरक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
1: दादू, ये एम्बेडेड सॉफ्टवेयर क्या होता है? मैंने इसके बारे में कहीं तो पढ़ा है।
0: देखो बेटा, जब किसी मशीन के अंदर विशेष कार्य करने वाला सॉफ्टवेयर लगाया जाता है तो उसे एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कहते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ, जैसे वॉशिंग मशीन, कार, मोबाइल या मिसाइल के अंदर लगे विशेष प्रोग्राम।
1: तो इसका मतलब कि BEL केवल हार्डवेयर नहीं बनाती, सॉफ्टवेयर भी बनाती है।
0: हाँ बिल्कुल, आधुनिक रक्षा प्रणाली में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है।
1: दादू, अगर कोई BEL ज्वाइन करना चाहे तो उसे क्या तैयारी करनी होगी? कितने पद होते हैं, उसमें भर्ती कैसे होती है, जरा ये सब भी तो बताइए।
0: हाँ हाँ बेटा, बताता हूँ। ये सवाल केवल तुम्हारे मन में नहीं बल्कि देश के लाखों विद्यार्थियों के मन में आता है। BEL केवल कंपनी नहीं बल्कि ऐसा संस्थान है जहाँ विज्ञान, तकनीक, अनुसंधान और प्रबंधन से जुड़े अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं।
1: मतलब वहाँ केवल इंजीनियर ही काम नहीं करते?
0: नहीं नहीं, अक्सर लोग सोचते हैं कि BEL में केवल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ही काम करते होंगे, लेकिन वास्तव में यहाँ अनेक प्रकार के विशेषज्ञ कार्य करते हैं बेटा।
1: जैसे
0: यहाँ वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, डेटा विश्लेषक, तकनीशियन, प्रोजेक्ट मैनेजर, वित्त अधिकारी, मानव संसाधन अधिकारी और कई अन्य विशेषज्ञ कार्य करते हैं बेटा।
1: इतने सारे लोग, यानी अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के लिए बहुत सारे अवसर हैं दादाजी।
0: बिल्कुल, किसी भी बड़े संगठन की सफलता के पीछे अनेक प्रकार की प्रतिभाएं मिलकर काम करती हैं बेटा।
1: दादू, वैसे यहाँ कौन कौन से पद होते हैं?
0: कुछ ही पद मुख्य रूप से होते हैं बेटा, जैसे कि ट्रेनी इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोबेशनरी इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान विशेषज्ञ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, तकनीशियन, डिप्लोमा इंजीनियर, वित्त अधिकारी, मानव संसाधन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, परियोजना प्रबंधक, ये सब होते हैं बेटा।
1: मतलब पढ़ाई के अनुसार अलग अलग अवसर मिल सकते हैं।
0: बिल्कुल मिल सकते हैं।
1: दादू, फिर यदि कोई छात्र अभी स्कूल में पढ़ रहा हो तो उसे किन विषयों पर ध्यान देना चाहिए?
0: सबसे पहले गणित और विज्ञान की नींव मजबूत होनी चाहिए।
1: इसका कोई खास कारण है दादाजी?
0: क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और तकनीकी विषयों की जड़ गणित और विज्ञान ही है बेटा।
1: और आगे,
0: यदि कोई BEL में तकनीकी क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सूचना प्रौद्योगिकी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या संबंधित विषयों में अध्ययन करना चाहिए।
1: तो क्या केवल इंजीनियरिंग करने वाले ही BEL में जा सकते हैं?
0: नहीं, वित्त प्रबंधन, मानव संसाधन, कानून और प्रशासन से जुड़े पदों के लिए अन्य शैक्षणिक योग्यताएं भी मान्य होती हैं बेटा।
1: दादाजी, क्या BEL में भर्ती मुश्किल से होती है?
0: नहीं, बहुत कठिन भी नहीं होती। भर्ती के लिए BEL समय समय पर विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन जारी करती है बेटा।
1: फिर आगे की प्रक्रिया क्या होती है?
0: उम्मीदवारों को आवेदन करना होता है, कई पदों के लिए लिखित परीक्षा होती है, कुछ पदों के लिए गेट जैसी परीक्षाओं के अंकों को भी महत्व दिया जाता है।
1: और फिर उसके बाद?
0: फिर साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होता है। उम्मीदवार के ज्ञान, समस्या समाधान क्षमता और तकनीकी समझ का मूल्यांकन किया जाता है।
1: इसका मतलब ये है कि केवल डिग्री होना ही काफी नहीं है।
0: बिल्कुल नहीं बेटा, व्यवहारिक ज्ञान, आत्मविश्वास और सीखने की इच्छा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। विद्यार्थियों के लिए आवश्यक कौशल जरूरी होता है।
1: दादू, पढ़ाई के अलावा और क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए?
0: बेटा, आज के समय में केवल किताबों का ज्ञान पर्याप्त नहीं है।
1: सो तो है दादू।
0: विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की भी खासी जरूरत होती है, जैसे कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान, प्रोग्रामिंग की मूलभूत समझ, संचार कौशल, टीम वर्क की समझ होना, समस्या समाधान में दक्षता होना चाहिए, तार्किक सोच होनी चाहिए, नई नई तकनीकें सीखने की आदत के साथ उसे इन सब विषयों के बारे में जिज्ञासु भी होना चाहिए।
1: मतलब दादू, पढ़ाई और कौशल दोनों जरूरी है।
0: बिल्कुल जरूरी है बेटा।
1: पर दादू, अब मुझे थोड़ा ना डर लग रहा है।
0: अच्छा?
1: ये सब सुनकर इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ बस बहुत प्रतिभाशाली विद्यार्थी ही पहुँच सकते होंगे।
0: नहीं बिटिया, प्रतिभा महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है मेहनत, अनुशासन और निरंतर सीखने की इच्छा।
1: ये तो सही कहा आपने। लेकिन दादू, जितनी तेजी से दुनिया बदल रही है ना, क्या भविष्य में भी BEL जैसी संस्थाओं की आवश्यकता उस समय भी रहेगी?
0: पहले से भी अधिक होगी बिटिया।
1: अच्छा,
0: आज दुनिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्या कहते हो तुम लोग, AI, AI, साइबर सुरक्षा, ड्रोन तकनीक, रोबोटिक्स और क्वांटम संचार की ओर बढ़ रही है बेटा।
1: इसका मतलब कि BEL भी इन क्षेत्रों पर फोकस कर रही है।
0: हाँ, आधुनिक रक्षा तकनीकों में इनका महत्व लगातार बढ़ रहा है, इसलिए आने वाले वर्षों में तकनीकी ज्ञान रखने वाले युवाओं के लिए अनेक अवसर होंगे।
1: दादू, BEL की कहानी से विद्यार्थियों को सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है?
0: तीन बातें हैं रुचि, जिनका ध्यान हर एक पढ़ने वाले बच्चे को रखना चाहिए।
1: अच्छा।
0: पहला, आत्मनिर्भर बनो। दूसरी बात कि विज्ञान और तकनीक को अपनाओ, उसे समझो, उसे जानो। तीसरी बात, अपनी प्रतिभा का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के विकास के लिए करो।
1: यानी पढ़ाई केवल नौकरी के लिए नहीं, राष्ट्र निर्माण के लिए भी होना चाहिए दादाजी।
0: हाँ बेटा, ये बात समझदार है मेरी पढ़ाकू बिटिया। बिल्कुल सही समझा बेटा तुमने। जब कोई वैज्ञानिक नया रडार बनाता है, कोई इंजीनियर नई प्रणाली विकसित करता है या कोई शोधकर्ता नई तकनीक खोजता है, तब वो केवल अपना करियर नहीं बना रहा होता बेटा।
1: बल्कि वो देश को भी मजबूत बना रहा होता है दादाजी। और बड़े राष्ट्र केवल सैनिकों की बहादुरी से नहीं बनते, उनके पीछे वैज्ञानिकों की बुद्धि, इंजीनियरों की मेहनत, तकनीशियनों का कौशल और विद्यार्थियों के सपने होते हैं। सही कहा ना मैंने दादाजी?
0: बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल 10 में से 10 नंबर देता हूँ बेटा मैं तुमको।
1: अच्छा।
0: देखो बेटा, BEL जैसे संस्थान देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का विद्यार्थी ही कल का वैज्ञानिक, इंजीनियर और राष्ट्र निर्माता बनेगा।
1: अच्छा दादू, एक और सवाल है। क्या BEL केवल सेना के लिए काम करती है?
0: नहीं बिटिया, BEL का योगदान आम नागरिकों के जीवन में भी दिखाई देता है।
1: वो भला कैसे?
0: क्या तुमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी AVM का नाम सुना है?
1: वो तो चुनाव में उपयोग होती है ना?
0: हाँ, इन मशीनों के निर्माण में BEL की महत्वपूर्ण भूमिका है बेटा।
1: मतलब लोकतंत्र को मजबूत बनाने में भी BEL का बड़ा योगदान है।
0: बिल्कुल है। इसके अलावा BEL ने सौर ऊर्जा चलित ट्रैफिक सिग्नल, सेटअप बॉक्स और कम लागत वाला टैबलेट भी बनाया था, जिसका उपयोग जनगणना के दौरान किया गया बेटा।
1: वाह दादू, BEL तो रक्षा और विकास दोनों में योगदान देती है।
0: बिल्कुल बेटा।
1: क्या BEL अन्य कंपनियों के साथ मिलकर भी काम करती है?
0: हाँ हाँ, इसे संयुक्त उपक्रम कहा जाता है बेटा।
1: तो फिर इसका कोई उदाहरण बताइए ना दादाजी।
0: देखो बेटा, BEL ने GE हेल्थ केयर के साथ मिलकर चिकित्सा उपकरणों के निर्माण का कार्य किया।
1: मतलब रक्षा क्षेत्र से बाहर स्वास्थ्य क्षेत्र में भी योगदान?
0: हाँ, वही तो बता रहा हूँ बेटा। एक अन्य संयुक्त उपक्रम ब्रिटेन की मल्टीटोन कंपनी के साथ भी स्थापित किया गया।
1: उसमें BEL का क्या योगदान था?
0: उसमें बेटा BEL उन्नत मोबाइल संचार उपकरण और डिजिटल संचार प्रणालियाँ विकसित करता है।
1: अच्छा, क्या BEL के सामने कभी कठिन समय भी आया दादाजी?
0: हाँ बेटा, जब भारत ने परमाणु परीक्षण किए तब कुछ देशों ने भारत पर तकनीकी प्रतिबंध लगा दिए थे।
1: फिर क्या हुआ?
0: फिर विदेशी तकनीक और उपकरण प्राप्त करना कठिन हो गया।
1: दादू, ये तो बड़ी समस्या रही होगी।
0: हाँ बेटा, लेकिन BEL के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने हार नहीं मानी। उन्होंने स्वदेशी तकनीक विकसित करने का संकल्प ले लिया।
1: यानी संकट अवसर बन गया।
0: हाँ, यही आत्मनिर्भरता की शुरुआत थी बेटा।
1: दादाजी, आज आत्मनिर्भर भारत की चर्चा हर जगह होती है। आप ये बताइए, BEL इसमें कैसी योगदान देती है?
0: हाँ बेटा, जब देश स्वयं अपने रक्षा उपकरण और तकनीक विकसित करता है तो विदेशी निर्भरता कम होती है। तो ये आत्मनिर्भर बनना ही तो हुआ ना।
1: यानी देश का धन भी बचता है और तकनीक भी देश में ही विकसित होती है।
0: हाँ, इससे रोजगार बढ़ता है, अनुसंधान को प्रोत्साहन मिलता है और राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत होती है।
1: दादू, क्या BEL समाज के लिए भी कुछ करती है?
0: हाँ बेटा, BEL केवल उत्पादन नहीं करती बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी निभाती है।
1: वो भला कैसे?
0: देखो, विद्यालयों, अस्पतालों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संस्थाओं को सहायता भी प्रदान करती है।
1: दादू, ये तो बहुत प्रेरणादायक है।
0: हाँ बेटा, सच्ची प्रगति वही है जिसमें समाज का हर वर्ग शामिल हो।
1: और हमारा पर्यावरण?
0: BEL पर्यावरण संरक्षण के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसके कारखानों को शून्य प्रदूषण उद्योग माना गया है बेटा।
1: शून्य प्रदूषण उद्योग?
0: हाँ, यानी ऐसे उद्योग जहाँ जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण को न्यूनतम रखा जाता है।
1: और सौर ऊर्जा वाले ट्रैफिक सिग्नल्स?
0: वो भी इसी सोच का हिस्सा है, ऊर्जा बचाओ, पर्यावरण बचाओ।
1: दादू, आज मुझे समझ में आया कि BEL केवल एक कंपनी नहीं है, ये भारत की सुरक्षा, तकनीकी प्रगति, लोकतंत्र, समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण की मजबूत आधारशिला है।
0: बिल्कुल बिटिया, BEL उसे देखने, समझने और सुरक्षित रखने की तकनीकी शक्ति प्रदान करता है। आत्मनिर्भर भारत का सपना ऐसे ही संस्थानों के प्रयासों से साकार हो रहा है बिटिया।
1: सही कहा दादाजी आपने।
2: तो श्रोताओं, आज हमने जाना कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड केवल एक औद्योगिक संस्था नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की एक महत्वपूर्ण शक्ति है। तकनीक, सुरक्षा, समाज सेवा और पर्यावरण संरक्षण, हर क्षेत्र में इसका योगदान प्रेरणादायक है। तो इसी संदेश के साथ अब हम आपसे लेते हैं विदा।
0: नमस्कार
2: श्रोताओं, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने, वाचन स्वर था भगवती सक्सेना,
0: दीपक नेमा,
2: लेखन था स्वाति गिरी का। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz पर, देश का चैनल, देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों रणबांकुरों जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन, लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

0: आजाद हिंद सुनने वाले सभी श्रोताओं को तारीख का प्यार भरा नमस्कार।
1: आजाद हिंद सुनने वाले सभी श्रोताओं को इतिहास का भी प्यार भरा नमस्कार।
0: इतिहास, क्या तुम्हें याद है?
1: क्या?
0: विक्रमपुर के मालखा नगर के बहुविख्यात बसु ठाकुर। बसु ठाकुर के परिवार में मान कुमार का जन्म 28 जून 1920 को हुआ था। उनके पिता का नाम भूपति मोहन बसु ठाकुर और माँ का नाम हेम प्रभा देवी था। उनके 6 भाई और 5 बहनें थीं। मान कुमार का घर का नाम श्रीधर था।
1: अरे मुझे अच्छी तरह से याद है तारी। मान कुमार के पिता वारिचाल में सेटलमेंट कानून को थे। वहीं मान कुमार का बचपन भी था। ढाका के सेंट गैग्री हाई स्कूल में उन्हें 5 वर्ष की उम्र में भर्ती कराया गया, पर खराब स्वास्थ्य के कारण उनकी पढ़ाई में व्यवधान पड़ता रहा।
0: बिल्कुल ठीक, मान कुमार मेधावी छात्र थे। परीक्षा में वे सदैव शीर्ष 4 में 1 होते, पर स्वास्थ्य उन्हें परेशान कर रहा था। सो स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान देते हुए नियमित व्यायाम द्वारा सबल बनना उन्होंने पहला लक्ष्य बनाया। शीघ्र ही उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त भी कर लिया। सन 1938 में उन्होंने प्रथम श्रेणी में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ढाका से मैट्रिक की परीक्षा पास की
1: और आईएससी के लिए जगन्नाथ इंटरमीडिएट कॉलेज में भर्ती हुए। और सन 1940 में इसी कॉलेज से 2 अन्य विद्यार्थियों के साथ उन्हें भारतीय उपकुल रक्षी गोलंदाज जत्थे में सहयोग के लिए भेजा गया। परिवार के अन्य सदस्य नहीं चाहते थे कि वे यह काम करें, पर मान कुमार यह काम करते रहे। युद्ध जैसे कठिन कार्य में जुटे रहने के बावजूद उन्होंने 1 के बाद 13 विभागीय परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उन्होंने उर्दू शिक्षा की परीक्षा भी प्रथम रहते हुए उत्तीर्ण की।

0: सन 1942 में मान कुमार विमान ध्वंसी विभाग के जिम्मेदार कर्मचारी बन गए थे। उन्हें गोलंदाज दस्ते की ट्रेनिंग के लिए बम्बई भेज दिया गया। बम्बई के कोलाबा स्थित ट्रेनिंग केंद्र में आए परीक्षार्थियों में ब्रिटिश और भारतीय दोनों सैनिकों के जत्थे थे। प्रशिक्षण के अंत में आयोजित परीक्षा में मान कुमार ने भारतीय जत्थे में प्रथम स्थान प्राप्त किया और वे जमादार पद पर नियुक्त कर दिए गए।
1: प्रशिक्षण के दौरान भारतीय जत्थे के बंगाली सैनिकों के अच्छे प्रदर्शन के कारण अंग्रेज सैनिक उनसे ईर्ष्या करने लगे थे और जब तत्कालीन जंगी लॉर्ड अकिनलेक साहब ने चतुर्थ भारतीय उपकूल रक्षी गोलंदाज दस्ते के जमादार मान कुमार और दूसरे बंगाली नौजवानों के साहस और योग्यता की तारीफ की तो इस तारीफ ने अंग्रेज सैनिकों की ईर्ष्या की आग में घी का काम किया।
0: अब तक अंग्रेज सैनिक भारतीय सैनिकों पर रोब जमाते रहते थे, पर अब बंगाली सैनिकों ने अपना सिर उनके सामने बिना झुकाए सैनिकों की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। अंग्रेज सैनिकों ने इसे चुनौती मानकर उन्हें सबक सिखाने की धमकी तक दे डाली। आखिरकार षड्यंत्र रचा गया। कोचिन में ताड़ के पत्तों से छाए एक घर में आग लगा दी और इस अग्निकांड के बाद कुचक्र रचकर सन 1943 में 18 अप्रैल को ब्रिटिश सम्राट और सरकार के विरुद्ध विद्रोह का आरोप लगा करके 12 बंगाली सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया।
1: सुनवाई के दौरान झूठी गवाहियां रची गईं। सन 1946 में केंद्रीय व्यवस्थापिका परिषद में सामरिक विभाग के सेक्रेटरी मैनन साहब ने मान कुमार और उनके सहयोगी बंगाली सैनिकों पर अनेक अपराध कायम किए जिनमें चतुर्थ भारतीय उपकूल रक्षी जत्थे को तोड़ने का षड्यंत्र, इसके लिए अपना आवास जलाना, विस्फोट पदार्थ के गोदाम आग लगाने का प्रयत्न और जत्थे में सांप्रदायिक हंगामा मचाने के आरोप प्रमुख थे।
0: इन अभियोगों के लिए 6 जुलाई से 5 अगस्त के बीच बेंगलोर के सेंट एंड्रयूज चर्च में बैठी फौजी अदालत में गिरफ्तार किए गए तथा कथित विद्रोहियों की सुनवाई हुई। सैनिकों पर विद्रोहियों के विरुद्ध गवाही देने के लिए भारी दबाव डाला गया। जिन्होंने झूठी गवाही देने से इनकार किया उन्हें हथकड़ी पहना करके तंग कोठरी में ठूस दिया गया और भयंकर यातनाएं दी गईं। इस सुनवाई का काला पक्ष यह था कि अपराधियों को अपनी सफाई में बोलने का अवसर ही नहीं दिया गया।
1: अदालत ने मान कुमार बसु ठाकुर उम्र 21 वर्ष सहित 9 व्यक्तियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई, 2 अन्य को द्वीपांतर कारावास और 1 को 7 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। फांसी की सजा पाने वाले बंगाली सैनिक थे मान कुमार बसु ठाकुर, नंद कुमार डे, दुर्गादास राय चौधरी, निरंजन बरुआ, चितरंजन मुखोपाध्याय, फणिभूषण चक्रवर्ती, सुनील कुमार मुखोपाध्याय, कालीपद आईच और नरेंद्र मोहन मुखोपाध्याय। इन सभी युवकों की उम्र 21 से 25 वर्ष के बीच थी।
0: 24 सितंबर को इन कैदियों को फांसी देने के लिए बेंगलोर की जेल में लाया गया। ये सभी काली पोशाकों में और कड़े पहरे में लाए गए थे। बेंगलोर जेल में मौजूद कैदियों को जल्दी ही पता चल गया कि ये सभी फांसी की सजा के लिए लाए गए हैं। जेल में नजरबंद कैदी इस समाचार से अत्यंत उत्तेजित हो उठे। उन्होंने बेंगलोर जेल में इन लोगों को फांसी देने का पुरजोर विरोध करते हुए राज्य सरकार को सम्मिलित रूप से ज्ञापन दिया। आखिर ज्ञापन को उचित मानकर राज्य सरकार ने ब्रिटिश सरकार से आपत्ति प्रकट की और फांसी का स्थान बेंगलोर जेल की जगह मद्रास की जेल कर दिया गया।

0: बैंगलोर जेल से मद्रास जाते जाते दुर्गादास राय चौधरी ने अपने रक्त से वंदे मातरम लिखा एक पत्र बैंगलोर के कैदियों के पास पहुंचा दिया। इस पत्र में लिखा था, प्रिय बंधुगण, सम्राट के विरुद्ध विद्रोह के अपराध में हम 9 लोगों को मृत्युदंड दिया गया। देश की स्वाधीनता के लिए हम 9 लोग कुर्बानी दे रहे हैं। हम सभी बंगाली नवयुवक हैं। बंधुओं, अब समय आ गया है कि हम हिंदू मुसलमान सभी मिलकर देश की आज़ादी के लिए काम करें। देश की आज़ादी के महायज्ञ में आपकी सेवा और त्याग हमें सांत्वना देता रहेगा। आइए सर उठाइए और मातृभूमि की आज़ादी के लिए संघर्ष करिए। विदेशी शक्ति के विरुद्ध कठोर प्रहार कीजिए। हमारी शुभ इच्छा आपके साथ है। आप अपने प्रण में सफल हों। हमारा मधुर प्यार स्वीकारें। पत्र के अंत में रक्त से हस्ताक्षर किए गए थे दुर्गा दास।
1: फौज के अधिकारियों ने भरसक प्रयत्न किया था कि मान कुमार सरकारी गवाह बन जाए और अपने साथियों के विरुद्ध झूठी गवाही देकर के सिद्ध कर दे कि उन्होंने क्रांति की योजना बनाई थी, पर सत्यवादी और देश प्रेमी मान कुमार मृत्यु दंड का संकट जानते हुए भी झूठी गवाही देने और अपने साथियों के खिलाफत को राजी नहीं हुए। मान कुमार माँ के भक्त थे और सन्यासी बाबा के अनुयायी थे। अभियोग दायर होने के बाद उन्होंने अपनी माँ को पत्र लिखा, माँ मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया हूँ। सन्यासी बाबा और माँ को स्मरण करके सभी काम करने वाले कैसे संकट में पड़ सकते हैं, पर ऐसा हुआ है, पर क्यों? मैं तो सदा सन्यासी बाबा और तुम्हारा स्मरण करके ही कुछ करता हूँ। ऐसे अपराध को मैंने आज तक नहीं किए।
0: 25 सितंबर 1943 को मद्रास किले में 2-2 की संख्या में इन बंगाली युवकों को फांसी दी गई। फांसी का फंदा गले में डालने के पहले वे एक दूसरे से गले मिलते और राष्ट्रीय गीत गाते हुए फांसी के तख्ते पर खड़े हो जाते। मान कुमार की फांसी के बाद उनके एक साथी ढाका पुलिस के एक बड़े अफसर जनाब अब्दुल उदूद ने कहा, सत्य के लिए मान कुमार ने अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी। उनका यह बलिदान निष्फल नहीं जाएगा। जब तक सत्य कायम रहेगा, मान कुमार का नाम अमर रहेगा।
1: फांसी चढ़ने से पहले तक वे गर्व से गाते थे, सत्य की रक्षा के लिए प्राण देकर मान कुमार ने अपने देश की मान मर्यादा की रक्षा की। वे एक सार्थक व्यक्तित्व के रूप में सदा याद किए जाएंगे।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय की, और गीत लिए गए थे स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जारी ऑडियो एल्बम जन गर्जे से।
3: और अब दीजिए हमें इजाजत, कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: फिर से अनूप भट्ट हास से हनाद होवे, फिर से अनूप भट्ट हास से हनाद होवे, फिर से पूरी भाव भक्त के ही में मोद मंडके मंडके, पूरी भाव भक्त के ही में मोद मंडके मंडके।

आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती है। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी है। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक

0: रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको डीआरडीओ की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है, यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों, जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी, और ये कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं, और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है, और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों, पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहाँ नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानी केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपए है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता मिल चुकी है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है। हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हर गिला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हर गिला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी, फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है, जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से 10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है। और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनकी रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए एआई इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने, हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य घड़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए एआई टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनकी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज, रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है, इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती है। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती है। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा, इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे। लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है, कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि ये किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो, वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती है। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है। बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर।

0: असली नोट?
1: ब्रो ये फटा है।
2: सुन कते फटे है पुराने नोट को?
0: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ नया नोट मिलेगा?
2: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन महाकाव्यों का गुच्छा। इस गुच्छे में आज हम आपके लिए ऐसा काव्य विन्यास लेकर आए हैं जहां पंखुड़ियां रण की चमक से नहीं तप की शांति से दमकती हैं। श्रोताओं, बीते एपिसोड में हमने रश्मिरथी के द्वितीय सर्ग के भाग 5, 6 और 7 के साथ उस गहन भाव भूमि को महसूस किया जहां शब्द केवल कथा नहीं कहते, वे भीतर उतरकर आत्मा को स्पर्श करते हैं। वहां कर्ण के स्वर में केवल प्रतिरोध नहीं था बल्कि व्यवस्था से टकराता हुआ एक सच था। जहां ज्ञान उपेक्षित था और जन्म की दीवारें पुरुषार्थ के मार्ग में खड़ी थी, फिर हमने उस मौन साधना को देखा जहां गुरु के स्नेह और शिष्य के समर्पण के बीच कर्ण स्वयं को तपाता है और अंततः वो क्षण भी जब पीड़ा उसकी जांघ में धसती जाती है पर उसका संकल्प तनिक भी नहीं डिगता। ये वही बिंदु है जहां कर्ण की महानता दिखाई नहीं देती, वो महसूस होती है उसकी निस्तब्धता में, उसके धैर्य में और उसके भीतर जलते हुए उस अग्निकुंड में जो उसे साधारण से असाधारण बनाता है।
4: हाँ श्रोताओं, यह यात्रा अब और भी भीतर उतरती जा रही है जहां प्रश्नों के उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि अनुभवों में मिलते हैं। कर्ण का जीवन अब केवल घटनाओं का क्रम नहीं रह गया, वह एक ऐसी साधना बन चुका है जिसमें हर क्षण उसे खुद से ही जूझना है। यहाँ पीड़ा भी शिक्षक है और मौन भी मार्गदर्शक। उस विषदंश की वेदना केवल शरीर तक सीमित नहीं, वह उस व्यवस्था की चुभन है जो मनुष्य को बार बार उसकी सीमा का बोध कराती है। अब कथा उस दहलीज पर खड़ी है जहां भावनाएं और भी तीव्र होंगी, निर्णय और भी कठोर होंगे और कर्ण का पथ नई चुनौतियों से भर उठेगा। यह वह चरण है जहां भीतर सुलगती हुई अग्नि अब धीरे धीरे प्रकाश बनने को है, पर उस प्रकाश तक पहुंचने से पहले उसे और अंधेरों से गुजरना होगा। आइए श्रोताओं, अब इस प्रवाह को आगे बढ़ाते हैं उस अगले विस्तार की ओर जहां कर्ण की कथा और गहरी होती है, उसके संकल्प की धार और पहनी हो जाती है और जीवन उसे ऐसे मोड़ों से परिचित कराता है जिनसे गुजरकर ही कोई व्यक्तित्व अमिट बन पाता है। अब सुनते हैं द्वितीय सर्ग के भाग 8, 9 और 10 को। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, सहम गई यह सोच कर्ण की, भक्तिपूर्ण वह वल छाती। सोचा उसने, अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना शिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में, गुरु से आज्ञा लेकर बाहर किया कीट को उसने क्षत में से उंगली देकर। परशुराम बोले,
5: शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा चल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी।
4: तनिक लजाकर कहा कर्ण ने,
6: नहीं अधिक पीड़ा मुझको महाराज, क्या कर सकता है ये छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच ये कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा ये जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर ये तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हूं इसीलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया।
4: परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीसकर आंखें तरेर कर बोले,
5: कौन छली है तू? ब्राह्मण है क्या? किसी और अभिजन का पुत्र बलि है तू?
4: यहीं से कथा निर्णायक मोड़ लेती है। गुरु के मन में शंका जन्म लेती है। भक्ति और विश्वास के बीच अब सत्य का प्रश्न खड़ा हो गया है। यही वह क्षण है जहां करुणा से कथा क्रोध और नीति की दिशा में मुड़ती है। श्रोताओं, यह काव्य संवाद सुनकर मन सचमुच भर आता है। यह केवल एक कीट दंश की कथा नहीं, यह विश्वास की अग्नि परीक्षा है जहां शिष्य अपनी पीड़ा से अधिक गुरु की नींद की रक्षा करता है। ऐसा प्रेम, ऐसी निष्ठा, ऐसा मौन त्याग आज कहां देखने को मिलता है? तप, संयम और समर्पण, ये शब्द जैसे हमारे जीवन से सरक कर केवल ग्रंथों और कथाओं में सिमटते जा रहे हैं। कर्ण ने जिस वेदना को सहा वह केवल शरीर की पीड़ा नहीं थी, वह भाग्य की विडंबना भी थी जो कभी जन्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर उसके मार्ग में दीवारें खड़ी करती रहीं। लगता है समय भी जैसे उसी के धैर्य की परीक्षा लेने पर तुला हो। और यही इस प्रसंग को साधारण कथा से उठाकर अमर कर देता है। सांच को आँच नहीं, पर आँच पहले उसी पर आती है। कर्ण की देह तो अब तक पत्थर बनी रही, पर अब बारी है उसकी असली पहचान की, जहां दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। जन्म और कर्म आमने सामने खड़े हैं। गुरु का रोष अग्नि सा धधक रहा है और शिष्य का हृदय हथेली पर रखा है। आइए सुनते हैं द्वितीय सर्ग का भाग 9, जहां सत्य की धार किसी खड्ग से कम तीखी नहीं है।
5: सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी ना जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही। बुद्धि चलाती जिसे, तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले, नहीं यह हो सकता किसी दशा में भी स्वभाव अपना वो कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है? इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता ना तो फल पाएगा। परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा।
4: क्षमा क्षमा हे देव दयामय, गिरा कर्ण गुरु के पद पर। मुख विवर्ण हो गया, अंग कापने लगे भय से थर थर।
6: सूत पुत्र, मैं शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ। जो भी हूँ पर देव, आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं, हाय, किंतु छल का ही तो ये काम हुआ। आया था विद्या संचय को, किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में कार्त वीर्य के जेता का। तपोदीप्त शूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का, अगर पता पा जाएंगे महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। पता सका मैं नहीं इसी से, हे प्रभु जाति अपनी छोटी। करे देव विश्वास भावना और ना थी कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूँ। मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ, अपने आप मरा सा जाता हूँ।
4: श्रोताओं, यह दृश्य मानो वज्र और कमल का एक साथ टूटना है। कर्ण का सिर गुरु के चरणों में झुका हुआ है, जैसे आंधी में झुकता कोई अशोक वृक्ष टूटता नहीं। पर भीतर से चिर जाता है। उसकी वाणी में वह कपकपी है जो केवल भय की नहीं आत्मग्लानी की होती है। ज्ञान पाने की प्यास उसके लिए गंगा थी, पर जन्म की रेत ने बार बार उसका मार्ग रोक लिया। आज वह स्वयं को अपराधी की तरह प्रस्तुत कर रहा है, जबकि उसका दोष केवल इतना ही है कि उसने ऊंचा उड़ने का स्वप्न देखा।
3: श्रोताओं, गुरु की आंखों में दहकती ज्वाला है और शिष्य का मन जैसे राख से ढका अंगार। परशुराम का क्रोध आकाश चीरता धूम केतु सा प्रखर है, तो कर्ण की विनती संध्या की अंतिम लौ कंपित। किंतु अभी भी उजास बचाए हुए शब्द अब केवल ध्वनि नहीं रहे, वे बाण हैं और सत्य नंगी धार की तरह चमक रहा है।
4: और उस करुण क्षण को दिनकर की लेखनी ने ऐसे छुआ मानो सूर्य स्वयं अपने ही अंश की पीड़ा लिख रहा हो। एक तपता तेज जिसे संसार ने नाम देने से पहले ही ठुकरा दिया। श्रोताओं, करुणा की इस गहन घटा के बाद अब शब्दों का आकाश फिर खुलने जा रहा है। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि मनुष्य केवल जन्म से नहीं अपने चुनावों और अपने व्रतों से पहचाना जाता है, कि सम्मान छल से नहीं सत्य की अग्नि से तपकर मिलता है, और यह भी कि महत्वाकांक्षा जब मर्यादा से टकराती है तो आत्मा स्वयं अपना न्यायालय बन जाती है।
3: आइए इसी सीख को हृदय में संजोए हम द्वितीय सर्ग के भाग 10 में प्रवेश करें, जहां कर्ण शाप से नहीं अपने अधूरे स्वप्नों से जूझता दिखाई देगा, जहां गुरु और शिष्य के बीच केवल दंड नहीं एक गहरी पहचान का प्रकाश भी फूटेगा। सुनते हैं रश्मि रथी का भाग 10।
6: छल से पाना मान जगत में किलविश है, मल ही तो है। ऊंचा बना आपके आगे सचमुच ये छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती बली होकर, अब जाऊंगा कहां स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करें भस्म ही मुझे देव, सम्मुख है मस्तक नत मेरा। एक कसक रह गई, नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहां मैं पाऊंगा। ये तृष्णा ये विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी। प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं। अभय देख अर्जुन को मर कर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा। बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूं दे शाप, किंतु अंतिम सुख तो ये पाने दें। इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गवाने दें। इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गवाने दें।
4: लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर। दो कणिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले,
3: हाय कर्ण, तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चल सखा धार्त राष्ट्रों का, विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था। मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया, पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया, कभी नहीं मैंने पाया।
4: श्रोताओं, यह प्रसंग किसी साधारण स्वीकारोक्ति का नहीं है, आत्मा के दरबार में खड़े एक मनुष्य के नग्न सत्य का है। कर्ण यहां केवल अपने गुरु के सामने नहीं, अपने ही अंतःकरण के कटघरे में खड़ा है, जहां ना कोई आड़ है ना कोई तर्क। छल से पाया मान उसके लिए मान नहीं, मानो अंगार है, जो भीतर ही भीतर उसे दग्ध कर रहा है। यह दृश्य मानो तपते मरुस्थल पर अचानक फूट पड़ी जलधारा हो। एक और कर्ण है जो शाप को भी प्रसाद की तरह हथेली पर धरने को तैयार खड़ा है, और दूसरी ओर गुरु है जिनकी कठोर दृष्टि के कोनों से करुणा ओस की बूंद बनकर ढलक रही है। यह क्षण केवल अपराध और दंड का नहीं, हृदयों के पिघलने का है, जहां शिष्य की निष्ठा और गुरु की करुणा मिलकर समय की शिला पर अमिट रेखा खींच देती है।
3: श्रोताओं, उसकी पीड़ा केवल अपने अपराध की नहीं बल्कि अधूरी रह गई आकांक्षाओं की भी है। अर्जुन को परास्त करने की इच्छा, दुर्योधन के प्रति उसका अटूट संबंध और अपने अस्तित्व को सिद्ध करने की जिद, वो दो दिशाओं के बीच खड़ा है। एक ओर धर्म का आह्वान, दूसरी ओर मित्रता का बंधन। कर्ण भली भांति जानता है कि वचन और उपकार दोनों मनुष्य को बांध लेते हैं, और वही बंधन उसे अपने निर्णयों में स्वतंत्र नहीं रहने देते। फिर भी वो अपने जीवन की याचना नहीं करता बल्कि दंड को भी स्वीकार करने के लिए तत्पर है। यही उसकी महानता है कि वो अपने दोष से भागता नहीं, उसे स्वीकार कर उससे ऊपर उठना चाहता है।
4: श्रोताओं, दिनकर जी मूलतः वीर रस के कवि माने जाते हैं। उनकी कविताएं समाज में सकारात्मक ऊर्जा भरती हैं और जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण देती हैं। पर देखिए, उसी वीर रस के कवि ने कर्ण की करुणा को भी उतनी ही गहराई से उकेरा है। यही उनकी लेखनी की शक्ति है। वह हमें साहस भी देती है और संवेदना भी सिखाती है। आज की पीढ़ी के लिए यह संदेश स्पष्ट है, संघर्ष से घबराना नहीं, अपने लक्ष्य ऊंचे रखना, पर सत्य और आत्मसम्मान को कभी ना त्यागना। कर्ण ने भले ही असत्य का सहारा लिया हो, पर उसकी साधना और जिज्ञासा इतनी सच्ची थी कि गुरु का मन द्रवित हुए बिना नहीं रह सकता।
3: तो श्रोताओं, इसी गहन भाव विस्फोट, आत्मस्वीकृति और गुरु शिष्य के इस अद्वितीय प्रसंग के साथ आज की ये काव्य यात्रा यहीं एक मधुर विराम लेती है। कर्ण का अंतर्द्वंद, उसकी पीड़ा, उसका स्वाभिमान और उसका टूट संकल्प, ये सब मिलकर हमें सोचने पर विवश करते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर लड़ा जाता है। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग के अंतिम भाग 11, 12 और 13 का काव्य पाठ और चर्चा, जहां कर्ण की यात्रा एक नए निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगी। लेकिन जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन किया था संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, रेडियो प्रस्तुति लेखन दीपक नेमा, और इसे आप तक पहुंचाया मैंने यानी संदीप शर्मा ने,
4: मैंने यानी भगवती सक्सेना ने,
7: और मैं आपका रेडियो मित्र दीपक नेमा।
3: तो इसी के साथ शब्दों और संवेदनाओं की ये यात्रा यहीं विराम लेती है। फिर मिलेंगे एक नए अंक में। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। नमस्कार। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।

देश का चैनल देश के लिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर अभी आप सुन रहे थे रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। आइए श्रोताओं, अब हम आपको देते हैं हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। कल है रविवार और कल आप सुनेंगे सुबह 7 बजे कार्यक्रम जीवन सौरभ। 7:10 पर हम सुनवाएंगे आपको हमारा नियमित कार्यक्रम अक्षय निधि, जिसमें आप सुन रहे हैं इन दिनों ऋग्वेद के प्रथम मंडल से वाचन। कल आप सुनेंगे सूक्त 158 का वाचन। भक्ति संगीत कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 7:20 से। सुबह 8 बजे का समय होता है कार्यक्रम वतन का राग सुनने का। कल का ये कार्यक्रम केंद्रित रहेगा दामोदर धर्मानंद कोसाम्बी की पुण्यतिथि पर। 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुनो कहानी, जिसमें कल का शीर्षक होगा परीक्षा। सुबह 9 बजे कला कल्लोलिनी कार्यक्रम केंद्रित रहेगा हबीब तनवीर पर। 9:30 पर विशेष कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे शिव भाई गुप्ता का निमाड़ी गायन। भोपाल शहर की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी आप सुनते हैं परिक्रमा कार्यक्रम में, इसे आप सुनेंगे सुबह 10 बजे। 10:30 पर राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की जयंती पर केंद्रित होगा कार्यक्रम याद करो कुर्बानी। दिन में 11 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम शब्दों के शिल्पकार, ये कार्यक्रम कल नागार्जुन की जयंती पर केंद्रित रहेगा। दिन में 11:30 का समय होगा युग प्रवर्तक विवेकानंद का। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। रात्रि के ठीक 10 बजे हैं। अब हमारी आज की ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल के कार्यक्रमों के साथ कल प्रातः 7 बजे हम आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।